सुप्रभात, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 5:58:30 हो रहे हैं। आज का दिन है रविवार, सक संवत 1948, अश्विन माह की 19वीं तिथि और अंग्रेजी वर्ष 2026 की अक्टूबर माह की 11 तारीख है। और मैं मनाली आप सभी सुनने वाले श्रोताओं को हमारे आज के इस पहली सभा में हार्दिक स्वागत करती हूँ।

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। श्रोताओं, चलिए दिन की शुरुआत करते हैं हिंदी समाचार के साथ। रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। वे चेन्नई में लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो में यात्रा भी करेंगे। पूनमल्ली पोरूर कॉरिडोर में 3,700 मीटर लंबा डबल डेकर ढांचा बनाया गया है। इसमें आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली है जो परिचालन को सक्षम बनाने के लिए तैयार की गई है। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे अवसंरचना परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनका शुभारंभ करेंगे। इनमें अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित 5 अमृत स्टेशन पलनी, वेल्लोर कैंटोनमेंट, अंबा समुद्रम, परमकुडी और नमक्कल शामिल है। श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंठेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। इसकी शुरुआत पिछले वर्ष आज ही के दिन देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इसके अंतर्गत 11 मंत्रालयों और विभागों की केंद्र की 36 केंद्रीय योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। राज्य सरकारों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी इसमें शामिल किया गया है ताकि प्रत्येक जिले के कृषि संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य किया जा सके। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल अद्दीस अबाबा में अफ्रीका में भारत के मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीका ग्लोबल साउथ, एकजुटता, रणनीतिक स्वायत्तता, बहुध्रुवीयता और साझा विकास की आकांक्षाओं पर आधारित गहरे संबंध साझा करते हैं। इससे पहले विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क रेजोल्यूटली
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया है कि यूक्रेन को नया राष्ट्रपति चुनना चाहिए जो रूस के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौता करने में सक्षम हो। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को रूस के तेल शोधक कारखानों, विशेष रूप से डीजल ईंधन का उत्पादन करने वाली इकाइयों को निशाना बनाने को लेकर भी चेतावनी दी। श्री ट्रंप की टिप्पणी उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर कहा था कि रूस तत्काल अमेरिका और वैश्विक बाजारों के लिए 3,00,000 टन से अधिक डीजल की आपूर्ति करेगा। भारत ने कहा है कि दिल्ली में कल हुई घटनाओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की चिंताएं निराधार है और ये देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप है। जिनेवा स्थित भारतीय स्थायी मिशन ने एक बयान में कहा कि अधिकारी कानून के अनुसार कार्य करते हैं और किसी भी शिकायत के निवारण के लिए न्यायालय सभी के लिए उपलब्ध है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। मौजूदा स्थिति के आधार पर सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर यातायात परिवर्तित रहेगा। यातायात पुलिस ने लोगों को यात्रा से पहले जानकारी लेने और गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी है। इस बीच उत्तर रेलवे ने घोषणा की है कि आज सभी रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये भी कहा गया है कि संबंधित सभी मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले किए गए थे हिंदी में समाचार। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हफलोंग केंद्र है। श्रोताओं, चलिए अब हम आपको जानकारी देते हैं हमारे आज के इस पहले सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

सुबह 6:10 पर हम आनंद लेंगे कार्यक्रम भक्ति गीतों का। 6:40 पर सुनेंगे कुछ देशभक्ति गीत। 7 आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे हिंदी में समाचार। इसके पश्चात जानेंगे आज के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें 7:05 पर। 7:30 पर हम सुनेंगे चिल्ड्रंस प्रोग्राम।

8 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़। 8:30 पर हम सुनेंगे नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से और 8:40 पर हम आनंद लेंगे कार्यक्रम सरो की रंगोली का। 9 बजे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से रिले किए जाएंगे पुअर आंचलिक बातोरी।

स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों के तहत 9:15 पर खेलमा कार्यक्रम में हम सुनेंगे मुलजोन ली जायते और उनके साथियों की आवाज़ों में कुछ खेलमा भक्ति गीत। 9:25 पर रांगखोल कार्यक्रम में सुनेंगे कुछ रांगखोल पारंपरिक गीत। गाय कलाकार रहेंगे सुनचौन ली रांगखोल और उनके साथी। 9:35 पर जयंती कार्यक्रम में सुनेंगे किट भलांग सजम की आवाज़ में कुछ जयंती भक्ति गीत और 9:45 पर ब्याते कार्यक्रम में हम सुनेंगे कुछ ब्याते भक्ति गीत रोलथांग रेमा नामपुई और उनके साथियों की आवाज़ों में।

सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से हम आनंद लेंगे कार्यक्रम विविध भारती का। 2 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से लेके जाएंगे मिड डे न्यूज़। तत्पश्चात 2:15 पर दोपहर समाचार, 2:30 से लेकर शाम 5 बजे तक एक बार फिर हम सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। और इसी बीच हर घंटे हम सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

तो श्रोताओं, ये थी हमारे आज के इस पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। चलिए अब हम आरंभ करते हैं भक्ति गीतों के कार्यक्रम को और आनंद लेते हैं कुछ प्यारे भजनों का।

श्रोताओं, इसी भजन के साथ ही समाप्त होता है आज के लिए भक्ति गीतों का ये कार्यक्रम। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हफलोंग केंद्र है।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: ये आकाशवाणी का हफलोंग केंद्र है। चलिए बढ़ते हैं देशभक्ति गीतों के कार्यक्रम की ओर।

दोस्तों, इसी के साथ ही समाप्त होता है आज के लिए देशभक्ति गीतों का ये कार्यक्रम। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। वे चेन्नई में लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो में यात्रा भी करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे अवसंरचना परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनका शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंटेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इसकी शुरुआत पिछले वर्ष आज ही के दिन देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इसके तहत 11 मंत्रालयों और विभागों की केंद्र की 36 केंद्रीय योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल अदीस अबाबा में अफ्रीका में भारत के मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीका ग्लोबल साउथ एकजुटता, रणनीतिक स्वायत्तता, बहुध्रुवीयता और साझा विकास की आकांक्षाओं पर आधारित गहरे संबंध साझा करते हैं। इससे पहले विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क्ड रेजोल्युटली
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: भारत ने कहा है कि दिल्ली में कल हुई घटनाओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की चिंताएं निराधार हैं और ये देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप है। जिनेवा स्थित भारतीय स्थायी मिशन ने एक बयान में कहा कि अधिकारी कानून के अनुसार कार्य करते हैं और किसी भी शिकायत के निवारण के लिए न्यायालय सभी के लिए उपलब्ध हैं। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। मौजूदा स्थिति के आधार पर सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर यातायात परिवर्तित रहेगा। यातायात पुलिस ने लोगों को यात्रा से पहले जानकारी लेने और गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। अब ये भी कहा गया है कि संबंधित सभी मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। इस बीच उत्तर रेलवे ने घोषणा की है कि आज सभी रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया है कि यूक्रेन को नया राष्ट्रपति चुनना चाहिए जो रूस के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौता करने में सक्षम हो। श्री ट्रंप की यह टिप्पणी उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा था कि रूस तत्काल अमेरिका और वैश्विक बाजारों के लिए 3,00,000 टन से अधिक डीजल की आपूर्ति करेगा। शारदीय नवरात्रि का महापर्व आज से शुरू हो गया है। 9 दिन का ये धार्मिक उत्सव मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का प्रतीक है जिसे श्रद्धालु उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में इस अवसर पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 94वां फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल वाराणसी में आज सुबह नमो घाट से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षा मंडप तक आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य फिटनेस, युवा सशक्तिकरण और नशा मुक्त भारत के संदेश को आगे बढ़ाना है। ये पहल युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय विभिन्न संगठनों के साथ कर रहा है। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की इस श्रृंखला में दोनों टीमें एक एक मुकाबला जीतकर बराबरी पर हैं। शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत युवा संगम के 7वें चरण का आयोजन कर रहा है जिसका उद्देश्य लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करना और युवाओं में राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना है। युवा संगम कार्यक्रम तेलंगाना असम आदान प्रदान कार्यक्रम के मूल उद्देश्य को दर्शाता है जिसमें युवाओं को देश की विविधता से परिचित होने, अपने गृह राज्यों से परे अन्य समुदाय से जोड़ने और भारत की साझी सांस्कृतिक विरासत के प्रति गहरी समझ विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार लेके गए थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हफलोंग केंद्र है।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: ये आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। दोस्तों चलिए अब हम सुनते हैं हमारा आज का पोएम ऑफ द डे।
2: Good morning to everyone. My name is Shriya and today I'm going to recite a poem. The name of my poem is On the Grasshopper and Cricket, written by John Keats. The poetry of art is never dead. When all the birds are faint with the hot sun and hide in cooling trees, a voice will run from hedge to hedge about the new mown meat. That is the grasshopper, he taking the lead in summer luxury he has never done. With his delights, for when tired out with fun, he rests at ease beneath some pleasant weed. The poetry of art is ceasing never. On a lone winter evening, when the frost has forged a silence, from the stone tear shrills the cricket songs in warm increasing ever, and seems to one its drowsiness half lost to grasshoppers among some crazy hills. Thank you.
1: श्रोताओं, हर नया दिन अपने साथ नई उम्मीद, नई प्रेरणाएं और इतिहास के कुछ यादगार पलों की सौगात लेकर आता है। आइए जानते हैं आज 11 अक्टूबर के दिन से जुड़ी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं, महान विभूतियों की जयंतियों और पुण्यतिथियों तथा अन्य विशेष अवसरों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम आज का दिन।

श्रोताओं, आज से आरंभ हो रहा है आस्था, भक्ति और शक्ति का पावन पर्व शारदीय नवरात्रि। देशभर में नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। इस अवसर पर श्रद्धालु कलश स्थापना और पूजा अर्चना के साथ नवरात्रि का शुभारंभ करते हैं। मंदिरों और घरों में भक्ति का वातावरण बन जाता है और देवी के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो उठता है। नवरात्रि केवल धार्मिक आस्था का पर्व नहीं, बल्कि हमें सत्य, संयम, साहस और सकारात्मकता का संदेश भी देता है। माँ दुर्गा की शक्ति का प्रतीक माना जाता है और उसे और उनके विभिन्न स्वरूप नारी शक्ति के विविधता रूप का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस नवरात्रि हम अपने मन में प्रेम, करुणा और सद्भाव का भावना को और मजबूत करें।

चलिए अब जानते हैं आज 11 अक्टूबर के दिन घटी कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। अमेरिकी खोजकर्ता थॉमस एडिसन ने 1869 में अपनी पहली आविष्कार पर एक पेटेंट के लिए आवेदन किया। इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन का इस्तेमाल वोटों की गिनती के लिए किया गया था। साल 1881 में अमेरिकी आविष्कारक डेविड हेंडरसन हुडसन ने कैमरे के पहले रोल फिल्म का पेटेंट कराया था। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 1929 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को पत्र लिखकर अमेरिका के परमाणु कार्यक्रम को तेजी से विकसित करने का आग्रह किया। आज ही के दिन साल 1968 में अमेरिका का पहला मानव युक्त अपोलो मिशन अपोलो 7 के प्रक्षेपण का कक्ष से पहली बार टेलीविजन प्रसारण किया गया था। सन 2005 में तीसरे अंतरिक्ष पर्यटक ग्रिगोरी ऑल्सन पृथ्वी पर लौटे थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2008 को नौगांव स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर कश्मीर की घाटी में चलने वाली पहली रेलगाड़ी को रवाना किया था।

अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस एक ऐसा विशेष दिवस जो दुनिया भर की बेटियों के अधिकार, सम्मान और उनके उज्जवल भविष्य की आवाज़ को मजबूती देता है। प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाने वाला ये दिवस संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 में 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में घोषित किया था। इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा सम्मान अवसर उपलब्ध कराने पर जोर देना है। एक बालिका केवल परिवार का हिस्सा नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के भविष्य की महत्वपूर्ण कड़ी है। जब बेटियों को शिक्षा और अपनी प्रतिभा विकसित करने का अवसर मिलता है तो वे आत्मनिर्भर बनकर समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। बेटी को अवसर दे, उसकी आवाज़ सुने और उसे सपनों को उड़ान

अब जानते हैं कुछ महान व्यक्तियों के नाम जिनका आज 11 अक्टूबर के दिन जन्म तथा निधन हुआ था। प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक और शिक्षाविद मगन भाई देसाई का जन्म सन 1889 में हुआ था। लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी जय प्रकाश नारायण का जन्म 1902 में हुआ था। आज ही के दिन साल 1923 में भारत के महान भौतिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ हरिश्चंद्र मेहरोत्रा का जन्म हुआ था। साल 1936 में असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का जन्म हुआ था। हिंदी के प्रख्यात लेखक कमल किशोर गोयनका का जन्म साल 1938 में हुआ था। भारतीय अभिनेता अमिताभ बच्चन का जन्म आज ही के दिन साल 1942 में हुआ था। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा का जन्म आज ही के दिन साल 1946 में हुआ था। भारतीय वैज्ञानिक विजय पी भटकर का जन्म साल 1946 में हुआ था।

आज ही के दिन साल 1911 में विवेकानंद की सहयोगी तथा शिक्षक तथा समाज सेविका सिस्टर निवेदिता का निधन हुआ था। खूबसूरत और गोलमाल सहित 120 से अधिक हिंदी फिल्मों में काम करने वाली प्रसिद्ध अभिनेत्री दीना पाठक का निधन साल 2002 में हुआ था। साल 2004 में हिंदी फिल्म निर्माता व वितरक गुलशन मधोज राय का निधन हुआ था।

श्रोताओं, आज हम स्मरण कर रहे हैं महान स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी चिंतक और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती। प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाई जाती है। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार में हुआ था। जयप्रकाश नारायण ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और देश की आवाज़ के लिए संघर्ष किया। वे महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे और सामाजिक समानता, लोकतंत्र तथा जनभागीदारी के प्रबल समर्थक रहे। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने सत्ता की राजनीति से दूरी बनाकर समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के हित में कार्य किया। वर्ष 1974 में उन्होंने बिहार से शुरू हुई छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और संपूर्ण क्रांतिकारी का आह्वान किया। उनके विचारों ने देश के लोकतांत्रिक जीवन को नई दिशा दी। जयप्रकाश नारायण का जीवन हमें सत्य, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और जनसेवा के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। साथ ही श्रोताओं, आज समाज में सेवा, समानता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देने वाले महान व्यक्तित्व महाराजा अग्रसेन की जयंती है। महाराजा अग्रसेन को अग्रवाल समाज के आदर्श पुरुष के रूप में सम्मानपूर्वक स्मरण किया जाता है। उनकी जयंती अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपद को मनाई जाती है। महाराजा अग्रसेन की के जीवन और विचारों में अहिंसा, परोपकार, सम्मान और समाज के कल्याण को विशेष महत्व दिया जाता है। उनके नाम से जुड़ी परंपरा में जरूरतमंदों की सहायता और सामुदायिक सहयोग की भावना प्रमुख रही है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने राज्य में ऐसी सामाजिक व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सम्मान और सहयोग के साथ जीवन जी सके। उनकी शिक्षाएं आज भी समाज में भाईचारे, भावना, मानवता और आपसी सहयोग का संदेश देती है। महाराजा अग्रसेन जयंती हमें प्रेरणा देती है कि हम समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करें और मिलजुल कर एक बेहतर समाज के निर्माण में योगदान दें।

0: Charlie.
1: Yes, Papa.
0: Eating sugar. No, Papa.

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कुछ फिल्मी गाने फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है।
1: आपके गीत दोस्तों FM 100.2 MHz पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों, आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो

0: SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।
1: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है
2: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के CP ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
1: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
2: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
1: सारी शिकायतों का समाधान CP ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हफलॉन्ग केंद्र है। दोस्तों अब समय हो चला है शिशु पर आधारित कार्यक्रम सुनने का और आज इस कार्यक्रम में मैं लेकर आई हूँ 2 प्यारे और रोमांचक कहानियां। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे जंगल में जहाँ एक छोटा सा खरगोश अपनी समझदारी से पूरे जंगल को एक बड़ी मुसीबत से बचाता है। तो तैयार हो जाए क्योंकि आज की कहानी हमें बताएगी कि बड़ा बनने के लिए ताकतवर होना ज़रूरी नहीं बल्कि समझदार होना बहुत ज़रूरी है। चलिए सुनते हैं आज की पहली कहानी जिसका शीर्षक है नन्हे खरगोश की बड़ी समझदारी। एक घने जंगल में ढेर सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। वहां हाथी दादा अपनी ताकत के लिए मशहूर थे, शेर राजा अपनी दहाड़ के लिए, बंदर अपनी शरारतों के लिए और लोमड़ी अपनी चालाकी के लिए जानी जाती थी। इस जंगल में चिंकू नाम का एक छोटा सा खरगोश भी रहता था। वो आकर में भले ही छोटा था लेकिन उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। वो हर बात को ध्यान से देखता, सोचता और फिर कोई कदम उठाता था। लेकिन जंगल के कुछ जानवर उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन बंदर मोंटू ने हंसते हुए कहा, अरे चिंकू, तुम इतने छोटे हो कि तेज हवा चले तो उड़ जाओगे, तुम भले जंगल की कोई मदद क्या कर सकते हो। चिंकू बोला, मोंटू भैया, छोटा होना कोई बुरी बात नहीं, हर किसी में कोई ना कोई खासियत भी होती है। लोमड़ी, हा हा हा, तो बताओ तुम्हारी खासियत क्या है। चिंकू बोला, समय आने पर आपको पता चल जाएगा। ये कहकर चिंकू मुस्कुराया और वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद जंगल में एक बड़ी मुसीबत आ गई। लगातार कई घंटों तक बारिश हुई, नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा। जंगल के निचले हिस्से में रहने वाले जानवर घबरा गए क्योंकि पानी उनके घरों के अंदर बढ़ रहा था। हिरनी रानी बोली, अरे नदी का पानी तो हमारे घरों तक पहुंचने वाला है, अब हम क्या करें। बंदर मोंटू बोला, जल्दी करो, किसी ऊंची जगह पर चलो। हाथी दादा बोला, सब लोग शांत रहो, मैं अपनी मजबूत पैरों से रास्ता बना दूंगा। हाथी दादा ने आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन कीचड़ में उनके पैर धंसने लगे। दूसरी ओर शेर राजा ने जोर से दहाड़ कर सबको एक जगह इकट्ठा किया मगर किसी को सुरक्षित रास्ता समझ नहीं आ रहा था। सभी जानवर परेशान थे। तभी चिंकू वहां पहुंचा। उसने नदी के बहाव को ध्यान से देखा।

उसे याद आया कि जंगल के पीछे एक पुराना ऊंचा टीला था, जहां तक पहुंचने के लिए पत्थरों के बीच से एक संकरा रास्ता जाता था। चिंकू बोला, दोस्तों घबराओ मत, जंगल के पीछे एक ऊंची जगह है, हम सब वहां जा सकते हैं। शेर राजा बोला, लेकिन उस रास्ते का पता किसे है? चिंकू, मुझे, मैं अक्सर वहां खेलते हुए जाता हूँ। रास्ता थोड़ा संकरा है, लेकिन हम सब सावधानी से पहुंच सकते हैं। हाथी दादा बोला, पर चिंकू, क्या तुम इतने बड़े समूह को रास्ता दिखा पाओगे? चिंकू बोला, कोशिश करने में क्या हर्ज है हाथी दादा, इस समय हमें मिलकर काम करना होगा। शेर राजा ने सिलहराकर सहमति दी, ठीक है चिंकू, आज तुम हमें रास्ता दिखाओ और सभी जानवर इसकी बात ध्यान से सुने। चिंकू सबसे आगे चलने लगा। उसने सबको समझाया कि कहाँ धीरे चलना है, कहाँ पत्थरों को पकड़कर आगे बढ़ना है और कहाँ एक दूसरे की मदद करनी है। चिंकू बोला, बंदर मोंटू, तुम छोटे पक्षियों को अपनी पीठ पर बिठाकर सुरक्षित जगह तक पहुंचाओ। हाथी दादा, आप पीछे चलिए और ध्यान रखिए कि कोई पीछे छूट ना जाए। हिरनी रानी, छोटे बच्चों को अपने साथ रखिए। सभी जानवर उसकी बात मानने लगे। कुछ देर बाद एक फिसलन भरी मोड़ पर पहुंचे। वहां एक छोटा हिरन फिसलकर नीचे की ओर जाने लगा। छोटा हिरन, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। चिंकू ने तुरंत पास पड़ी मजबूत बेल देखी। उसने बंदर मोंटू और हाथी दादा को आवाज दी, मोंटू भैया, इस बेल को मजबूती से पकड़िए। हाथी दादा, आप भी इसे थाम लीजिए, हम सब मिलकर हिरन को ऊपर खींचेंगे। सभी ने मिलकर बेल पकड़ी और छोटे हिरन को सुरक्षित ऊपर खींच लिया। छोटा हिरन चिंकू को धन्यवाद कहा। चिंकू, मुझे धन्यवाद मत दो, हम सब ने मिलकर तुम्हारी मदद की है। आखिरकार सभी जानवर सुरक्षित टीले पर पहुंच गए। बारिश रुकने तक वो वहीं रहे। कुछ घंटों बाद पानी उतरने लगा और जंगल के जानवरों ने राहत की सांस ली। अगली सुबह जंगल में सभी जानवरों की सभा हुई। शेर राजा ने चिंकू को अपने पास बुलाया। चिंकू, आज तुमने साबित कर दिया कि किसी की ताकत उसके आकार से नहीं बल्कि उसकी समझदारी और अच्छे कामों से पहचानी जाती है। हाथी दादा बोला, बिल्कुल, मैं ताकतवर जरूर हूँ, लेकिन आज चिंकू की सूझबूझ ने हम सबको सुरक्षित रास्ता दिखाया। बंदर मोंटू बोला, चिंकू मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा मजाक उड़ाता था। अब मुझे समझ आ गया कि किसी को छोटा समझना गलत है। चिंकू बोला, कोई बात नहीं मोंटू भैया, हम सभी में अलग अलग खूबियाँ होती हैं। जब हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं और मिलकर काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। उस दिन से जंगल में कोई भी किसी का मजाक नहीं उड़ाता था। सभी एक दूसरे की खूबियों का सम्मान करने लगे और चिंकू वो पूरे जंगल का सबसे प्रिय दोस्त बन गया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समझदारी, साहस और मिलजुल कर काम करने की भावना किसी भी कठिन परिस्थिति में हमारी मदद कर सकती है। किसी को उसके छोटे आकार, रूप या ताकत के आधार पर कम नहीं आंकना चाहिए। हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेष गुण होता है। याद रखिए, बड़ा वो नहीं होता जो ताकतवर हो, बड़ा वो होता है जो सही समय पर सही निर्णय ले और दूसरों की मदद करे।

चलिए दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं दूसरी कहानी की ओर, जिसमें हम सुनाएंगे एक ऐसी पेंसिल की कहानी जिसमें छिपा था एक अनोखा जादू। तो आइए शुरू करते हैं हमारी कहानी जादुई पेंसिल। एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक बच्चा रहता था। उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था, लेकिन उसके चित्र कभी अच्छे नहीं बनते थे। इस कारण उसके कुछ दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन स्कूल से घर लौटते समय रोहन को रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले। बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? रोहन बोला, बाबा मैं चित्र बनाना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे अच्छे चित्र नहीं बनते। बाबा मुस्कुराए और उसे एक साधारण सी पेंसिल देते हुए बोले, इसे अपने पास रखना, याद रखना, इसका असली जादू तुम्हारी सोच और तुम्हारे काम में छिपा है। रोहन घर पहुंचा और पेंसिल से एक सुंदर फूल बनाया। आश्चर्य, अगले ही दिन उसके आंगन में वैसे ही एक फूल खिल उठा। रोहन खुश से उछल पड़ा। उसने एक आम का पेड़ बनाया। कुछ दिनों बाद उसके घर के पास सचमुच एक छोटा आम का पेड़ उग उठा। अब रोहन हर दिन कुछ नया बनाने लगा। लेकिन एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने लिए सोने का महल बना लूं? उसने महल का चित्र बनाया, पर कुछ नहीं हुआ। रोहन सोचा, अरे, मेरा जादू कहाँ चला गया? तभी उसे बाबा की बात याद आई। उसने सोचा कि शायद वो केवल अपने फायदे के लिए चित्र बना रहा था। अगले दिन गांव में पानी की कमी हो गई। रोहन ने अपनी पेंसिल उठाई और एक साफ पानी का कुआं का चित्र बनाया। गांव वालों ने मिलकर उस जगह खुदाई शुरू की। कुछ दिनों बाद वही पानी मिल गया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। गांव वाले बोले, रोहन, तुमने तो हमारी बहुत बड़ी मदद कर दी। रोहन मुस्कुराया। अब उसे समझ आ गया था कि असली जादू पेंसिल में नहीं, बल्कि अच्छे विचारों और दूसरों की मदद करने की इच्छा में था। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चा जादू हमारी कल्पना, मेहनत और दूसरों के प्रति दयालु में होता है। अपनी प्रतिभा को का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी करनी चाहिए। इसी संदेश के साथ आज की कहानी को यही विराम देते हैं और अब हम सुनते हैं कुछ प्यारे फिल्मी गीत।

दोस्तों, आप सुन रहे थे शिशु पर आधारित कार्यक्रम। साथ ही आपने सुना कुछ फिल्मी गाने। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हफलोंग केंद्र है। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे समाचार प्रभात। तत्पश्चात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज 1 वर्ष पूरा हुआ। उत्तर रेलवे ने कहा, आज सभी रेल सेवाएं सामान्य समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। देवी दुर्गा की आराधना का 9 दिवसीय पर्व नवरात्रि धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ प्रारंभ। सऊदी अरब के अधिकारियों ने कहा, रियाद हवाई अड्डे पर हुए हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। और भारत आज शाम इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा T20 क्रिकेट मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। वे चेन्नई में लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे। श्री मोदी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो में पूनमल्ली बाईपास स्टेशन से पूनमल्ली बाईपास स्टेशन कॉरिडोर में यात्रा भी करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल अवसंरचना परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनका शुभारंभ करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित 5 अमृत स्टेशन पलनी, वेल्लोर कैंटोनमेंट, अम्बासमुद्रम, परमकुडी और नमक्कल शामिल हैं।
1: प्रधानमंत्री सड़क विकास, बंदरगाहों और विज्ञान में नवाचार से जुड़ी कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इनमें समुद्री बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कार्गो हैंडलिंग क्षमता का विस्तार करने और लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार करने के लिए प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखना और उद्घाटन करना शामिल है। श्री मोदी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की मौजूदा मनाली रिफाइनरी में यूब ऑयल बेस्ड स्टॉक्स परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कामराजार बंदरगाह पर एक अतिरिक्त कोयला घाट परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे और कंटेनर टर्मिनल के लिए कैपिटल डेजिंग कार्यों की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी आईआईटी मद्रास में सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और चेन्नई के जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंठेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना की शुरुआत पिछले वर्ष आज ही के दिन देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा राज्य सरकारों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी शामिल किया गया है, ताकि प्रत्येक जिले की कृषि संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य किया जा सके।
2: इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता, सिंचाई सुविधाओं, ऋण की उपलब्धता और फसल कटाई के बाद की आधारभूत संरचना में सुधार करना है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 स्तरीय व्यवस्थाएं बनाई गई है। स्थानीय कृषि आवश्यकताओं के अनुरूप जिला कार्य योजनाएं तैयार की जाती है। वहीं 36 केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत 121 संकेतकों के माध्यम से प्रगति की निगरानी की जाती है। पहले वर्ष के दौरान योजना के लिए चुने गए सभी 100 जिलों ने अपनी कार्य योजनाएं तैयार कर ली हैं और उनका क्रियान्वयन जारी है। इन जिलों का औसत प्रदर्शन स्कोर अप्रैल 2026 में 18.85% से बढ़कर अगस्त 2026 में 46.89% हो गया। नितिका गुप्ता के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। अपनी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको गुजरात की बंदरगाह क्रांति के बारे में बता रहे हैं।
3: गुजरात के पास देश की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा है, लेकिन दशकों तक इसका पूरा लाभ नहीं उठाया जा सका। तटरेखा को केवल भूगोल न मानकर औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखने के दूरदर्शी विजन के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीपीपी मॉडल के साथ निजी निवेश को आमंत्रित किया। बंदरगाहों को बिजली, सड़क, रेल और औद्योगिक क्षेत्रों से इस तरह जोड़ा गया कि फैक्ट्री सीधे बंदरगाह और बंदरगाह सीधे वैश्विक बाजार से जुड़ सके। इसी मॉडल पर मुंद्रा, हजीरा और पिपावाव जैसे देश के प्रमुख निजी निजी बंदरगाह विकसित हुए। गुजरात का यही सफल मॉडल आगे चलकर सागरमाला के रूप में राष्ट्रीय नीति बना, जिसके तहत देश के बंदरगाहों की क्षमता 2014-15 के 1561 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़कर 2817 मिलियन टन प्रतिवर्ष हो गई और प्रमुख बंदरगाहों पर टर्न अराउंड टाइम भी घटकर आधा हो गया। भारत की समुद्री उपलब्धियां और हरित पहलों को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
4: देश के कुछ बड़े पोर्ट्स ने पहली बार एक साल में रिकॉर्ड 15 करोड़ टन कार्गो हैंडल किया है। इसमें हमारा कंडला का दीनदयाल पोर्ट भी शामिल है। देश के कुल समुद्री व्यापार कारोबार का लगभग एक तिहाई हिस्सा अकेले हमारे कच्छ के ही बंदरगाह से हैंडल के होता है।
3: इसी विजन के साथ गुजरात के कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के सदस्य राहुल मोदी ने कहा,
5: जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यकाल में उनकी जो सोच थी कि समुद्र और बंदरगाह केवल कार्गो हैंडलिंग के साधन नहीं है बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ इंजन बनने की पूरी ताकत रखते हैं, इसी सोच के साथ पोर्ट्स को उन्होंने रोड, रेलवे, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, एसईजेड, लॉजिस्टिक, हिंटरलैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा।
3: समुद्री तटों को आर्थिक प्रगति के इंजन में बदलकर भारत का यह बंदरगाह आधारित विकास देश को वैश्विक समुद्री मंच पर अग्रिम पंक्ति में स्थापित कर रहा है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
6: जालिम लोशन,
7: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन।
6: दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
8: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। मौजूदा स्थिति के आधार पर सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर यातायात में परिवर्तन किया गया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और किसी भी यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। इस बीच उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि आज सभी रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
2: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी, ताकि यात्रियों को यह सुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली और निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
1: शारदीय नवरात्रि का महापर्व आज से शुरू हो गया है। 9 दिन का ये धार्मिक उत्सव माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का प्रतीक है। श्रद्धालु इसे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि माँ जगदम्बा का आशीर्वाद सभी के जीवन में प्रसन्नता, शांति, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गुजरात में नवरात्रि के आगमन के साथ ही राज्य के सभी शहर भव्य रास गरबा समारोह के लिए तैयार हैं।
3: गुजरात में नवरात्रि का ये पर्व पारंपरिक गरबों प्रज्वलित कर, उपवास रखकर, घट स्थापन जैसे विशेष अनुष्ठानों और पारंपरिक रास गरबा नृत्य के साथ उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन बनासकांठा प्रतिष्ठित अंबाजी मंदिर, पावागढ़ के महाकाली मंदिर और कच्छ के माताना मढ़ मंदिर सहित राज्य के प्रसिद्ध मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। त्योहारों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गुजरात पुलिस ने राज्य भर के 22,000 से अधिक स्थलों पर कड़े प्रबंध किए हैं। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: तेलंगाना का विशेष पुष्प उत्सव बथुकम्मा कल एंगलीपुला बथुकम्मा के साथ शुरू हुआ। 9 दिन तक मनाए जाने वाले इस उत्सव में महिलाएं तंगेड़ू, गुनुनू, गेंदा और गुलदाउदी जैसे रंग बिरंगे फूलों से बथुकम्मा तैयार करती हैं। काला सागर में जहाज से बचाए गए 3 भारतीय नागरिक रोमानिया से अब स्वदेश लौट रहे हैं। बुखारेस्ट में भारतीय दूतावास ने बताया कि साहिल संधु, अश्विनी कुमार और हरमन सिंह को उनकी वापसी के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराई गई है। काला सागर में सोमवार को जहाज एमवी रॉयद मम्मा दोव पर हुए हमले में घायल हुए क्रू सदस्यों में ये 3 भारतीय भी शामिल थे। सऊदी अरब में रियाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। घरेलू हवाई अड्डे पर कल हुए इस हमले में 4 सऊदी नागरिक, 2 बांग्लादेशी और अमरीका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, सूडान तथा फिलिस्तीन के भी 1-1 नागरिक की जान गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में अफ्रीका के लिए भारत के मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीका ग्लोबल साउथ, एकजुटता, रणनीतिक स्वायत्तता, बहुध्रुवीयता तथा साझा विकास की आकांक्षाओं पर आधारित गहरे संबंध साझा करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया है कि यूक्रेन को नया राष्ट्रपति चुनना चाहिए जो रूस के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौता करने में सक्षम हो। श्री ट्रंप की यह टिप्पणी उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर कहा था कि रूस तत्काल अमेरिका और वैश्विक बाजारों के लिए 3 लाख टन से अधिक डीजल की आपूर्ति करेगा। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ 3रा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल गरज के साथ तूफान और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। कर्नाटक के तटीय भाग, कोंकण और गोवा में कुछ स्थानों पर आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
5: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
4: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
5: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
4: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
6: धन्यवाद मुकेश। आज सभी समाचार पत्रों ने नवरात्रि शुरू होने की शुभकामनाएं दी है। नवभारत टाइम्स लिखता है, देवी हमारे द्वार, शक्ति का वास हमारे आसपास। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मंदिर सजे, शक्ति की भक्ति में आज से लीन होंगे श्रद्धालु। रामलीला मंचन का गणेश वंदना के साथ होगा शुभारंभ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शब्द जनसत्ता ने प्रकाशित किए हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 56 विशेष बसें चला रही सरकार, दिल्ली की बसों में 2000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात। अमेरिका और रूस में डीजल डील, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से 7 अप्रैल तक डीजल सप्लाई बैन हटाया। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों में है, कैप्टन स्मिथ पर हमले की जांच, NIA को, पायलट पर केस। दैनिक जागरण की खबर है, पत्र लिखता है, फ्लाई दुबई विमान अपहरण और आतंकी साजिश की होगी जांच। पहाड़ों के छोटे से गांव में बसता है मिनी सराय, मैक्लोडगंज से 2 किलोमीटर दूर धर्मकोट। राजस्थान पत्रिका ने यह खबर पर्यटन को बढ़ावा शीर्षक से प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज 1 वर्ष पूरा हुआ। उत्तर रेलवे ने कहा, आज सभी रेल सेवाएं सामान्य समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। देवी दुर्गा की आराधना का 9 दिवसीय पर्व नवरात्रि धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ शुरू हुआ। और भारत आज शाम इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा T20 क्रिकेट मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch development projects worth over 13,000 crore rupees in Chennai, Tamil Nadu this afternoon. Pradhan Mantri Dhan Dhani Krishi Yojana completes 1 year today. Northern Railway says all train services to operate as per their normal schedule today. Navratri, 9-day long festival to worship goddess Durga begins with religious fervor and gaiety. Saudi authorities say attack on Riyadh airport killed 12 people and wounded over 300. And in men's cricket, India to take on West Indies in third T20 international in Indore this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate projects worth 13,000 crore rupees in Chennai, Tamil Nadu today. The Prime Minister will flag off the metro rail service of the Chennai Metro Rail project, built at a cost of around 4,900 crore rupees. Mr. Modi will also undertake a ride on the Chennai Metro from Porur bypass station to Poonamalli bypass station and back. The Poonamalli-Porur corridor features a unique 3.7-kilometre double-decker structure with advanced signalling systems designed to support driverless operations. The Prime Minister will dedicate and inaugurate railway infrastructure projects worth over 750 crore rupees, including 5 Amrit stations at Palani, Vellore Cant, Ambasamudram, Paramakudi and Namakkal, which have been redeveloped under the Amrit Bharat Station scheme. Mr. Modi will perform darshan and puja at the Jalkandeswarar temple near the Porur Lake. More from our correspondent.
8: The stage is all set for the Prime Minister's visit today at Chennai. The city has brightened up to welcome the Prime Minister as he is set to launch several projects based on infrastructure in road development, ports and innovation in sciences. This includes laying the foundation stone and inauguration of key national highway projects to strengthen maritime infrastructure, expand cargo handling capacity and improve logistics efficiency. The road projects will reduce the travel time apart from easing traffic congestion in national highways in Salem, Madurai and Nagapattinam. He will also lay the foundation stone for lube oil based stocks projects at the existing Manali refinery of Chennai Petroleum Corporation Limited. Prime Minister will also inaugurate an additional coal berth project and lay the foundation stone for capital dredging works for additional container terminal at Kamarajar Port. Prime Minister will also participate in the Golden Jubilee celebrations of Jai Gopal Garadia Hindu Vidyalaya School in Chennai before leaving to Delhi. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
7: Pradhan Mantri Dhan Dhanya Krishi Yojana has completed 1 year today. The scheme was launched on this day last year to strengthen agriculture in 100 aspirational agricultural districts across the country. Our correspondent reports that the scheme has brought together 36 central schemes across 11 ministries and departments, along with state schemes and private sector participation, to address district-specific agricultural needs.
9: India's agriculture sector has significant potential across diverse regions and farming communities. Approved by the Union Cabinet in July last year, the six-year initiative was launched by Prime Minister Narendra Modi on 11th October last year. It brings together 36 central schemes across 11 ministries and departments, along with state schemes and private sector participation to address district-specific agricultural needs. Pradhan Mantri Dhan Dhanya Krishi Yojana completed its first year today, marking a year of focused district-level action. During the first year, all 100 selected districts prepared their action plans, which are under implementation. With Netika Gupta, Akashwani News, Delhi.
7: Northern Railway has announced that all train services will operate as per the normal schedule today. Railways had decided to cancel mail and express trains scheduled to arrive at New Delhi and Hazrat Nizamuddin Railway stations between 4 a.m. and 2 p.m. yesterday. We spoke to Northern Railway CPRO Himanshu Upadhyay about it.
2: Northern Railway cancelled all terminating trains who were arriving on New Delhi and Nizamuddin on 10th of October from 4 a.m. to 2 p.m. All the mail express trains were cancelled who were arriving at Nizamuddin, terminating at Nizamuddin on New Delhi. And today is 11th of October. And from today, all the services, all the mail express and all the passenger services will run as per their schedule. There is no cancellation, no further cancellation or diversion.
7: Delhi Metro Rail Corporation has informed that entry and exit gates of all 45 metro stations, which were closed due to security reasons, are now open. It added that interchange facilities at all the concerned metro stations are also available. Delhi Metro had closed 45 metro stations till 10 p.m. yesterday due to security reasons. Delhi Police has issued a traffic advisory for today in view of the law and order situation in

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात तत्पश्चात मॉर्निंग न्यूज़, और साथ ही में नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ रिले किए गए थे आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हफलांग केंद्र है।
1: हेलो हफलोंग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हफलोंग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हफलोंग।
2: हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM।
1: इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर। नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली।

आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हाफ लॉन्ग।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
4: रुक जा बुद्धू।
5: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
3: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
6: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
5: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
0: फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। दोस्तों, अब समय हो चला है कार्यक्रम सुरों की रंगोली सुनने का, और आज इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे रूप कुमार राठौर के गाए हुए कुछ प्यारे गीत। तो चलिए, बिना देर किए हम शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम।

दो मुझे दिल की बात कहने दो, मैं पागल दीवाना तेरा। मुझे इश्क की आग में जलने दो, ये धुआं धुआं सा रहने दो। मुझे दिल की बात कहने दो, मैं पागल दीवाना तेरा।

दोस्तों, रूप कुमार राठौर की आवाज़ में आप सुन रहे थे उनके गाए हुए कुछ बेहतरीन गाने। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। अब आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से रिले किए जाएंगे पुअर आंचलिक बातोरी।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: ये आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। श्रोताओं, चलिए अब स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों को जारी करते हुए सबसे पहले हम खेलमा कार्यक्रम में सुनेंगे गुलजोन लिजायती और उनके साथियों की आवाजों में कुछ खेलमा भक्ति गीत।

0: दोस्तों, खिल्मा कार्यक्रम के तहत आप सुन रहे थे गुलजोन लिजायती और उनके साथियों के गाए हुए कुछ खिल्मा भक्ति गीत। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हफलों केंद्र है।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: ये आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। चलिए अब रांखोल कार्यक्रम में हम सुनते हैं सुनचौली रांखोल और उनके साथियों की गाई हुई कुछ रांखोल पारंपरिक गीत।

0: दोस्तों, रंगखोल कार्यक्रम के तहत आप सुन रहे थे स्वनचौली रंगखोल और उनके साथियों की आवाज़ों में कुछ रंगखोल पारंपरिक गीत। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हफलों केंद्र है।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: ये आकाशवाणी का हफलोंग केंद्र है। चलिए अब जयंती कार्यक्रम के तहत हम सुनते हैं कुछ जयंती भक्ति गीत। गायक कलाकार है किट भलेंग सजम।

0: दोस्तों, जयंत्या कार्यक्रम में आप सुन रहे थे किट भलांगसा जैम के गाए कुछ जयंत्या भक्ति गीत। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का हफलों केंद्र है।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: यह आकाशवाणी का हफलोंग केंद्र है। अभ्याते कार्यक्रम में हम सुनते हैं रुअलथंग रेमा नामपुई और उनके साथियों के गाए हुए कुछ ब्याते भक्ति गीत।

दोस्तों, ब्याते कार्यक्रम के तहत आप सुन रहे थे कुछ ब्याते भक्ति गीत। गायक कलाकार थे रुअलथंग रेमा नामपुई और उनके साथी। और इसी के साथ ही समाप्त होता है आज के लिए इस सभा के लिए स्थानीय भाषाओं का ये कार्यक्रम। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किए जाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम। इसी के साथ ही मुझे मनाली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कास्टिंग डायरेक्टर गौतम कृष्ण चंदानी से नेहा शर्मा की बातचीत।
2: श्रोताओं नमस्कार। ऐसा अक्सर होता है जब फिल्मी पर्दे पर हम किसी विशेष अभिनेता या अभिनेत्री को किसी किरदार में ढलते देखते हैं तो हमारे मुंह से बरबस ही निकलता है कि ये किरदार इनके अलावा तो कोई निभा ही नहीं सकता था। लेकिन कोई किरदार किसी अभिनेता अभिनेत्री पर कैसा लगेगा या कहें कि किसी खास किरदार में कौन सा एक्टर ढल सकता है, ये पहचानना भी एक कला है और उस कला में माहिर होते हैं कास्टिंग डायरेक्टर। तो क्या होता है इनका काम और किस तरह कागज पर लिखे किरदारों के लिए एक्टर्स का चुनाव ये करते हैं, इन सारे सवालों का जवाब हमें आज मिलने वाला है क्योंकि विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम कृष्ण चंदानी। तो गौतम जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
3: थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, यहाँ पर मेरा सौभाग्य है, यहाँ बुलाया आप लोग ने मुझे।
2: तो गौतम जी, इससे पहले कि आपके काम के बारे में हम बात करें, आपके बारे में पूछना चाहते हैं कि आप कैसे पले बढ़े और क्या आप मुंबई में रहते हैं या बाहर रहते थे और किस तरह से आना हुआ आप?
3: नहीं, मैं बम्बई का ही हूँ, यहाँ की पैदाइश है
2: जी।
3: और मेरे मम्मी पापा दोनों डॉक्टर्स हैं, तो

0: उनका खुद का एक नर्सिंग होम भी था और वो हमेशा चाहते थे कि मैं मेडिसिन करूं, और मेरी बहन ने ऑलरेडी उन्हें कह दिया था कि उससे मेडिसिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है
1: जी।
0: तो क्योंकि मेरे पास 18 की उम्र में कोई आइडिया नहीं था कि मुझे करना क्या लाइफ में, तो मैंने भी मेडिसिन कर लिया कैसे तैसे स्ट्रगल के साथ। और मेडिसिन करते करते मुझे एक्चुअली बीच में एक रीज़न से मुझे मेरे आंटी के घर जाना पड़ा बेलगाम में, वहाँ रोजा फिल्म लगी थी, तमिल में लगी थी मणि रत्नम सर की, तो वो मैंने देखी। और उसके पहले क्या था, मैं फिल्में बहुत देखता था, मतलब छुट्टियों में दिन में 3 फिल्में देखता था वीडियो कैसेट पे VCR पे, पर जब रोजा देखी तो मुझे एक फिल्म देखने वाले से इंटरेस्ट आया कि अब मुझे ना फिल्म में इन्वॉल्व होना है। वो फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ, रहमान के म्यूजिक से और संतोष सिवन की सिनेमाटोग्राफी और मनी सर का डायरेक्शन, एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस। पहली बार एक ऐसे लेवल की फिल्म देखी जो मुझे लगा हाँ ये हॉलीवुड के टक्कर की फिल्म है, और ऐसी फिल्म में पार्ट होना ऐसी फिल्म का बहुत बड़ी बात होगी करके ये मेरे मन में बैठ गया। और फिर मैं अगले दिन फिर अकेले वही फिल्म देखने गया और फिर वो और भी फीलिंग स्ट्रांग हो गई। पर तब मैं आई थिंक सेकेंड ईयर MBBS में था और वहाँ से आई थिंक वो सीड हो गई थी, और वो फिर मैंने कैसे तैसे 3 साल निकाले और इंटर्नशिप की। फिर भी मम्मी पापा मान नहीं रहे थे, बोले कि नहीं तो अस्पताल में तो काम करके देख। फिर मैंने 1.5 साल हॉस्पिटल में भी, मैं जूनियर रेसिडेंट था,
1: अच्छा
0: हाँ वो भी किया। और मैं सुबह निकलता था बस में, परेल जाना होता था MGM हॉस्पिटल में, और मैं सोचता था कि मैं घर कब पहुंचूंगा, और फिर चलता रहा 1.5 साल। बट एक पॉइंट के बाद मैंने बोला मुझे नहीं करना है, तो मैंने आके मेरे मम्मी और पापा को कहा कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मेडिसिन में, मुझे फिल्म्स में कुछ करना है, मुझे पता नहीं क्या करना है, बट आई वॉन्ट टू क्विट मेडिसिन। तो तब तक आई थिंक दे हैड रियलाइज्ड कि हाँ इसने 1.5 साल अपने दिए, एक अस्पताल में काम भी किया और फिर भी खुश नहीं है, तो फिर रहने दो।
1: तो गौतम जी, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आमतौर पे लोग जब फिल्म इंडस्ट्री की ओर आते हैं तो सबसे ज्यादा तो एक्टर बनने आते हैं, उसके बाद हो सकता है कोई गीतकार बनना चाहता हो, कोई राइटर बनना चाहता हो, कोई डायरेक्टर बनना चाहता हो, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर ये बनने का ख्याल कैसे आया आप?
0: मेरी कोशिश रही थी कि मैं असिस्ट करूं और इवेंचुअली डायरेक्ट करूं, तो मेरा रास्ता वैसे शुरू हुआ। मैंने पहले एड फिल्म्स में असिस्ट किया
1: जी,
0: और फिर मुझे उसमें इतना मजा नहीं आया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे फिल्म्स में असिस्ट करना है। तब आपके फेवरेट कोई डायरेक्टर्स होते हैं
1: जी,
0: वो शॉर्टलिस्ट करके उनको चेस करने लगा मैं, बट कहीं बात नहीं बनी क्योंकि मेरे कोई कॉन्टेक्ट नहीं थे फिल्म इंडस्ट्री में, कोई पहचान नहीं थी। मुझे पता चला कि जेवियर्स इंस्टीट्यूट का XIC का कोर्स है, फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन का पार्ट टाइम कोर्स है कुछ, तो मैंने उसका एंट्रेंस दिया और उसमें पास हुआ, और फिर मेरा वो फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन का कोर्स था, आई थिंक 9-10 महीने का कोर्स था। शाम को होते थे क्लासेस और वीकेंड को फुल डे होता था, तो VT में जेवियर्स में जाता था और वहाँ अच्छा एक ग्रुप बन गया। हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो बहुत अच्छे हुए, वहाँ से मुझे फिल्म्स डिवीजन के लिए फिल्में बनाने का मौका मिला। मैं और मेरे ग्रुप को, हम 4 जन थे, तो हमने गुजरात अर्थक्वेक पे भी कुछ फिल्में बनाई थी। वहाँ से मेरी जर्नी, वहाँ फिल्म्स डिवीजन के लिए काम करने के बाद मुझे लगा अभी कुछ फिल्म मेकिंग में फिनेस नहीं था, तो मैंने फिर एड फिल्म्स ज्वाइन किए। एक मेरे कजिन ब्रदर की बचपन की दोस्त थी जो एड फिल्म्स में काम करती थी, तो उससे बात की, तो फिर मैंने 1-1.5 साल एड फिल्म्स में असिस्ट किया, बहुत सीखा उधर, पैसे भी कमाना शुरू किए, अच्छे खासे पैसे भी आते थे, बट मजा नहीं आ रहा था क्योंकि रियलिज्म नहीं था तब। अर्ली 2000 में एड्स बहुत चकाचक चीजें होती थी, ये रियल कैरेक्टर्स और ये सब होते ही नहीं थे।
1: अच्छा,
0: हाँ तब एड्स बहुत अलग बनते थे 2001-2002 में। फिर मैंने बोला कि अच्छा 1.5 साल मैंने काम किया उधर, और फिर मैंने बोला हाँ भाई फिल्म में करना है, कैसे तैसे फिल्म में करना है। तो मैं अप्रोच करता था, श्याम बेनेगल को अप्रोच किया, गोविंद नियालानी को अप्रोच किया, बट किधर कुछ हुआ नहीं। मुझे लगा हाँ रियलिस्टिक फिल्मों में असिस्ट करना है, और फिर मैंने सत्या देखी हुई थी और सत्या का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, और तब अनुराग का नाम सुना था कि उन्होंने 5 करके एक फिल्म बनाई है, और फिर उनके इंटरव्यूज आई थिंक पढ़ता था तभी, आई डोंट नो वीडियो इंटरव्यूज कितने थे उनके, उनका जो विजन था वो मुझे बहुत प्रभावित हुआ, मुझे लगा हाँ इनको असिस्ट करना चाहिए करके, तो उनके पीछे लगा रहा मैं। और एक पॉइंट आया जब मैंने उन्हें कहा कि प्लीज मुझे असिस्ट करने का मौका दो, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं सारा खर्चा उठा लूंगा, बस मुझे सीखने दो। तब उन्होंने आई थिंक मेरा पागलपन देख के बोला कि

0: ठीक है तुम आ जाओ मेरी टीम में।
1: तो जैसे आप उनके पीछे लगे रहे, तो क्या थी ये प्रक्रिया पीछे लगने, मतलब किस तरह से मिल सकते हैं, इस तरह से कैसे आप
0: मतलब
1: उनके पीछे
0: मेरा
1: लगे?
0: लक तब था, ये तो 2001-02 की बात है, तब डीवीडी हुआ करती थी। तो एक डीवीडी लाइब्रेरी थी, बम्बई के एक इलाका है बांद्रा, और वहाँ का जो ओनर था डीवीडी लाइब्रेरी का ओनर, वो बड़े प्यारे इंसान थे, छगन भाई। तो अनुराग भी वो लाइब्रेरी में आता था, तो मैंने बोला कि छगन भाई जरा अनुराग से कुछ मीटिंग करा लो यार, मुझे असिस्ट करना है उन्हें। तो उन्होंने फिर मुझे एक ऐसा, जस्ट एक दिन ऐसा रहा कि मैं भी था वहाँ और वो आए, और उन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन कराया। और वहाँ से जब उन्हें पता चला कि मैं डॉक्टर हूँ जो असिस्ट करना चाहता हूँ, तो वो उनको और भी इंटरेस्ट आ गया कि अच्छा तुम डॉक्टर हो के तुम असिस्ट करना चाहते हो।
1: जी
0: बोला हाँ, अब मैंने छोड़ दिया मेडिसिन, मुझे बस फिल्मों में असिस्ट करना है करके, वहाँ से शुरुआत हुई।
1: तो मतलब आपको डायरेक्शन की ओर जाना, ऐसा आपका इंटरेस्ट आ गया
0: हाँ।
1: और इसलिए आप फिर अनुराग जी से मिले, तो सीधा कास्टिंग के हिसाब से
0: नहीं
1: शुरू हुआ या कैसा शुरू हुआ असिस्टेंट डायरेक्टर का?
0: मतलब जो एसोसिएट थे राजकुमार गुप्ता,
1: जी
0: जो बड़े डायरेक्टर है, रेड 1, रेड 2, आमिर, नो वन किल जैसे का
1: जी
0: के, वो एसोसिएट थे अनुराग के। और जब ब्लैक फ्राइडे शुरू हुई तो उन्होंने बोला कि देख तू कास्टिंग संभालेगा। तो पहले कैसा होता था कि 4 या 5-6 AD होते थे, एक असिस्टेंट डायरेक्टर कास्टिंग करेगा, एक असिस्टेंट डायरेक्टर कॉस्ट्यूम देखेगा, एक असिस्टेंट डायरेक्टर सेट देखेगा, ऐसा कुछ हॉलीवुड वाला सिस्टम जो अब है,
1: जी
0: जो एकदम स्पेसिफिक है, वो तब नहीं था कि 4-5 AD सब डिपार्टमेंट संभाल लो। तो प्री प्रोडक्शन में मेरा काम था कास्टिंग का, शूट के टाइम मैं कंटिन्यूटी लिखता था,
1: जी
0: और पोस्ट में मुझे नहीं इन्वॉल्व किया था, बट मैं अटेंड करता था ऐसे ही। तो जब ब्लैक फ्राइडे तैयार हुई, पोस्ट प्रोडक्शन ऑलमोस्ट खत्म होने आया, तब अनुराग ने मुझे बताया कि अच्छा मैं तुझे कास्टिंग डायरेक्टर की क्रेडिट दे रहा हूँ। तब तक मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी क्रेडिट होती है।
1: जी
0: तब मैंने जाके हॉलीवुड की फिल्में देखी, और उसमें मैंने देखा कि एक्टर्स के नाम के बाद कास्टिंग करके क्रेडिट आती है। तब मुझे समझा अच्छा देर इज अ क्रेडिट लाइक दिस इन फिल्म्स। सो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर अनुराग ही मेरा नाम रेकमेंड करता था, क्योंकि ब्लैक फ्राइडे को बनने के बाद भी 3 साल लगे रिलीज होने को। तो अनुराग खुद बहुत सारी फिल्मों के डायलॉग्स लिखते थे, तो एक दो जगह मेरा नाम रेकमेंड करता कि इसको ले लो कास्टिंग के लिए।
1: अच्छा
0: तो ऐसे मुझे एक दो प्रोजेक्ट्स उसके मिले जिसमें वो डायलॉग लिख रहा था और मैं कास्टिंग कर रहा था। तो वहां से थोड़ा कास्टिंग डायरेक्टर की जर्नी शुरू हुई।
1: जी, तो कैसी प्रक्रिया रहती है इसकी कास्टिंग की, ये जानना चाहेंगे आपसे?
0: कास्टिंग में क्या होता है कि हमें एक स्क्रिप्ट मिलती है। यूजुअली क्या होता है, अगर एक फिल्म को शुरुआत होने के लिए, अगर छोटी फिल्म नहीं हो, अगर एक मीडियम साइज की फिल्म हो, तो यूजुअली एक दो बड़े स्टार होते हैं। तो जब उनकी कास्टिंग हो जाती है तो आपको एक ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि भैया आप शुरू कर लो काम।
1: जी
0: तो बड़े एक दो जो भी कलाकार है वो रहेंगे, उसके अलावा जो भी डायलॉग वाले कैरेक्टर हैं उनको हमें कास्ट करना पड़ता है। तो हमें वो स्क्रिप्ट मिलती है, फिर हम हर कैरेक्टर का एक अच्छा सीन निकालते हैं, उसके फिर हम कॉपीज हम एक्टर्स को देते हैं जो हमें लगता है कि हाँ ये रोल में सूट होंगे। तो इस तरह से हम फिर पूरी एक लिस्ट बनाते हैं कैरेक्टर्स की, जो स्पीकिंग पार्ट्स है,
1: जी
0: जिनके डायलॉग्स है, उनकी पूरी एक लिस्ट बनाते हैं। फिर हर कैरेक्टर के हमारे जो डेटाबेस में है, हमारी जानकारी में जो अच्छे एक्टर्स है, जिनकी अच्छी ट्रेनिंग हुई है, जिन्होंने थिएटर, NSD, FTII या जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसने 10-15 साल थिएटर किया हो, वैसे सब नाम हमारे पास होते हैं। तो हम उसमें देखते कि किसका चेहरा ये कैरेक्टर से मिलता है। तो वैसे हम 8-10 शॉर्टलिस्ट करते, उनको वो एक सीन भेजते हैं, फिर वो उनको टाइम देते थे कि भैया 2 दिन बाद आपको 4-5 के बीच में आके ये सीन करना है। फिर वो एक्टर आता है, परफॉर्म करता है, फिर उसमें से जो 8-10 जन जो हमने ऑडिशन किए, उसमें जो हमें जो बेस्ट 3-4 लगते हैं, वो हम डायरेक्टर को दिखाते हैं कि देखो ये 3 बेस्ट थे, आप देखो। उनको अगर नहीं पसंद आए कोई भी तो और
1: जी
0: लोगों को ऑडिशन करते हैं, वरना वो 3-4 में से कोई एक लॉक कर लेते हैं।
1: तो मतलब ये पूरा एक प्रोसेस रहता है, पहले आपकी नजरों से गुजरती है सारी चीजें कि
0: हाँ
1: कौन आपको कौन लगता है उस किरदार में फिट
0: हाँ
1: बैठेगा, और देन आप आगे लेके जाते हैं।
0: या
1: गौतम जी, इतनी बातों के बीच एक गाना तो होना चाहिए।
0: हाँ, एक पुराना गाना जो मुझे बहुत पसंद है वो है हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे, वो भी
1: चलिए
0: बहुत पसंद है।
1: जी सुन लेते हैं।

0: तो गौतम जी, आपने कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर जब अपनी शुरुआत कर ली, हर डायरेक्टर का काम करने का कुछ तरीका अलग होता है उनकी कास्टिंग जब आप करते हैं उनकी फिल्म के लिए, या कास्टिंग का अपना एक ही तरीका है?
1: यूजुअली एक ही तरीका होता है, सिर्फ है कि कोई डायरेक्टर का देखने का नजरिया अलग अलग होता है। एक ही प्रोसेस होता है। अनुराग जैसे डायरेक्टर को 5 सेकंड लगते हैं डिसाइड करने को कि ये एक्टर फिट है कि नहीं उनके लिए। कुछ कुछ डायरेक्टर्स को और टाइम लगता है और उनको ज्यादा ऑप्शंस देखना पसंद करते हैं। कोई थोड़े इंडिसाइसिव होते हैं, लास्ट मिनट में डिसाइड करते हैं। अलग अलग टाइप के हैं, बट प्रोसेस ज्यादातर सेम ही होता है।
0: आपकी ओर से प्रोसेस सेम है और डायरेक्टर्स का नजरिया है।
1: हाँ, बट कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि दो एक्टर्स दोनों परफेक्टली फिट है, समझ नहीं आ रहा है कि किसके पास जाएं। तो जैसे विशाल जी के साथ हुआ था, विशाल भारद्वाज के साथ, हम दोनों कंफ्यूज थे कि हु इज द बेटर ऑप्शन, लेकिन सर ने बोला कि इसका इंट्रोडक्शन लगाओ। तो एक्टर का इंट्रोडक्शन देख के उसकी पर्सनैलिटी और क्लियर हो गई। तो जिसका पर्सनैलिटी थोड़ी फिट हो रही थी और ज्यादा, वो लॉक हो गया।
0: तो ऐसे मुश्किल मौके
1: ऐसे भी कभी कभी होता है। कभी कभी बहुत अच्छे एक्टर्स भी फिट नहीं होते क्योंकि टेक्निकली सिनेमाटोग्राफर के वजह, या अगर हाइट डिफरेंस हो, या जब आप कॉम्बिनेशन कास्टिंग कर रहे हो, एक फैमिली की कास्टिंग कर रहे हो, तो आपको यू हैव टू कीप ऑल द 4 कैरेक्टर्स इन माइंड कि चलो ये 4 जन एक फैमिली के लगने चाहिए। तो भी कभी कभार होता है कि एक अच्छा ऑडिशन नहीं सिलेक्ट होता, वो भी होता है, बट दैट इज रेयर। मोस्टली द बेस्ट ऑडिशन गोज थ्रू यूजुअली।
0: तो अगर कोई बाय चांस सेलेक्ट नहीं होते हैं आर्टिस्ट आपने जिनका ऑडिशन लिया है और भेजा है, तो उनको बताने का कुछ ऐसा स्पेशल प्रोसेस होता है कि कभी कोई बुरा ना माने, कुछ ऐसा ना लगे उन्हें कि क्यों नहीं सेलेक्ट हुए?
1: देखो, एक्टर को तो बुरा लगता ही है, पर हम उन्हें कोशिश करते समझाने की कि ये इसमें आपकी गलती नहीं है। कि मैं हमेशा एक्टर को तो पर्सनली मत लो, क्योंकि बहुत चीजें जाती है इन एक कैरेक्टर को फाइनल करने में। तो पर्सनली ना ले और ऑडिशन करते रहें विद द सेम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ऑडिशन करें, नेगेटिवली ना ले और आगे बढ़े, क्योंकि ये सब एक्टर के साथ होता है। हर एक्टर को बहुत समय लगता है टू रीच दैट सक्सेसफुल पोजिशन। एवरी एक्टर, आपको वो जर्नी क्रॉस करनी है थ्रू रिपीटेड फेलियर्स।
0: तो कभी ऐसा हुआ कि किसी एक्टर को आपने, मतलब वो सिलेक्ट नहीं हुए हो लेकिन वो बुरा मान गए हो, लेकिन बाद में उन्हें ये एहसास हुआ हो कि नहीं?
1: हाँ, तो ऐसे भी थे एक्टर्स। एक एक्टर है, 2-4 साल पहले मैंने उसके साथ 3-4 बार काम किया है। उसका कॉल आया मुझे कि गौतम भाई, मैंने फिल्म में असिस्ट किया और मुझे समझ आया कि प्रोसेस क्या है, कैसे कास्टिंग होती है, और मैं खामखा आपको कोसता था कि आपने मुझे कास्ट नहीं किया करके। तो जब एक एक्टर कास्टिंग डिपार्टमेंट में काम करता है कास्टिंग असिस्टेंट की तरह, या एक असिस्टेंट डायरेक्टर के पोजीशन में काम करता है, तो उन्हें पता चल जाता है बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, कैसे कास्टिंग होती है, क्या जाता है डिसीजन मेकिंग में, और उन्हें फिर बेटर समझ आता है। इसलिए मैं हर एक्टर को बोलता हूँ, पर्सनली मत लो, बस अपने क्राफ्ट पे काम करो। कोशिश करो कि आप जो पिछले साल जो आपकी एक्टिंग एबिलिटी थी, इस

0: साल उस पिछले साल से बहुत बेटर होनी चाहिए।
1: हाँ।
0: तो क्राफ्ट पे काम करते रहो, वो मेरी एडवाइस होती है हर एक्टर को। और आपका टाइम आएगा, ये एक 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। यहाँ लंबी रेस के घोड़े जीतते हैं।
1: पूरे वक्त अपने कला को निखारते रहिए, तराशते रहिए।
0: हाँ,
1: अगर हम देव डी की बात करें जिसकी कास्टिंग आपने की, तो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए, क्योंकि इसकी कास्ट एक से बढ़कर एक है, बिल्कुल अलग तरह की कास्ट है, कुछ टिपिकल किरदार उसमें बहुत कम है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहा, किस तरह से आपने चुना?
0: आई थिंक अनुराग भी काफी इन्वॉल्व होता है कास्टिंग में, और अभय तो पहले से ही था कास्ट। अभय का ही आइडिया था आई थिंक एक मॉडर्न डे देवदास बनाना, और अनुराग ने और विक्रम ने शायद वो स्क्रिप्ट लिखी। और माही को आई थिंक अनुराग ने ही एक पार्टी में देखा था, जो कल्कि का पार्ट है
1: जी
0: चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी। और जैसा पार्ट था वो पार्ट आज बहुत कॉमन दिखता है, बट 2007 में वो बहुत ही शॉकिंग था एक्टर्स के लिए। तो वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ट्राई भी नहीं करना है करके। बट इसमें हमने बहुत एक्टर्स को ऑडिशन किया था, राधिका आप्टे को किया था, रिचा चड्डा, ऑल दीज पीपल वर टेस्टेड, फाइनली वी वेंट विद कल्कि।
1: और बिल्कुल सही लगती हूँ किरदार के, हम जैसा कह रहे थे, ऐसा लगता है वो ही वो उस किरदार को बहुत अच्छी तरह से निभा सकती हैं। तो यहाँ पर हम एक गाना भी सुन ले, क्योंकि इतनी सारी मेहनत की आपने इसके पीछे, तो एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का।
0: हाँ, ये देवडी का गाना है, अमित त्रिवेदी का, साली खुशी आई थिंक।
1: खुशियों को याद करते हुए गाना सुनते हैं आपकी पसंद पर।

0: तो कभी कभी ऐसा कुछ होता है कि बहुत से किरदार को सोच के ही कहानी लिखी जाती कि इसमें यही व्यक्ति अच्छा लगेगा और उसने मना कर दिया, मान लीजिए उस एक्टर ने, फिर उसके बाद जब किरदार खोजना होता है तो मुश्किल ज्यादा होती है क्या? जैसे किसी खास एक्टर को सोच के लिखा गया हो और उन्होंने कहा कि हमें तो नहीं करना इसमें काम,
1: मतलब आई थिंक ये बात है कि देखो मुश्किल तो होती है लेकिन दूसरा ऑप्शन मिल ही जाता है
0: जी।
1: नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल, लाइक आपको हमेशा एक अच्छा एक्टर मिल ही जाएगा और फिर आप उस कैरेक्टर को थोड़ा सा रीराइट करते हो उसे मन में रख के।
0: और सबसे ज्यादा टाइम किस फिल्म की कास्टिंग के लिए आपको लगा?
1: सबसे ज्यादा वक्त एक हमने एक प्रोजेक्ट के लिए किया जो शेल्व हो गया था, हमने ऑलमोस्ट 4-4.5 मंथ्स कास्टिंग की थी मिडनाइट चिल्ड्रेन की, जो विशाल जी बना रहे थे नेटफ्लिक्स के लिए, वो मैं अनमोल अहूजा जो कास्टिंग बे के चलाते हैं हम दोनों मिलके कर रहे थे वो, क्योंकि बहुत बड़ा कास्ट था वो, लेकिन सैडली प्रोजेक्ट शेल्व हो गया था वहाँ। आई थिंक उससे ज्यादा टाइम मैंने कोई प्रोजेक्ट पे स्पेंड नहीं किया।
0: और सबसे कम किस में लगा आपको समय?
1: सबसे कम आई थिंक काफी कम, सबसे कम नहीं बट काफी कम टाइम लगा नो वन किल जेसिका में, क्योंकि उसमें हमारे पास सिर्फ एक महीना ही था, महीना या सवा महीना था, और बड़ा कास्ट था, 50-70 स्पीकिंग पार्ट्स थे, बट वो था कि हम बिकॉज शूट दिल्ली में था तो हमने दिल्ली में ही सारा टैलेंट 3-4 हफ्ते में टेस्ट करके आई थिंक टचवुड राज को 95% ऑफ द ऑप्शन

0: टीवी से होते हैं, उनके एक्टर्स अलग होते हैं, उनका परफॉर्मेंस हाइटेंड होता है, थोड़ा रियलिज्म से थोड़ा ऊपर होता है वो
1: जी।
0: तो वहां अलग एक्टर्स होते हैं। जैसे मेरे को तकलीफ होती है जब कुछ एक्टर्स को मैंने, जिन्होंने बहुत सारा सोप ऑपेरा वाले शोज किए हैं, तो उनको फिल्म में अडेप्ट करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए टाइम लगता है, कर पाते हैं इवेंचुअली, बट थोड़ा सा वो मीडियम से इस मीडियम में आने को टाइम लगता है। बट वेब और फिल्म में ज्यादा फर्क नहीं है, सेम ही है।
1: और आपने कभी ऐसा सोचा कि कास्टिंग डायरेक्टर का काम आप करते हैं, उसके अलावा भी कोई काम करना चाहते हैं ऐसा कुछ?
0: अभी भी डायरेक्ट करने का सपना तो है ही है, वही पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ।
1: और कुछ कभी किया हो बीच में, मतलब ऐसे कास्टिंग के काम के बीच में ऐसा कुछ अपना कुछ काम करते हैं? कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये इस रोल में तो मैं ही फिट बैठता हूँ?
0: नहीं नहीं, मुझे एक्टिंग का कोई शौक नहीं है।
1: और आपके ऑफिस में अगर मान लीजिए आपकी टीम में कोई हो, तो कभी ऐसा लगता है कि ये इस रोल
0: मैं
1: में
0: कोशिश करता हूँ कि अपनी टीम को कास्ट ही नहीं करूं। क्या है, क्योंकि दूसरे एक्टर्स को फिर बुरा लगता है, एक्टर्स को लगता है कि अच्छा ये कास्टिंग के जरिए काम मिल जाएगा करके, वो भी बहुत गलत होता है। तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो बिगनिंग में एक दो बार हुआ होगा कि चलो टीम को ही कास्ट कर लो, या छोटे छोटे पार्ट जिसमें इतना फर्क नहीं पड़ता हो, बट जब कुछ थोड़ी प्रॉब्लम्स आने लगी, जब बहुत सारे जो एक्टर्स हैं उनको काम नहीं मिला और जो कास्टिंग असिस्टेंट्स को काम मिला, तो एक्टर्स में बहुत एंगर देखा मैंने। तो वो जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ ना, तो मैंने तब वो रूल ही बना दिया मेरे टीम के साथ कि भाई अगर आप मुझे असिस्ट कर रहे हो तो आपको मैं ऑडिशन नहीं करूंगा, अगर आपको एक्ट करना है तो आपका कास्टिंग का क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको, ये रूल मैंने बना दिया।
1: तो अगर किसी को आपकी टीम में से कास्ट होना है किसी फिल्म में, तो उसको टीम छोड़नी पड़ेगी?
0: हाँ, और फिर एज एन एक्टर ऑडिशन करना पड़ेगा, फिर उनकी जगह नहीं है मेरे टीम में।
1: तो मतलब वो फेयरली हो ताकि सब,
0: हाँ, ताकि जो लोग पूरा टाइम एक्टिंग में घुसे हुए हैं, जो ट्रेन कर रहे हैं अपने आप को, वर्कशॉप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उन्हें एक बेटर चांस मिले।
1: तो गौतम जी, यहाँ आपकी पसंद का एक गीत सुनते चलें और उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये जो रेखा भारद्वाज जी ने जो गाया है कबीरा, वो गाना मुझे बहुत पसंद है।
1: तो चलिए वो गाना सुन लेते हैं।

तो गौतम जी, जब कास्टिंग की हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग तरह की कास्टिंग होती है, तो मेन कैरेक्टर की, जैसे आपने बताया कि पहले मेन कैरेक्टर्स की जब कास्टिंग हो जाती है, उसके बाद आगे के कैरेक्टर्स आप चूज करते हैं, तो अलग अलग तरह के कैरेक्टर होते हैं। जैसे आपने बताया संवाद वाले कुछ कैरेक्टर होते हैं, पर बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनका कोई संवाद नहीं होता है।

0: पर वो फिल्म में नजर आते हैं, बार बार भी नजर आते हैं, तो किस तरह से ये सारी कास्टिंग का काम होता है?
1: देखो, पहले तो आप प्राइमरी कैरेक्टर्स पे ध्यान देते हैं, जिनका सबसे ज्यादा किरदार है, उनकी कास्टिंग पहले होती है, फिर हम सेकेंडरी कैरेक्टर्स पे जाते हैं जिनके 3-4 सीन हो, साइड बाय साइड हो ही जाता है वो भी प्राइमरी के साथ शुरू करते हैं, फिर जब प्राइमरी और सेकेंडरी कवर हो जाते हैं तब टर्शियरी होते एक लाइन वाले, वो फिर हम ओवर अ पीरियड ऑफ 4-5 डेज सारे कैरेक्टर्स को बुलाते हैं, सारे एक्टर्स को बुलाते हैं, क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है, क्योंकि एक ही लाइन बोलनी है तो 5-7-10 मिनट में एक एक ऑडिशन हो जाता है, तो ये 4-5 दिन जाते हैं, सारे टर्शरी करते हैं, बाकी जो नॉन स्पीकिंग पार्ट है, अगर उसमें टर्शरी में भी कोई है जिसको बिना डायलॉग के इमोट करना है, एक्सप्रेशन देनी है, तो भी हम एक्टर्स ही ढूंढते हैं उसके लिए, और फिर बाकी रहता है जो क्राउड फिर एक जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर होता है, वो प्रोडक्शन जब डायरेक्टर डिमांड करता है कि हाँ मुझे सपोज ये मार्केट का सीन है, मार्केट के सीन में मुझे 70-80 लोग चाहिए एज अ क्राउड इन द मार्केट, तो वो फिर वैसे वो स्ट्रेटा के लोग एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है कि कहाँ है, डिपार्टमेंटल स्टोर का सीन है, मतलब एक मॉल में है तो अलग होगा, एक सब्जी मंडी होगा तो अलग टाइप का क्राउड होगा, तो वो जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर होता है वो लेकर आता है, उनको जूनियर आर्टिस्ट ही कहलाते हैं वो,
0: मतलब कि अगर गांव का सीन है तो उनकी उस तरह के लोग दिखने वाले एकदम कोई बहुत ज्यादा शहरी जो दिख रहे हैं उनको नहीं लेंगे, तो इस तरह से वो आप चुनाव कर लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो गौतम जी, अगर किसी एक्टर को हम कास्ट करते हैं तो सबसे पहले तो हम उसे चेहरा उसका है, कैसी कद काठी, ये तो देखते ही हैं, उसके अलावा और क्या चीजें हैं जो आप जज करते हैं?
1: देखो, हर एक्टर को आपके दिमाग में जो विजुअल है एक कैरेक्टर का, उसमें अगर वो बैठता है तो वो एक फर्स्ट प्लस पॉइंट हो जाता है उसके लिए, बाकी फिर है कि एक्टर कितना स्ट्रांग है, दैट इज द फाइनल मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है, कि अगर कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसकी एक्टिंग एबिलिटी पे बात आ जाती है, फिर अगर वो परफेक्टली मैच हो रहा है कि नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे है, वो मैटर नहीं करता, फिर अगर एक स्ट्रॉन्गर एक्टर ऑप्शन है तो यूजुअली अ डायरेक्टर विल गो विथ हिम और हर,
0: क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस से वो
1: वो ऐसे लेयर्स लाएगा परफॉर्मेंस में जो शायद एक वीकर एक्टर नहीं ला पाए।
0: और आप जब कभी फिल्म देखने जाते हैं तो कहते हैं कि जब इस मीडिया में कोई काम करने लगता है तो वो जो काम कर रहा है उसके हिसाब से ही फिल्में देखता है,
1: बट कभी कभी हो जाता है जब आपको अगर कास्टिंग गलत लगती है या सेट ठीक नहीं लगते हैं तो वो नोटिस में आता है, जो भी ज्यादा फिल्में देखते हैं, आई एम नॉट सेइंग जो काम करते हैं, बट जो काम करते हैं, जो बहुत सारी फिल्में देखते हैं, वो बहुत जल्दी पकड़ने लगते हैं प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को, तो एक दफा आप वो कुछ नोटिस करने लगे तो फिर थोड़ा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है फिल्म देखने का,
0: पर्दे के पीछे की बातें जब आप जान रहे थे,
1: जान जाते हो, अरे यहाँ ये रह गया, इन्होंने ये ठीक नहीं किया।
0: अगर कोई इंडस्ट्री में आता है, कास्टिंग डायरेक्टर बनना चाहता है वो, तो इसके लिए क्या कर सकते, कोई कोर्स है या बस करने की कला है सब?
1: आई थिंक कास्टिंग डायरेक्टर के कोर्स तो अभी तक आई डोंट थिंक है, बट आपको आके कोई कास्टिंग डायरेक्टर को ही असिस्ट करना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कास्टिंग की एक इंस्टिंक्ट होती है जो मुझे लगता है कि मेरे में थी, इवन दो मुझे ये करना नहीं था, ये तो मुझे पता भी नहीं था, बट ये था कि जब आप एक एक्टर को देखते हो एक पर्टिकुलर किरदार में और आप बोल रहे हो कि यार ये तो वो लग ही नहीं रहा, जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो। आई थिंक एक इंस्टिंक्ट होती है, ऐसा मुझे लगता है, आई मे बी रॉन्ग बट देयर इज एन इंस्टिंक्ट।
0: हाँ, मतलब वो स्टोरी को पढ़ के आपको ऐसा लगता है कि इसमें ये व्यक्ति ज्यादा अच्छा लगेगा और उस तरह से आपको एक अंदाजा।
1: वो होता ही है, मतलब अगर एक कास्टिंग डायरेक्टर को चेहरे दिख जाते, अगर एक चेहरा दिख गया तो उसको लगता है हाँ ये यहाँ पे अच्छा बैठेगा करके, और एक आपको एक इंटरेस्टिंग चेहरा पहचानने की एबिलिटी आ जाती है।
0: कोई अगर एक्टर बनने के लिए यहाँ आते हैं, पहचाने कैसे कि असल में कास्टिंग डायरेक्टर क्यों है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हर दूसरा व्यक्ति बोलता है कि मैं काम दिला सकता हूँ, ऐसे भी लोगों से हम मिलते हैं।
1: जब भी एक्टर्स आते हैं ना, जो भी बॉम्बे आते हैं, एक तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि एक्टिंग सीखने मत आना, कभी सीख के आओ, ट्रेन करके आओ, क्योंकि मुंबई बहुत महंगा शहर है
0: जी,
1: सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, और एक दफा आपके पास पैसे नहीं हो, अगर आप एक रईस खानदान से नहीं हो तो आप एक्सप्लॉयट हो जाओगे, या बहुत बहुत डिफिकल्ट जगह रहने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए। इसीलिए मैं हर कोई एस्पायरिंग एक्टर को कहता हूँ, आपके होम टाउन में, आपके घर के पास कोई भी थिएटर ग्रुप है हो या कोई इंस्टीट्यूट हो, वहाँ ज्वाइन करो एक्टिंग। ऐसे आप कुछ एक हफ्ते भर का कोर्स करके आप एक्टर नहीं बनते हो, बहुत टाइम लगता है एक अच्छा एक्टर बनने के लिए, लाइफ टाइम लग जाती है एक अच्छा एक्टर बनने के लिए। तो मेरी एडवाइस वही रहती है कि आप जाके एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन करिए, या एक NSD जैसा इंस्टीट्यूशन हो, ड्रामा इंस्टीट्यूट, या FTI जैसा, या ड्रामा स्कूल, ऐसे लॉन्ग फॉर्म इंस्टीट्यूट जो है वो ज्वाइन करें, या आपके आसपास के शहर में एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन करें, 4-5 साल थिएटर करें, पूरा क्राफ्ट समझे और फिर बॉम्बे आए। क्योंकि फिर क्या है, जब आप आओगे आपके थोड़े से जो रेडार्स है वो एक्टिव हो जाएंगे, आपको समझ आएगा कौन बुद्धू बना रहे और कौन जेन्युइन है करके। आई थिंक है जेन्युइन लोग भी है बट फ्रॉड्स भी बहुत है, वो फिर फेक ऑडिशंस करते हैं एक्सप्लॉइट करने के लिए, या फिर आपसे पैसा मांगेंगे कि आप 50,000 दे दो या 20,000 दे दो, आपको रोल फाइनल होगा और आपको कुछ बता देंगे, सीन दे देंगे, और बाद जब शूट का टाइम होगा वो लोग ही गायब हो जाएंगे। तो ऐसा भी एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है। इसीलिए मैं हर व्यक्ति को बोलता हूँ जो एक्टर बनना चाहता है या बनना चाहती है कि ट्रेन करके आओ, यू विल बी बेटर प्रिपेयर टू फेस द इंडस्ट्री देन।
0: और उनके भी एक अनुभव रहेंगे एक्टिंग के, तो वो ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं।
1: हाँ, और अब जब आप थिएटर वेटर करके आओगे तो बॉम्बे आओगे तो आपको भी थिएटर सर्किट के और लोग मिलेंगे।
0: हाँ,
1: वो भी एक होता है, आपका कोई ना कोई पहचान वाला होता है बम्बई में। फिर ऐसे ही आप डायरेक्ट आ जाओगे बिना एनी नॉलेज तो आपका फायदा उठाया जाएगा।
0: तो जिन फिल्मों के लिए आपने कास्टिंग की है उनमें से कौन सी आपके सबसे दिल के करीब है?
1: आई थिंक पहली वाली ब्लैक फ्राइडे, पहली फिल्म आई थिंक यूजुअली स्पेशली होती है सबके लिए। और क्वांटिटी भी ज्यादा थी, 172 स्पीकिंग पार्ट्स थे और 2 महीने थे, और बस मैं था और एक कोई एक और असिस्टेंट होता था क्यूज के लिए, बस हम दो ही मिलके पूरी कास्टिंग हमने की। बहुत ही मुश्किल था, सुबह से लेके रात तक बस ऑडिशन पे ऑडिशन पे ऑडिशन, एंड विदाउट एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस। सबसे डिफिकल्ट बट खुशी वही कास्ट को देख के लगती है।
0: तो ये आपको मतलब याद रहेगी फिल्म, और इससे ऐसा कह सकते हैं कि इससे आपकी एक ट्रेनिंग हो गई पहली फिल्म।
1: हाँ हाँ, ब्लैक फ्राइडे ने सारा जो कुछ भी मैं हूँ उस फिल्म के वजह से हूँ।
0: तो गौतम जी, जब ब्लैक फ्राइडे की इतनी बात हो रही है तो उस फिल्म से कोई गाना सुन ले।
1: अरे बंदे है ना, इंडियन ओशन का गाना,
0: बहुत ही प्यारा गाना है, चलिए सुन लेते हैं।

0: तो ये आप लोगों के पास ये पूरा आर्टिस्ट का एक कोई बैंक होता है, डेटाबेस होता है, किस तरह से?
1: देखिए जैसे आप और काम करते जाते हैं, आपको नए नए एक्टर्स पता चल जाते हैं, और बस आपकी टीम भी होती है। मैं अपनी टीम को प्लेस देखने, थिएटर देखने भेजता हूँ, अगर मैं खुद नहीं जा पाऊँ, कोशिश करता हूँ जितना हो सका थिएटर देखूँ, शॉर्ट फिल्म देखूँ। इंस्टाग्राम पे भी आजकल लोग देखते हैं कोई अच्छा टैलेंट निकल आया क्या। तो मेरी एडवाइस वही होती है जो एक्टर्स जिनके पास अगर अभी कम काम है, कि अपनी विजिबिलिटी बढ़ाएं, प्लेस करें मिलके, प्ले होस्ट करें, कास्टिंग की इंडस्ट्री जो है, कास्टिंग असिस्टेंट्स, कास्टिंग एसोसिएट्स, उनको इनवाइट करें अपने प्ले के लिए, या शॉर्ट फिल्म बनाएं, सबको भेजें, 100 जन को भेजो, शायद 4 जन जो सही हो गए उनके पास पहुंच गया तो वो आपको बुलाएंगे। अगर आपके पास कोई ऐसी पीस है जो आपको बहुत अफेक्ट की, कोई राइटिंग जो आपने थिएटर करते हुए कुछ आपको बहुत प्रभावित हुआ, तो वो इंस्टाग्राम पे परफॉर्म कर लो। जस्ट होप कि कोई सही इंसान कहीं पे भी हो, वो आपको देख ले और आपको कांटेक्ट करे, शायद शॉर्ट फिल्म के लिए, प्ले के लिए, या जिसके लिए भी। यही कहता हूँ कि एक्टर्स को, कि अपने आप को विजिबल रखो
0: और अपने आप परफॉर्म करते रहे, अपना काम तो करते जाइए, मतलब अपनी तरफ से कोशिश आप जारी रखिए,
1: कोशिश जारी रखिए। अगर आप अच्छे एक्टर हो, आप नोटिस हो जाओगे और आपको बुलाया जाएगा ऑडिशन के लिए।
0: तो इंस्टाग्राम में जो फॉलोअर्स किसी किसी ज्यादा होते हैं, तो ये भी कुछ असर करता है कास्टिंग के लिए?
1: ये मतलब प्रेशर आ जाता है प्रोड्यूसर्स से, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को लगता है कि जिसके पास ज्यादा फॉलोअर है उससे उनको ऑडियंस ज्यादा मिल जाएगी, TRPs या जो भी मेजर ऑफ सक्सेस है वो ज्यादा मिल जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि वो अगर वो इन्फ्लुएंसर को लोग अपने फोन पे देख रहे हैं, तो वो शायद उनमें थिएटर में देखने के लिए 500 रुपया तो शायद नहीं खर्च करें। उन्हें जब फोन पे फ्री पे मिल रहा है सब कुछ, और अगर वो इन्फ्लुएंसर वो ही कर रहा है, मैं नहीं कहता कि सब इन्फ्लुएंसर वैसे, बट अ मेजॉरिटी ऑफ देम विल हैव टू वर्क ऑन द क्राफ्ट। उन्हें अपने कैरेक्टर जो इंस्टाग्राम पे प्ले करते हैं, उसके बाहर के कैरेक्टर प्ले करने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज उन्हें सिर्फ वही काम मिलेगा, जो वही रोल जो वो इंस्टाग्राम पे प्ले कर रहे हैं, वही किरदार उनको फिल्म में मिलेगा। तो वो एक दो बार मिलेगा, उसके बाद नॉवेल्टी वेयर ऑफ हो जाएगी, क्योंकि वो फोन पे ही फ्री पे मिल रहा है आपको।
0: तो ये बताइए कि अभी कौन सा गीत हम सुन लें आपकी पसंद से?
1: हाँ, वो डेली 6 का रहमान का रहना तू,
0: बहुत ही अच्छा गाना, हम सुन लेते हैं आपकी पसंद पर।

0: गौतम जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले जैसे फिल्मों में कास्टिंग होती थी वो कुछ अलग तरह से होती होगी, और अभी जैसे अब सोशल मीडिया का इतना दौर है तो कुछ लोग अपने यूट्यूब चैनल्स भी हैं लोगों के फिल्मों में आने से पहले भी, तो इस तरह से भी कुछ कास्टिंग में चेंजेस आए हैं?
1: मैंने शुरुआत की 2003 में ब्लैक फ्राइडे के साथ। उसके पहले 90 सिनेमा था जिसमें सिनेमा ऐसा बन नहीं रहा था। एक बैंडिट क्वीन छोड़ दो आप, जो तिग्मांशु धूलिया जो पहले आई थिंक हिंदी सिनेमा के कास्टिंग डायरेक्टर थे, वो एक ही फिल्म थी आई थिंक तब की जो इतनी रियल थी। बट अदरवाइज जो हिंदी कमर्शियल सिनेमा बन रहा था 90s में 80s में, उसमें वही होता था कि अनुपम खेर फादर, फरीदा जलाल मदर, ये पर्सन दोस्त, और फिक्स्ड एक्टर्स होते थे। बाद में जब अनुराग और विशाल जी ने मकबूल बनाई या मकड़ी बनाई, जब हनी त्रेहान जो उनके कास्टिंग डायरेक्टर थे, वो टाइम था जब इन डायरेक्टर्स को रियलिस्टिक कास्टिंग चाहिए थी। तब थिएटर का इम्पोर्टेंस सबको लगा कि थिएटर के एक्टर करो, NSD के एक्टर्स ढूंढो, हमें रियलिज्म चाहिए, जितना रियलिस्टिक परफॉर्मेंस है चाहिए। तो वो 2001-2003 से वो चलता आ रहा है, टिल कोविड वही चल रहा था। अब कोविड के बाद क्या हुआ है कि स्टूडियो के ऑडिशंस कम हो गए, तो अब सेल्फ टेस्ट बहुत होते हैं, तो अब लोगों को आदत भी पड़ गई है कास्टिंग डायरेक्टर्स को कि सीन भेज दो, एक्टर वहीं अपने घर पे रिकॉर्ड करके भेज दे।
0: मतलब अब स्टूडियो में वो नहीं आते, वो खुद ही अपनी,
1: वो पता नहीं क्यों, बट मैं अभी भी प्रेफर करता हूँ कि जब प्रोजेक्ट शुरू होगा तो एक स्टूडियो हायर करो, एक्टर को बुलाओ और ऑडिशन करो। हाँ, अगर बंबई के बाहर है वो एक्टर तो फिर आपको सेल्फ टेस्ट ही करना पड़ेगा। बट कोविड के पीक में ये शुरू हुआ, जूम टेस्ट, सेल्फ टेस्ट, तो आजकल एक्टर्स को उसमें भी प्रिपेयर करना चाहिए कि एक अच्छा सेल्फ टेस्ट कैसे दे, उनको फिगर आउट करना चाहिए। यूट्यूब वीडियोज है उसके बारे में, वो शायद देखना चाहिए। और बाकी कास्टिंग असिस्टेंट्स हो या एसोसिएट्स हो या कास्टिंग डायरेक्टर्स हो, क्योंकि हम सब सोशल मीडिया पे हैं, तो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कोई भी इंटरेस्टिंग दिख जाता है तो अभी उनका एटलीस्ट आपको एक कांटेक्ट भी है। इंस्टाग्राम में आपको उनका वर्क ईमेल भी मिल जाता है, तो हम रीच आउट भी करते हैं अगर कोई बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक कैरेक्टर मिल गया हमको कि हाँ ये ऐसा कैरेक्टर बैठता है हमारी फिल्म में, तो हम उसे रीच आउट करते हैं और उन्हें कास्ट करते हैं। इसीलिए मैं आपको पहले भी कह रहा था कि मैं एक्टर्स को बोलता हूँ जिनके पास काम नहीं है फिलहाल, विजिबिलिटी बढ़ाओ, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करिए
0: अपने रील्स या ऐसे अपना काम आगे
1: बढ़ाते हैं। ह्यूमर कुछ भी, जो भी आपको पर्सनली बहुत अफेक्ट करता है वो पोस्ट करिए। हर एक कोई कॉमेडी रील्स नहीं कर सकता। जो आपकी स्पेशलिटी है, जो आपका कोर स्ट्रेंथ है, वो पोस्ट करिए, कहीं ना कहीं किसको वो अफेक्ट होगा और वो आपको कॉन्टेक्ट करेगा।
0: जब आप किसी को बुलाते हैं ऑडिशन के लिए, आप बुलाना प्रेफर करते हैं ज्यादा और वो खुद अगर कोई वीडियो बना के भेजते हैं, दोनों में क्या फर्क आ सकता है?
1: देखो, ऑडिशन रूम में कोई कैमरा पकड़ के बैठा है, एक असिस्टेंट आपको क्यूज दे रहा है, दूसरा परफॉर्मेंस देख रहा है, 4-5 जन की टीम होती है एक प्रोजेक्ट पे, तो एक पूरी टीम होती है जिसमें हर एक का एक अलग काम होता है। वो कास्टिंग एसोसिएट या कास्टिंग डायरेक्टर होगा, वो आपको गाइड करेगा, ऐसे नहीं ऐसे, करेक्ट करेगा आपको। लाइव उधर आपका बेटरमेंट होता जाएगा, घर पे आप सेल्फ टेस्ट करोगे, आप भेजोगे, फिर जब किसको टाइम होगा देखने का तब वो देगा, फिर वो मैसेज पे आपको रिप्लाई करेगा, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, फिर आप वापस करोगे। अगर आपको कोई क्यू देने वाला दोस्त नहीं मिला घर पे, तो आपके मम्मी पापा क्यूज देंगे जो बहुत खराब क्यूज होंगे मोस्टली, तो प्रॉब्लम्स होते हैं सेल्फ टेस्ट में। बट मैंने ऐसे भी देखा कोई 2-3 ऑडिशन सेल्फ टेस्ट इतने बढ़िया है कि वो एक्टर्स बहुत स्ट्रांग थे।
0: बेसिकली अगर वो आपके सामने आते तो आप उन्हें उनके कैरेक्टर के बारे में भी समझा सकते हैं और
1: बहुत इजी हो जाता है स्टूडियो में। बहुत इजी हो जाता है। सेल्फ टेस्ट में क्या है, एक्टर को सब कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, जो स्टूडियो में होता है वो आपको घर में करना पड़ेगा। आपको 4 दोस्त लगेंगे, एक दोस्त आपको रिकॉर्ड करेगा, दूसरा दोस्त आपको क्यूज देगा, तीसरा आपको बताएगा ऐसे नहीं ऐसे कर, ये स्टूडियो में बढ़िया हो जाता है।
0: और वो भी निर्भर करता है कि आपके दोस्त कितना ज्यादा जुड़े हुए उस क्राफ्ट से।
1: अगर वो खुद एक्टर्स है तो शायद कुछ ठीक ठाक निकल जाएगा।
0: और जैसा कि आप बोले थे कि सोशल मीडिया पर भी रीच आउट करते हैं आप लोग, तो फिर बहुत से लोग है, वही बात है कि तो किस तरह से पहचाने कि जो हमें बोल रहे हैं कि आपको कास्ट किया जा सकता है या आपने टेप भेजी इस तरह से बोल रहे हैं अगर कोई, तो कितने जेन्युइन है, कितने रियल।

0: हमें वो चीज मिल रही है।
1: देखो सोशल मीडिया में हम रीच आउट करते हैं जब हमें कोई प्रोफाइल ऐसी दिखती है जो हमारे स्क्रिप्ट में बैठ रहा हो, कोई ह्यूमरस कैरेक्टर हो या कुछ हो, वो वहां हमको बाय चांस दिख गया और वो वही है जो कैरेक्टर है, अगर वो इज वेरी और ही और शी इज वेरी क्लोज टू दैट कैरेक्टर, देन वी रीच आउट कि हाँ भाई हमारे पास ये है, आप अब स्टूडियो में आके ये परफॉर्म कीजिए, ये हमारे सीन पे करिए। वो अब वो अच्छी तरह कर पाए नहीं कर पाए वो एक अलग बात है,
0: पर जानना हम ये चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी आम इंसान को जो कि रोज रील बनाता है उसका कोई एक कैरेक्टर आपको अपने कैरेक्टर के इर्द गिर्द लग रहा है, तो आपने उसे रीच आउट किया, लेकिन आप तो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि नहीं है, जैसे कि आपने कहा कि वो पता करना पड़ता है कि कौन रियल है कौन नहीं है, तो वो किस तरह से पता कर सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन हो?
1: नहीं, उनको तो फिर पता करना पड़ेगा। एक तो आजकल सब कास्टिंग डायरेक्टर्स के इंस्टाग्राम पेजेस है, आई थिंक आप इंडियन कास्टिंग डायरेक्टर्स या हिंदी फिल्म कास्टिंग डायरेक्टर टाइप करोगे तो आपको 5-10 नाम तो आ ही जाएंगे। तो आज जो भी सोशल मीडिया पे है आपको पता ही चलेगा, इंस्टाग्राम में आपको सब सारी इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी, आप कितने कास्टिंग डायरेक्टर्स है कौन है सब पता चलता है। अभी सब क्रेडिट्स देखते हैं, अगर आप फिल्म की क्रेडिट देखोगे कास्टिंग में कोई जो कास्टिंग डायरेक्टर का नाम है वो नाम टाइप कर लोगे उसका इंस्टाग्राम पेज मिल जाएगा, फिर आप देखिए उसके कोई असिस्टेंट टीम वाले कौन है या उसे मैसेज भेजिए, देखिए रीच आउट करिए। अगर आप बंबई में हैं तो आप ट्रेंड एक्टर हो तो आपको इवेंचुअली पता चलेगा कि मैक्सिमम काम आरामनगर वर्सोवा में हो रहा है
0: जी,
1: तो वहां पहुंच जाइए, वहां पे पता करिए कौन कौन कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, उनके ऑफिसेज में जाइए, दरवाजा खटखटाइए, इंट्रोडक्शन के लिए बोलिए कि मुझे इंट्रोडक्शन देना है। कोई कोई कास्टिंग डायरेक्टर्स एडवर्टाइज करते अपने इंस्टाग्राम पे कि इस दिन ये बजे से ये बजे तक हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो 200-200 एक्टर्स पहुंच जाते हैं इंट्रोडक्शन देने, तो उनकी डेटाबेस में आ जाते हैं,
0: तो जब भी आपको जरूरत हो आप उसमें से किसी को चूज कर सकते हैं,
1: चूज करते बुला सकते हैं फॉरेन ऑडिशन।
0: अगर आपकी फिल्मों की बात करें तो कुछ फिल्मों में आपने बिल्कुल ही अलग तरह की कास्टिंग की है जो कभी पहले उस तरह से नजर नहीं आए, जैसे पटाखा की अगर हम बात करें तो उसमें भी जो भी सब कास्ट है उनको कभी हमने उस तरह से कभी देखा ही नहीं, तो ये कैसे आप सोचते हैं कि वो किरदार में फिट बैठेंगे वो एक्टर जिन्होंने कभी वैसा नहीं किया?
1: आई थिंक वही है, एक्टर का स्ट्रेंथ ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, कैपेबिलिटी। अगर आपको पता हो कि एक अच्छा एक्टर है तो इसको हम टेस्ट करते हैं बेसिकली। हमने बहुत लोगों को वो दोनों लड़कियों के लिए टेस्ट किया था और फाइनली सानिया और राधिका हुई, और वो दोनों बहुत ही अच्छी एक्टर्स हैं। इवन दो दोनों दिल्ली की हैं बट फिर भी उन्होंने वो एक्सेंट और वो राजस्थानी बोली बहुत बढ़िया पकड़ी उन्होंने। उनका वर्कशॉप भी हुआ था बट जिन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखी थी वो उनके घर पे रहे थे दोनों
0: अपने किरदार को पकड़ने के, अच्छे तरह
1: लैंग्वेज पे ट्रेन कर रहे थे। तो एक अच्छा एक्टर होता है वो फिर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है इनटू द कैरेक्टर।
0: वैसे सांड की आंख की अगर हम बात करें तो इसमें भी जब किरदार चुना तो उसमें भी आपने ऐसा पहले से ही नहीं सोचा था कि जब वो बुजुर्ग हो जाएंगी तो दूसरे किरदार लेंगे?
1: नहीं, भूमि और तापसी की कास्टिंग हो चुकी थी जब वो दोनों कास्ट हुए तो फिल्म बनी। आई थिंक डायरेक्टर वांटेड कि एक्चुअली सीनियर सिटीजन्स को कास्ट करे बट रियलिटी ऑफ फिल्म मेकिंग ऑफ फंडिंग इज वेरी डिफरेंट, तो आई थिंक दे वर नॉट गेटिंग फंड्स टू विद अ कास्ट ऑफ सीनियर सिटीजन्स, हेंस दिस वाज डन।
0: कभी ऐसा होता है कि आपने किसी को चूज किया हो, आपको लगा हो कि ये उस किरदार में ज्यादा अच्छा बैठेगा फिट होगा, लेकिन फिर आगे जाके उन्हें ऐसा लगा हो निर्माता निर्देशक को कि हमें ये नहीं चाहिए?
1: एक बार हुआ था एक फिल्म में, मैं फिल्म नहीं बोलूंगा बट बताऊंगा नहीं कौन सी फिल्म है
0: जी।
1: मैं अच्छा दोस्त है वो, बट उसको मैंने प्ले में देखा था और एक रिहर्सल में देखा था और उसका ऑडिशन इतना इनक्रेडिबल था कि मैंने अनुराग को दिखाया और अनुराग बोला हाँ करते हैं इसको कास्ट, लेकिन उसने कभी कैमरा पे काम किया नहीं था, सिर्फ थिएटर किया था वो भी कॉलेज में। और जब वो उसका पहला दिन शूट का था, और ये मैं बात कर रहा हूँ 2007-08 की बात कर रहा हूँ, जब बड़े कैमरास होते थे, लाइट्स भी बहुत बड़ी होती थी, अब लाइटें भी छोटी हो गई है कंपेरेटिवली, उतना साइज नहीं होता लाइट्स का, तो अगर आपको HMI लाइट्स लगाओ और 50 लोग आपको देख रहे हैं, वो फ्रीज हो गया था, वो परफॉर्म नहीं कर पाया था पहले दिन। फिर बाद में उसे कॉन्फिडेंस आया, उसको ये किया और वो उसने किया बट नॉट टू हिज एबिलिटी, फिर उसने अपने आप पे काम किया और फिर वो अच्छे काम करने लगा, उसने काफी फिल्में की बाद में, लेकिन ये हुआ था। उसके बाद मेरा लेसन था कि भाई सिर्फ थिएटर में बहुत बढ़िया हो बट लेकिन अगर कैमरा का आइडिया नहीं है
0: जी।
1: तो उसे पहले थोड़ी ट्रेनिंग लगेगी, ऐसे रॉक लो मत या जब तक आपके पास ऑप्शन नहीं है। बट ऐसे भी है जिन्होंने कभी थिएटर नहीं किया और कुछ भी नहीं किया, वो लोग छा गए कैमरा पे,
0: कोई बिना ट्रेनिंग के वो बिना आए।
1: दो बच्चे थे, स्लम के बच्चे थे, उनको अनुराग की एक शॉर्ट फिल्म के लिए कास्ट किया था, सलाम बालक ट्रस्ट जो मीरा नायर ने शुरू किया था, तो वहां के दो बच्चे कास्ट किए थे, उसमें से एक तो इतना नेचुरल था जिसने कुछ नहीं किया पहले भी, तो वो भी हो सकता,
0: तो वो आप कह सकते गॉड गिफ्टेड है।
1: हाँ, वो गिफ्टेड था, वो कॉन्फिडेंट था, नेचुरल था, बढ़िया था वो।
0: तो आप सेट पे भी मौजूद रहते हैं या आपका काम सेट के बाहर का ही रहता है?
1: यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती है, बट जहाँ जब डायरेक्टर्स पसंदीदा डायरेक्टर्स हैं या जब ज्यादा रिलेशन है तो मैं जाता हूँ सेट पे जाता।
0: बट आपका सपना तो सेट में ही रहने का है, हालांकि जैसे आपने बताया।
1: हाँ, मेरा सपना तो डायरेक्ट करना ही है। अब मैं एक नई स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, पहली दो स्क्रिप्ट्स बना नहीं पाया, अब एक नई स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, होपफुली वो बन जाए।
0: तो आप अपनी स्क्रिप्ट पे काम करें तो आप क्या पहले से किसी एक्टर को ऐसा मन में सोच के ही बना रहे हैं या आप उसे बाद
1: पहले,
0: के लिए छोड़?
1: पहले स्क्रिप्ट तो कंप्लीट करूंगा फिर कास्टिंग पे आऊंगा।
0: तो ये राइटिंग वाला पक्ष कब से आपका सामने आया? आपने डायरेक्शन तो आपने कहा।
1: हाँ, वो जब मैंने 5 साल के लिए बीच में कास्टिंग छोड़ दी थी।
0: अच्छा।
1: तो घनचक्कर थी 2013 में मैंने कास्ट की थी, उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट रोक ही दिया था। फिर मैंने एक स्क्रिप्ट पे काम किया जो नहीं बन पाई, फिर मैंने दूसरी स्क्रिप्ट डेवलप की राइटर्स के साथ, फिर वो भी नहीं बन पाई, फिर एक बुरा दौर रहा मेरी लाइफ में, फिर उधर से कैसे तैसे निकल आया मैं और फिर मैंने फिर से कास्टिंग शुरू की। मैंने बोला कि चलो फिर से कास्टिंग शुरू करते हैं, फिल्म कभी ना कभी तो बना लूंगा।
0: तो इस जो ये दौर रहा उसके नाम कोई गीत बताना चाहेंगे आप?
1: जिंदगी कैसी है बहेली।
0: ठीक है, तो सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गाना।
2: जिंदगी कैसी है पहेली हाय।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: तो गौतम जी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए, इतनी सारी बातें आपने हमसे की हैं, आखिर में अगर आप कोई संदेश देना चाहें हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं उनको, कुछ फिल्म इंडस्ट्री में आने चाहते होंगे या कोई कास्टिंग डायरेक्टर बनना चाहते होंगे, तो उनके लिए कोई एक संदेश अगर आप देना चाहें।
2: वही जो मैंने एक्ट्रेस के लिए कहा कि आप ट्रेन करके आइए, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए फिल्मों की किताब, पढ़िए फिल्म मेकिंग की किताब, पढ़िए एक्टिंग की किताब, पढ़िए कास्टिंग डायरेक्टर जो हॉलीवुड के फेमस है उनके बारे में पढ़िए, उनके प्रोसेस, आज के टाइम में इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, तो जितना आप अपने आप को एजुकेट करके आएंगे उतना बेटर होगा आपको जब आप बॉम्बे आए। बट हर एक जो भी इंसान है जो फिल्म इंडस्ट्री में जुड़ना चाहता है उसको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा वो वाली फील्ड में। अगर आप एडिटर बनना चाहते तो यूट्यूब पे सीखिए कोर्स, खुद प्रैक्टिस करिए, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, FTI प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, कुछ भी करिए, ट्रेन करके आइए। दैट्स माय बिगेस्ट एडवाइस।
1: बस बिल्कुल, मतलब तैयार होके ही आइए आप।
2: हाँ, अनप्रिपेयर्ड मत आइए, फिर आपको एक्सप्लॉइट किया जाएगा।
1: गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो कास्टिंग से रिलेटेड बातें थी जो हमें पता ही नहीं थी कि किस तरह से चुना जाता है एक किरदार को, बहुत ही अच्छी तरह से आपने विस्तार में हमें बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और आपने हमसे बातचीत की।
2: जी, बहुत मजा आया आपके साथ बात करने का, थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए।
1: धन्यवाद।
3: बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे।

कास्टिंग डायरेक्टर गौतम कृष्ण चंदानी से नेहा शर्मा की बातचीत, संपादन सहयोग प्रभा भटनागर का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: पर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
4: हाँ जी।
3: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
4: हाँ जी, हाँ।
3: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
4: नहीं नहीं, अभी नहीं।
3: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
4: ना, बोलो, बोलो।
3: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
5: कुछ लिखा,
3: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। जैसा कि आप जानते हैं कि विविध भारती हर महीने अपने स्टूडियोज में एक विशेष आयोजन करता है जिसका नाम है सृजन भारती। सृजन भारती के अंतर्गत कलाओं की बातें की जाती हैं, संस्कृति की बातें की जाती हैं, और चूंकि सितंबर के महीने में हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है, इसलिए विविध भारती ने एक विशेष आयोजन किया सृजन भारती के तहत, और कुछ कवियों को आमंत्रित किया गया और एक कवि गोष्ठी हुई जिसमें कुछ श्रोता और बहुत सारे कवि भी शामिल थे, और शामिल थे विविध भारती परिवार के सदस्य। आपको बता दें कि विविध भारती के स्टूडियो में आयोजित इस काव्य तरंग में शामिल कवि सुभाष कावरा, देवमणि पांडे, आस्करण अटल और दमयंती दीपा, और इस कवि गोष्ठी का संचालन किया रेडियो सखी ममता सिंह ने। तो चलिए इसके संपादित अंश आपको सुनवाते हैं आज के विविधा कार्यक्रम में।
1: आप सभी को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। आज के इस सृजन भारती के आयोजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी जो गणमान्य कवि पधारे हैं आपका स्वागत, और जो प्रोफेसर रविंद्र जी आए हैं मुख्य अतिथि के रूप में आपका स्वागत, और सभी जो दर्शक यहाँ पर मौजूद हैं आप सभी का स्वागत। अब कार्यक्रम का आरंभ हम कर रहे हैं। दरअसल आज एक कवि सम्मेलन का आयोजन है इस सृजन भारती के इस आयोजन में। शब्द जब भावों से मिलते हैं तो कविता जन्म लेती है, और जब कविता स्वर पाती है तो वो सीधे दिल में उतर जाती है। कविता महज शब्दों की सजावट नहीं, ये मन के उस कोने की आवाज है जहां भाव चुपचाप चलते रहते हैं। कभी ये प्रेम बनकर मुस्कुराती है, कभी समय के सवाल से

0: रूबरू कराती है और कभी जीवन की छोटी सी बात में कोई बड़ी सच्चाई कह जाती है। आज की सृजन भारती कुछ ऐसी ही शब्दों, संवेदनाओं और एहसासात के नाम है, जहां शेरो शायरी है, गीत है, गजल है, व्यंग्य, हंसी की फुहार पड़ेगी और भी बहुत कुछ। कहीं कहीं दिल को छू जाने वाली ये खामोशी भी होगी जो सुंदर कविता सुनने के बाद देर तक हमारे भीतर, हमारे दिल में बसी रहती है, उतरती है। दरअसल ये जो कवि हैं, शब्दों से दुनिया रचते हैं और अपनी कविता से हमारे मन में जगह बनाते हैं। तो हम अब शुरुआत करते हैं उन कवित्री से जो गीत भी लिखती हैं, कविताएं भी लिखती हैं, डॉक्टर दमयंती शर्मा। एक प्रतिष्ठित कवित्री के रूप में जानी जाती हैं, एक लेखिका हैं, शिक्षिका हैं और अनुवादक भी हैं। उनकी लेखनी कविता से लेकर बाल साहित्य, शोध और राजभाषा तक विविध क्षेत्रों में अपनी पहचान बना चुकी है। भीड़ तो जिंदा है प्रसिद्ध और चर्चित काव्य संग्रह है और इसके अलावा बहुत सारी पुस्तकें इनकी प्रकाशित हैं और कुमाऊनी भाषा और लोक संस्कृति के संरक्षण में भी उनका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। साहित्य और शिक्षण के क्षेत्र में उन्हें बहुत सारे प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। इसके अलावा फिल्म खानदानी शफाखाना और फिसड्डी वेब सीरीज सहित बहुत सारे रचनात्मक परियोजनाओं के लिए भी उन्होंने गीत और गीतांश लिखे हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित अनेक मंचों पर अपनी रचनाओं का काव्य पाठ ये कर चुकी हैं। डॉक्टर दमयंती दीपा हिंदी लोक भाषा की सेवा में निरंतर सक्रिय रहती हैं। तो आइए डॉक्टर दमयंती जी, आपका हम स्वागत कर रहे हैं, आइए मंच संभालिए।
1: सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी विविध भारती मुंबई का और विशेष रूप से ममता सिंह जी का, जिन्होंने आज इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत बहुत ही शानदार आयोजन है उसमें मुझे आमंत्रित किया है। और मैं मंच में सभी को प्रणाम करते हुए, यहाँ मुंबई जैसे महानगर में और वो भी विविध भारती मुंबई के प्रांगण में, परिसर में इतना शानदार आयोजन करना, मुबारकबाद मैं इसके लिए इन सबको देती हूँ। क्योंकि हिंदी जो है वो केवल भाषा नहीं है, वो संस्कृति है, वो हमारा गौरव है, सम्मान है। और आप सभी जानते हैं कि संपर्क भाषा के रूप में वो प्रेम का एक सेतु है जो कि हम सब की भावनाओं को, हमारे शब्दों को एक साथ बांधता है और पूरे भारत को एक साथ जोड़ता है वह सेतु। तो हिंदी को हम सब अपने व्यवहार में लाएं और जो कि जैसा मैं देख रही हूं आज उसी उपलक्ष में यह आयोजन है, हिंदी को समर्पित है। तो मैं आप सभी को भी मुबारकबाद देती हूं हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़े की। और दो माहिया मैं समर्पित करना चाहूंगी, सबसे पहले माँ हिंदी को। माँ

तो ये तो थी हिंदी भाषा को समर्पित दो माइयाँ, और मैं एक दो मुक्तक आपके समक्ष रखती हूँ, उसके बाद मैं अपने गीत पर आऊँगी।

0: जाऊं। और एक
1: वाह
0: मुक्तक, बहुत धन्यवाद, एक मुक्तक समर्पित करती हूँ इस देश की मिट्टी के नाम। जो हमारे जवान हैं, हमारे सैनिक हैं, हमारे भारतवासी हैं, क्या कहते हैं कि कश्मीर

हम हैं, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आगे यदि हम आंतरिक भेदभाव मिटाएंगे और आगे बढ़ेंगे शांति के साथ, तो उस पर भी एक संदेश मुक्तक के द्वारा मैं देना चाहूंगी कि सब

बचा लो इस वतन के वास्ते, रंग सुर्ख तुम बचा लो इस वतन के वास्ते। तो एक ये थे कुछ माही और मुक्तक, एक गीत आपके सबके समक्ष रखती हूँ, सुनिएगा। तुम्हारी चाहों से हमारे मन में हो,

0: मैं हूँ। धन्यवाद, आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना, बहुत धन्यवाद।
1: अब हम आमंत्रित कर रहे हैं, जरा उनका स्वागत करते हैं कुछ उनकी ही पंक्तियों से। महक कलियों के फूलों की हंसी अच्छी नहीं लगती, महक कलियों की फूलों की हंसी अच्छी नहीं लगती, तुम्हारे बिन हमें ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती। भले मिल जाए दौलत शोहरत हमको दुनिया में, भले मिल जाए दौलत और शोहरत हमको दुनिया में, मगर दिल को मोहब्बत की कमी अच्छी नहीं लगती। जरा सी ठेस लगने से छलक पड़ते हैं क्यों आंसू, हमेशा आंख में इतनी नमी अच्छी नहीं लगती। एक कतरे को दरिया समझा मैं भी कैसा पागल हूँ, एक कतरे को दरिया समझा मैं भी कैसा पागल हूँ, हर सपने को सच्चा समझा मैं भी कैसा पागल हूँ। ये जो पंक्तियां हैं जाने माने कवि, मंच संचालक और राइटर देवमणि पांडे जी की। देवमणि पांडे जी का हम स्वागत कर रहे हैं। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें, फिल्म पिंजर, हासिल और कहाँ हो तुम के अलावा कई सीरियल में इन्होंने गीत लिखे। फिल्म पिंजर के गीत चरखा चलाती माँ, जो हम विविध भारती के अनेक प्रोग्राम में बजाते हैं, उसके गीतकार ये हैं। फिल्म पिंजर में तकरीबन 6 गाने या 5 गाने गुलजार साहब ने लिखे हैं, एक गाना इनका है चरखा चलाती माँ, जब आप सुनेंगे तो देवमणि जी को याद करेंगे। इसके अलावा कुछ संग्रह है, दिल की बातें, खुशबू की लकीरें, अपना तो मिले कोई, जो इनकी कामयाबी में शामिल है। उन्होंने सिने गीतकार जैसी पुस्तकें भी लिखी हैं जो भारतीय फिल्म जगत के गीतकारों पर आधारित है। ये भी बता दें कि बड़े अच्छे मंच संचालक भी हैं और बड़े अच्छे कवि और गजलकार। तो इनके लिए जोरदार तालियां और स्वागत। आइए देवमणि जी,
2: आप लोग अनुमति दें तो मैं शुरू करूं। अनुमति देने का मतलब है ममता जी ने गीत के बारे में बताया, 2003 में इस गीत को बेस्ट लिरिक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। तो गुलजार साहब के सामने अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है। तो गीत था कि चरखा चलाती माँ, धागा बनाती माँ, बुनती है सपनों की खेसरी, समझ न पाऊं मैं किसको बताऊं मैं, मैया छुड़ाती क्यों देसरी, बेटों को देती है महल अटरिया, बेटी को देती परदेसरी।

जब हम यहाँ खड़े होते हैं तो सोचना पड़ता है कि शुरुआत कहाँ से करें। तो शुरुआत वहाँ से करते हैं जिसने मुझे शायर बनाया। दो मुक्तक, मुक्तक काव्य की वो बुधा है जिसको सुनाने के बाद कवि और सुनने के बाद श्रोता मुक्त हो जाते हैं। अंदाज भी है दिलकश, जलवे जमाल के हैं। अंदाज भी है दिलकश,

ने देखिए क्या क्या बना दिया। पूछा किसी ने चांद वो दिखता है किस तरह, कागज पे हमने आपका चेहरा बना दिया। देखिए हमारे यहाँ जो प्रेम की परंपरा है, या कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में राधा और कृष्ण का जो प्रेम है वो सबसे उदात्त माना जाता है और सदियों से आप सब जानते हैं। तो चाहे राधे श्याम बोलिए चाहे राधे कृष्ण बोलिए, राधा जी का नाम पहले आता है। क्यों आता है? चार लाइनों में आप समझेंगे कि किशन की बांसुरी पर रीझ कर ये राधिका बोली, हमारे प्रेम का भी क्या कोई परिणाम आएगा। किशन की बांसुरी पे रीझ कर ये राधिका बोली, हमारे प्रेम का भी क्या कोई परिणाम आएगा। तो हंसकर कह दिया कान्हा ने, इस जग में हमेशा अब हमारे नाम से पहले तुम्हारा नाम आएगा। डगर पे प्रेम की चलना तो मुश्किल काम होता है, किसी से डोर जुड़ जाए तो दिल बदनाम होता है। अगर है प्यार सच्चा तो सराहेगी उसे दुनिया, जिसे राधा कोई चाहे वही घनश्याम होता है। तो घनश्याम यानी श्याम घन, काला मेघ। तो काले मेघों के बीच से यानी काले बादलों के बीच से जब कोहरा चांद दिखाई पड़ता है तो कैसा लगता है। तो एक दिन मैंने देखा और फिर चार लाइनें इस पे लिखी कि जुड़ गया है मन का धागा जब से नटखट श्याम से, दिल को मेरे मिल गए हैं कुछ नए आयाम से, और बादलों की ओट से जब चांद का चेहरा दिखा यूं लगा जैसे मिली हो राधिका घनश्याम से। बादलों की ओट से जब चांद का चेहरा दिखा यूं लगा जैसे मिली हो राधिका घनश्याम से। इतने अच्छे मुक्तक पे ताली बजनी चाहिए। एक गजल के चंद शेर आपके सामने, हुए जब मुतमईन वो भी मोहब्बत की कहानी से, हुए जब मुतमईन वो भी मोहब्बत की कहानी से, गुलाबों की महक आने लगी है रात रानी से। हुए जब मुतमईन वो भी मोहब्बत की कहानी से, गुलाबों की महक आने लगी है रात रानी से। किशन की जिंदगी में राधिका है रुक्मणी भी है, किशन की जिंदगी में राधिका है रुक्मणी भी है, मिली है प्रेम को एक दिव्यता मीरा दीवानी से। मेरी धड़कन में हर एक पल मधुर संगीत बसता है, मेरी धड़कन में हर एक पल मधुर संगीत बसता है, मिला है जब से एक पैगाम लहरों की रवानी से। मेरी धड़कन में हर एक पल मधुर संगीत बसता है, मिला है जब से एक पैगाम लहरों की रवानी से। कभी आंसू कभी सपने कभी कांटे कभी खुशबू, मिला है देखिए क्या क्या बशर को जिंदगानी से। और मुंबई महानगर के निवासियों को ये शेर मैं भेंट कर रहा हूँ कि शहर की इस भीड़ से घबरा के इस दिल ने कहा, अब मुझे एक झोपड़ी गंगा किनारे चाहिए, ये बताओ क्या तुम्हें भी चांद तारे चाहिए, या कि दिल के वास्ते दिलकश नजारे चाहिए। एक सीधी सादी गजल है कि हसीन ख्वाब की चाहत जरूर करते हैं, हसीन ख्वाब की चाहत जरूर करते हैं, हम ऐसे लोग मोहब्बत जरूर करते हैं। हसीन ख्वाब की चाहत जरूर करते हैं, हम ऐसे लोग मोहब्बत जरूर करते हैं, किसी के साथ कभी इश्क वो नहीं करते, किसी के साथ कभी इश्क वो नहीं करते, किसी के दिल पे हुकूमत जरूर करते हैं, किसी भी हाल में कुछ लोग खुश नहीं रहते, किसी भी हाल में कुछ लोग खुश नहीं रहते, वो हर किसी की शिकायत जरूर करते हैं, जिन्हें पता है बदी क्या अजाब ढाती है वो नेकियों की हिफाजत जरूर करते हैं। एक इंटरनेशनल शेर है, जिन्हें है फिक्र की दुनिया में अमन हो कायम, वो कुछ नहीं तो इबादत जरूर करते हैं। एक शब्द है निजामत यानी संचालन, किसी का एक भी मिसरा जबानी याद नहीं, पर ऐसे लोग निजामत जरूर करते हैं, हसीन ख्वाब की चाहत जरूर करते हैं, हम ऐसे लोग मोहब्बत जरूर करते हैं। आप सब जानते हैं कि मैं महिलाओं का कितना सम्मान करता हूं। तो इस कविता का शीर्षक यह है गृह स्वामिनी, कमर में खोंस कर पल्लू किचन में व्यस्त हो, लेकिन मधुर आवाज में नगमा को ही तुम गुनगुनाती हो। कमर में खोंस कर पल्लू किचन में व्यस्त हो, लेकिन मधुर आवाज में नगमा को ही तुम गुनगुनाती हो। छलक आए हैं माथे पर पसीने के कई मोती,
تم اس سے بے خبر چولہے پہ کوئی

0: डिश पकाती हो, सुबह उठकर थमा देती हो सबको चाय का प्याला, सुबह उठकर थमा देती हो सबको चाय का प्याला, सुहाना लगता है हर पल तुम्हारा घर में यूं होना, सजा कर थाल पूजा का दिखो तुम लक्ष्मी जैसी, जला कर दीप कर देती हो रोशन घर का हर कोना, सुबह से शाम तक घर को तुम ही गुलजार करती हो, बड़ों का मान रखती हो सभी का करती हो तुम आदर, तुम अपने पद से बच्चों से बहुत ही प्यार करती हो। देखिए आखिरी पंक्तियां, किचन में रोटी कैसे जलती है, कोई तारीफ करता है तो झट से फूल जाती हो, कोई तारीफ करता है तो झट से फूल जाती हो, तवे पे रख के तुम रोटी पलटना भूल जाती हो, मोहब्बत से लगन से आशियां तुमने सजाया है, यही सच है हमारे घर को घर तुमने बनाया है, यही सच है, यही सच है हमारे घर को घर तुमने बनाया है। हम लोग जो कॉलेज लाइफ में थे तब से लिख रहे हैं, और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं, सिर्फ 35 साल पहले की बात है, है ना। एक कतरे को दरिया समझा मैं भी कैसा पागल हूँ, हर सपने को सच्चा समझा मैं भी कैसा पागल हूँ, और पाल पोस कर बड़ा किया था फिर भी एक दिन बिछड़ गए, पाल पोस कर बड़ा किया था फिर भी एक दिन बिछड़ गए, ख्वाबों को एक बच्चा समझा मैं भी कैसा पागल हूँ, और कांटे से खुद मेरी शोहरत मेरे दिल में चुभती है, कांटे से खुद मेरी शोहरत मेरे दिल में चुभती है, फन को खेल तमाशा समझा मैं भी कैसा पागल हूँ, तन पर तो उजले कपड़े थे पर जो मन के काले थे, उन लोगों को अच्छा समझा मैं भी कैसा पागल हूँ। बिछड़ने पर दिल रेगिस्तान की तरह जलता है, और जब मिलन होता है तो दिल किसी हिल स्टेशन की तरह ठंडा हो जाता है। शायर इस कंटेंट को कैसे ले आता है गजल में, तो आप ध्यान दीजिए तो आपको अच्छा लगेगा। दिलों की राह में कोई नया मजमून आ जाए, मैं जैसलमेर से निकलूं और देहरादून आ जाए। समझ में आ गया ना कि एक रेगिस्तान है एक हिल स्टेशन है। दिलों की राह में ऐसा कोई मजमून आ जाए, मैं जैसलमेर से निकलूं और देहरादून आ जाए। दिल्ली के आखिरी बादशाह को सलाम करते हुए शेर पढ़ रहा हूँ। सभी को चाहिए दिल्ली का तख्तो ताज सदियों से, मगर डर है कि राहों में न फिर रंगून आ जाए। ऐतिहासिक शेर है ना। तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, आखिरी बादशाह को रंगून भेज दिया गया था अंग्रेजों की तरफ से, कि सभी को चाहिए दिल्ली का तख्तो ताज सदियों से, मगर डर है कि राहों में न फिर रंगून आ जाए। पिया था किस लिए सुकरात ने वो जहर का प्याला, पिया था किस लिए सुकरात ने वो जहर का प्याला, बताने के लिए दुनिया में अफलातून आ जाए। मोहब्बत में कोई बंदिश नहीं है बेवफाई पर, यह लाजिम है कि अब इस पर नया कानून आ जाए। दिलों की राह में कोई नया मजमून आ जाए, मैं जैसलमेर से निकलूं तो देहरादून आ जाए। देखिए गजल में जो है ना कभी कभी प्रयोग करने पड़ते हैं। तो आप किसी जो है ना बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को देखिए, उसमें बीए एमए वाले भी मिल जाते हैं। तो ऐसे ही पढ़े लिखे लोगों को देख करके ये ख्याल आया एक गजल का, कि पढ़ लिख कर क्या करेंगे आखिर राम श्याम रहमान वगैरह वगैरह पे ध्यान दीजिए। पढ़ लिख कर क्या करेंगे आखिर राम श्याम रहमान वगैरह, ये भी एक दिन बन जाएंगे चपरासी दरबान वगैरह। पढ़ लिख कर क्या करेंगे आखिर राम श्याम रहमान वगैरह, ये भी एक दिन बन जाएंगे चपरासी दरबान वगैरह। रोजी रोटी के चक्कर में हमने खुद को गंवा दिया है, कहाँ गया अपना वो तेवर खुददारी पहचान वगैरह। दूर दूर तक आदर्शों से रिश्ता नहीं सियासत का, जब इनमें कहाँ नजर आएंगे सच्चाई ईमान वगैरह। दौलत शोहरत और प्रतिष्ठा सब कुछ हासिल है, फिर भी किसे पता क्या ढूंढ रहे हैं ये अमीर धनवान वगैरह। ये बहुत बढ़िया शेर है, आपको अच्छा लगेगा। कि फिल्में अगर नहीं चलती तो सोचो इनका क्या होता, फिल्में अगर नहीं चलती तो सोचो इनका क्या होता, काट रहे हैं हर दिन चांदी अक्षय और सलमान वगैरह, कम से कम इतवार के दिन तो अपने घर पे रहा करो, बिना बताए आ जाते हैं यार दोस्त मेहमान वगैरह, पढ़ लिख कर क्या करेंगे आखिर, राम श्याम रहमान वगैरह, ये भी एक दिन बन जाएंगे चपरासी दरबान वगैरह। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जो बड़ी संजीदगी से बोलते हैं और बहुत खूबसूरत बोलते हैं, हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं माइक पर। उनकी बातें, उनके शब्द आपके हृदय में हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। जीवन की छोटी छोटी घटनाओं, छोटी छोटी बातों को अपनी कविता में ढाल लेते हैं, अपने गद्य में ढाल लेते हैं। और आज की जो भागदौड़ की जिंदगी है, स्ट्रेस दबाव से लोग परेशान हैं, ऐसे में आपको मुस्कुराहट आपके चेहरे पर ला देते हैं, आपको हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं, ये बहुत बड़ी दौलत है उनके पास। प्रसिद्ध हास्य कवि, लोकप्रिय मंच संचालक, धारावाहिक लेखक और प्रतिष्ठित व्यंग्यकार सुभाष काबरा, इसी बात से उनका परिचय मिल जाता है कि उन्होंने मंचों पर अपने सतत 50 वर्षों और 4000 आयोजनों की पारी पूरी कर ली है और अभी भी किसी नौजवान से ज्यादा वो सक्रिय हैं। 6 किताबों के लेखक हैं और बहुत सारे प्रतिष्ठित पुरस्कारों के विजेता हैं। सुभाष जी आज भी आयोजनों में आयोजकों की पहली पसंद होते हैं, फिर चाहे आयोजन साहित्यिक हो या शुद्ध मनोरंजन वाले, लेकिन वो पहली पसंद होते हैं। सुभाष काबरा जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं बड़े सम्मान के साथ। वो गद्य भी लिखते हैं, पद्य भी लिखते हैं, हंसाते भी हैं और संजीदगी से बहुत प्रहार भी करते हैं समाज पर, व्यवस्था पर, कई बातों पर, जिंदगी की छोटी छोटी घटनाओं पर। आइए सुभाष जी, तो इनके लिए जोरदार तालियां और स्वागत।
2: जो प्रणाम करने लायक है उन्हें प्रणाम करता हूँ और जो मुझसे छोटे हैं उन्होंने मुझे प्रणाम कर लिया है, मैं मान के चलता हूँ। ममता सिंह बहुत अच्छा बोलती है, उन्होंने बहुत अच्छा परिचय मेरा दिया, लेकिन मैं अपने परिचय में 4 पंक्तियां अक्सर कहा करता हूँ। हम चहकती महफिलों के दूत हैं, हमसे मनहूसी न झेली जाएगी और बांटती है जो उदासी और तनाव, हमसे वो पारी न खेली जाएगी, हमसे वो पारी। इसका एक मतलब ये भी है कि बजाते रहिएगा, मैं शायर साहब की तरह बार बार फरमाइश नहीं करूंगा कि बजाओ, आपको खुद ही समझना है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो नई पीढ़ी है इसे कुछ पंक्तियां देना चाहूंगा कि हमने ये जाना है परचे जांच जांच के, हमने ये जाना है परचे जांच जांच के, अनपढ़ होते जाते पोथी बांच बांच के, अनपढ़ होते जाते पोथी बांच बांच के, हिंदी की खाने वाले विदेशी गाते हैं, हिंदी की खाने वाले विदेशी गाते हैं, बेटे ये नादान माँ को भूल जाते हैं, कंप्यूटर का युग है आगे बढ़ते जाइए, लेकिन हमको मेमोरी से मत मिटाइए, पिज्जा खाने वाली पीढ़ी पैदा होती है, लेकिन मक्के की रोटी मक्के की रोटी है। कुदरत के सब कानूनों को शैदा करना है, लेखक का लिखना तो बच्चा पैदा करना है, जिस बचपन की खातिर मैया पल पल रोती है, क्योंकि मक्के की रोटी है। ये तो नई पीढ़ी की बात थी।
3: आपने व्यंग लेख का जिक्र किया था, तो मैं आपको एक छोटा सा व्यंग लेख सुनाता हूँ जिसका शीर्षक है एक बंगला मिले न्यारा। वो मुझे एक साहित्यिक कार्यक्रम में मिली थी, प्रेमचंद के कार्यक्रम में। मैंने अपना परिचय दिया, उनका नाम पूछा तो बोली आधुनिका। उन्होंने मेरे हाथ से मेरा मोबाइल लेकर उसमें अपना नंबर फीड कर दिया और मुस्कुराकर चली गई। पर एक दिन दोबारा वो एक सिग्नल पे मिल गई। गाड़ी इतनी बड़ी थी कि मुझे किश्तों में देखनी पड़ी। वो बोली, हे घर पर आओ ना, यही फर्स्ट राइट में है बंगलो नंबर 19। वो चली गई। बंगले मुझे बचपन से ही आकर्षित करते थे, कितनी जगह होती है उनमें। सोचा आज ये अंतिम इच्छा पूरी कर लूं, बंगला देख ही लूं। सो मैं बंगले की ओर बढ़ गया। पहुंचा तो लगा शायद किसी गलत जगह पर आ गया हूं। वो तो किसी कार का शोरूम लग रहा था। झोले से एक किताब निकाली और वॉचमैन को ये कहकर कि मुझे आधुनिका जी से मिलना है भीतर चला गया। डोरबेल बजाई तो एक काम वाली आई। उसने पहले तो मुझे कुरियर वाला समझा, लेकिन मुझे बाद में हॉल में बिठाकर बेबी को बुलाने चली गई। मैं हॉल की भव्यता देखता रहा। थोड़ी देर बाद वो बाई आई तो उसके साथ 2 बच्चे भी थे। बोले, इनको संभालो, बेबी अभी आता है। बच्चे मुझे संभला कर वो बाहर चली गई, लेकिन बच्चे बड़े शरारती थे, दोनों मुझसे खेलने लगे। एक ने चश्मा खींचा तो दूसरे ने मोबाइल। मेरा जी जानता था कि वो 10 मिनट मैंने कैसे निकाले। बच्चे बाकायदा मेरी छाती पर सवार थे। तभी एक नौकर आकर उन दोनों को ले गया। मैंने चैन की सांस ली ही थी कि तभी शेर से कुछ छोटा शेरू नाम का एक कुत्ता आ गया। वो मुझ पर झपटना चाह ही रहा था कि आधुनिका की आवाज आई, चलो अपने कमरे में जाओ। शेरू मुझे घूरता हुआ चला गया।

0: आधुनिका बोली, ये आपको जानता नहीं है ना, इसलिए जान पहचान होगी तो अच्छे से पेश आएगा। तभी कोई आया। आधुनिका बोली, माय हनी, मैं समझा मिस्टर आधुनिक होंगे। वो आए और आधुनिका से गले मिले, मुझे पूरी तरह नजरअंदाज करके भीतर चले गए। बोली, हनी के लिए भी सॉरी, ये थोड़े रिजर्व हैं, आप पर ध्यान नहीं दिया। मैं कहा, कोई बात नहीं, मुझे आदत है इस तरह इग्नोर किए जाने की। आपने मुझे बुलाया, कुछ काम था क्या? अब वो मुद्दे की बात पर आई कि प्रेमचंद की पोएट्री वाला प्रोग्राम सुनकर मैं इम्प्रेस हूँ। हमारी सोसाइटी में मिसेस चड्डा ने अपना गजल का बुक छपवाया है, मिसेस शाह ने भी कुछ रिलीजन पे छपवाया है, मुझे भी कुछ छपवाना है, इसमें आप मेरी हेल्प करो। मैंने कहा, देखिए, मैं गजल और धर्म के बारे में कुछ नहीं जानता। तो बोली, जिस पे जानते हो उसी पे लिखेंगे, कौन सी बड़ी बात है, कोशिश करूंगा कि आपके काम आ सकूं। बोले, हाँ, इंसान को कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तभी एक रौबदार बुजुर्ग टी शर्ट में आए, ये कौन है बीबी? आधुनिका ने बताया कि मैं राइटर हूँ, तो वो खुश हुए। बोले, वेरी गुड, तो तुम्हें राइटर मिल ही गया। बुक जैसी भी हो, कवर पेज बहुत बढ़िया होना चाहिए, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। वे मुझे धमकी देकर चले गए, मैं जवाब भी नहीं दे सका। आधुनिका बोली, मेरे पापा हैं, बहुत ध्यान रखते हैं मेरा। मैंने कहा, वो तो दिख ही रहा है, आपकी किताब की बहुत चिंता है इन्हें, इनकी बात भी रखने की कोशिश करूंगा। वो बोली, बिल्कुल, इंसान को कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। वैसे मैंने अंग्रेजी में कुछ लिखा है, ढूंढ कर आपको दे दूंगी, आप उसकी एक बुक बना सकते हो। मैंने फिर कहा, मैं कोशिश करूंगा। उसने कहा, मैं दुआ करूंगी कि आप अपनी कोशिश में कामयाब हो और काम मेरा हो जाए। वैसे इंसान को कोशिश कभी छोड़नी नहीं चाहिए। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालने की कोशिश की और बाहर आया। दिमाग इतना घूम रहा था कि रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा था। मैंने वॉचमैन से पूछा, भाई, ये स्टेशन जाने वाली बस कहाँ मिलेगी? वो बोला, मैं यहीं रहता हूँ साहब, मुझे पता नहीं, आप चौक पर जाकर किसी से पूछ लो, कोशिश करोगे तो कोई ना कोई बता ही देगा। इंसान को कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ये भी आधुनिका जी से प्रभावित ही था। मैंने चौक ढूंढने की कोशिश की, फिर वहां से स्टेशन की बस। एक बात बताऊं आपसे, आप में से यदि किसी की किसी बंगले में जाने की इच्छा हो, तो 19 नंबर वाला वो बंगला छोड़कर किसी भी बंगले में जाने की कोशिश जरूर करना। इंसान को कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ये जरूरी तो नहीं कि आपको भी वही बाई, वही बच्चे, वही शेरू, वही मिस्टर आधुनिक और वही पापा जी मिले, और आधुनिका भी वैसे ही मिले जैसी मुझे मिली थी। वैसे भी आधुनिका जी का कहना है कि इंसान को कोशिश करनी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो आप भी चाहें तो मेरी तरह किसी बंगले में घुसने की अपनी इच्छा भी पूरी कर सकते हैं और कोशिश भी। मैंने तो कसम खा ली साहब कि अब वहां कभी नहीं जाऊंगा।
1: दोस्तों, हम हास्य से व्यंग, जैसा कि बताया ममता जी ने, कि व्यंग लेखन के लिए भी जाना जाता हूँ। शरद जोशी जी मेरे आदर्श भी रहे और गुरु भी रहे। अब लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछते हैं कि अंतर क्या है, हास्य क्या है, व्यंग क्या है। मैं आपको बहुत सरल सा गणित बताता हूँ कि हास्य वो है कि आपने एक बटन दबाया और आपके घर में बल्ब तुरंत जल गया, हल्का पीला सा लाइट, पीली सी रोशनी के साथ। ये होता है हास्य। अब आपने बटन दबाया दूसरा, कुछ सेकंड लगे, 15 20 25, और ट्यूबलाइट जली, लेकिन उसकी रोशनी ज्यादा साफ थी। वो कहीं ना कहीं देर तक और दूर तक असर करती है। तो हास्य और व्यंग में यही फर्क है। ये जो हम कहते हैं कि इधर स्तर गिर गया, मानवता ऐसी हो रही है, लोग वैसे हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है स्वार्थ। परमार्थ से स्वार्थ की यात्रा जब आती है तो उसे कलयुग का नाम दिया जाता है। मैं एक छोटी सी कविता के माध्यम से एक व्यंग करना चाहता हूँ। शीर्षक है दूरदर्शी। दूरदर्शी जो आने वाले समय को, आगे की बातों को भांप लेता है। यदि मैं चाहता तो अपनी बेहिसाब दौलत का एक छोटा सा हिस्सा जाया करता और तुम्हें तुम्हारी जानलेवा बीमारी से बचा लेता। ऐसा होता है कहीं कहीं, लेकिन नहीं। ये रकम मैंने तुम्हारे नाम से अलग रख छोड़ी है, ये रकम मैंने तुम्हारे नाम से अलग रख छोड़ी है। अलावा इसके, तुम्हारा एक संगमरमरी बुत, शहर का सबसे व्यस्त चौराहा और तुम्हारे बच्चों का भविष्य खरीद लिया है। अलावा इसके, तुम्हारा एक संगमरमरी बुत, शहर का सबसे व्यस्त चौराहा और तुम्हारे बच्चों का भविष्य खरीद लिया है। आजकल तुम्हारी बीमारी से प्यार कर रहा हूँ, तुम्हारी मौत का इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारी मौत का इंतजार। कवि हूँ तो कवियों पर ही एक रचना। शीर्षक है कवि का इलाज, एक छोटी सी रचना। लोग अक्सर अपने आप पर नहीं लिखते, लेकिन हम कवि लोग हैं, आपस में तो जानते हैं कि हम क्या हैं, बाहर से जितनी भी पब्लिसिटी करवा लें। एक बार सत्यवादी राजा हरिश्चंद बीमार पड़े। उनकी तबीयत देखने के लिए बुलाए गए डॉक्टर बड़े बड़े, और देखकर सभी ने एक स्वर में ये कहा कि इतने वर्षों तक हम सबको बड़ा धोखा रहा, लेकिन अब हमको तलवार की धार पे चलना होगा। जिंदा रखना है तो हरिश्चंद का दिल बदलना होगा। अतिरिक्त दिल की तलाश में फौरन एक आदमी दौड़ाया गया और संयोग से पड़ोस के मोहल्ले में ही एक कवि का दिल स्पेयर में पाया गया।

0: जल्दबाजी में वही हरिश्चंद को लगाया गया। ऑपरेशन के बाद जैसे ही हरिश्चंद को होश आया, वो बेड पर खड़ा हो गया और ग्लूकोज की बोतल को माइक समझकर उसके मुंह में बोला ग्लूकोज की बोतल को माइक समझकर उसके मुंह में बोला डॉक्टर भाइयों और नर्स बहनों, टेरिकॉट के वस्त्र त्यागो, खादी के कपड़े पहनो, मैं अब ठीक हूँ इसलिए अपने घर जा रहा हूँ, फिक्र मत करना, अस्पताल का बिल जल्दी ही आकर चुका रहा हूँ। कवि को हरिश्चंद समझकर अस्पताल के लोग धोखा खा गए। कवि जी सही सलामत अस्पताल से बाहर आ गए। पिछले 6 महीनों से अस्पताल के प्रांगण में अजीब से नजारे नजर आ रहे हैं। कवि जी नियमित रूप से अस्पताल आ रहे हैं और पेमेंट के रूप में अस्पताल के पूरे स्टाफ को रोज अपनी नई नई कविताएं सुना रहे हैं, रोज रोज नई। कवि अंतर मन से बड़ा शुद्ध प्राणी होता है, वो किसी भी विधा में लिखे, चाहे वो शायरी करे, चाहे गीत कहे, गजल कहे, व्यंग कहे, अपनी बात आप तक पहुंचाता है। तो कई बार हमारे इंटरव्यू जो होते हैं उससे बड़े अजीब सवाल हो जाते हैं कि आपको कौन सी चीज़ प्रभावित करती है, आप कैसी दुनिया चाहते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। मेरा एक गीत है जो आपको सुनाता हूँ, शीर्षक है सुंदर चेहरे अच्छे लोग। तुम इसको पागलपन कह लो या कह लो इसे मन का रोग, मुझको आकर्षित करते हैं सुंदर चेहरे अच्छे लोग। जिनकी बोली में मिठास हो और चाल में एक रिदम, जो खुशियों के भी साथी हो और गमों के भी हमदम, ऐसे लोगों से मिलने का बनता रहे सदा संजोग, मुझको आकर्षित करते हैं सुंदर चेहरे अच्छे लोग। अंधभक्त ना जो यंत्रों के और न भागी षड्यंत्रों के, जिनके कानों में संचित हैं बोल अभी तक कुछ मंत्रों के, खुद से पहले अर्पित करते मंदिर में जो पहला भोग, मुझको आकर्षित करते हैं सुंदर चेहरे अच्छे लोग। और अंतिम है, जो न बदलते रंग कभी भी, भेड़ चाल में है भी नहीं भी, मानवता के रिश्तों को जो भूल न पाते कभी कहीं भी, जिनको विचलित कर देते हैं अपनों के साधारण रोग, मुझको आकर्षित करते हैं सुंदर चेहरे अच्छे लोग। तुम इसको पागलपन कह लो या कह लो इसे मन का रोग, मुझको आकर्षित करते हैं सुंदर चेहरे अच्छे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस हौसला अफजाई के लिए, फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: एक ऐसे वरिष्ठ कवि को मैं यहाँ पर माइक पर आमंत्रित कर रही हूँ जो शब्दों के जादूगर तो है ही, साथ साथ फिल्मी दुनिया में भी अपना नाम रोशन किया है। फिल्म विवाह और प्रेम रतन धन पायो के संवाद उन्होंने लिखे हैं और नमूना टेलीफिल्म का निर्देशन किया है और डॉक्यूमेंट्री फिल्म शर्मा गए सिनेमा का भी निर्देशन किया है। और उनके कुछ सीरियल्स हैं मूवर्स एंड शेकर्स, नहले पे दहला, जिसे लिखा है उन्होंने, और उनकी किताबें हैं जिनका नाम हम आपको बता दें, जब कभी आपको मौका लगे तो जरूर पढ़िए, हम क्या समझते नहीं है काव्य संग्रह है, ढाई आखर हास्य के काव्य संग्रह है, और फिल्म पुराण सिनेमा पर हास्य व्यंग्य है, और साहब बाथरूम में ये भी हास्य व्यंग्य है। तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं इसे। और कविता क्या हमारे पूर्वज बंदर थे, और इसके अलावा उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया है, काका हाथरसी हास्य रत्न पुरस्कार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार, और महाराष्ट्र राज्य हिंदी अकादमी द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। और आपने अमेरिका, रूस, हांगकांग, थाईलैंड और भी कई विदेशी यात्रा की है, और जहां पर इन्होंने मंच पर अपनी कविताएं प्रस्तुत की है और लोगों को अपनी कविताओं से मंत्रमुग्ध किया है, वो है आशकरण अटल जी। तो आशकरण अटल जी के लिए जोरदार तालियां आप बजाएं, उनका हम स्वागत करते हैं। आइए आशकरण जी,
2: एक गीत सुनिए हमारे स्वाधीनता सेनानियों पर। इस गीत को शहीदों की आरती मानकर सुनिए। वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग, वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग, जिए तो यूं जिए कि वो कहानियों में ढल गए, मरे तो यूं मरे कि अर्थ मौत का बदल गए, वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग। वो दिन थे गीत गाने के, संवरने और निखरने के, मोहल्ले की किसी कली से पुस्तकें बदलने के, वो इनकलाब की डगर के कैसे राहगीर थे, जो कोई चीज के लिए हुए नहीं अधीर थे, वो फांसियों के तख्त देख पाने को मचल गए, वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग। वो धन्य थे सपूत, उनकी धन्य थी जवानियां, कि कायरों में प्राण फूंक जाएं वो कहानियां, न जाने उनको मां ने घुट्टियों में क्या पिला दिया, कि जब हुए जवान तो जहान को हिला दिया।

0: वो कोख धन्य हो गई, जिस कोख में वो पल गए, वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग। बड़े उदार थे कि शीश काट के भी दे दिया, उपकार हम पे करके अपना नाम भी छुपा लिया। किसी की प्रेयसी सदा बुहारती रही डगर, किसी की माँ दुलार से पुकारती रही मगर, वो मौत की दुल्हन भगा के जिंदगी को छल गए, वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग। बने थे कौन चीज से ए हिंद तेरे लाडले, कि जितनी यातना सही वो उतने ही निखर चले। कि गोलियां जहां चली वहां खड़े मिले सदा, वो आहुति के वक्त पहली पांत में रहे सदा, फिर आरती के वक्त बावरे कहीं निकल गए, वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग। वतन के शहीदों को हमने घर भुला दिया, अभी तो माए ना जनेंगी देश भक्त लाल फिर कभी, तो इनकलाब सीखने लगेगा दुनियादारियां, तो पूछेंगी इतिहास से ये आने वाली पीढ़ियां, चलन कहां बसंती चोलों वाले आज कल गए, वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग। जिए तो यूं जिए कि वो कहानियों में ढल गए, मरे तो यूं मरे कि अर्थ मौत का बदल गए, वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग।
1: क्या बात, क्या बात, अद्भुत अद्भुत, क्या बात।
2: अब कार्यक्रम समापन की ओर है, यूं कहें कि समाप्त हो रहा है, और मुख्य अतिथि प्रोफेसर रविंद्र कात्यायन जी उपस्थित हैं, और हम प्रोफेसर रविंद्र कात्यायन जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें। वो पहले सैनिक रह चुके हैं, उसके बाद प्रोफेसर रहे, कथाकार पटकथा लेखक हैं, वो कथाकार के रूप में पूरे मुंबई में नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी पहचान है, और थोड़ी जानकारी दे दें उनकी कृतियों के बारे में। उनकी कृतियां हैं कोर्ट मार्शल फिर से, प्यार में लड़की, दो कहानी संग्रह है, और एक प्रेम कथा है उनकी जो प्रकाशित होने वाली है जल्द ही, और मीडिया लेखन, फिल्म विमर्श, साहित्य पर 12 पुस्तकों का लेखन उन्होंने किया है, और फीचर फिल्म भी उन्होंने बनाई है, उसकी पटकथाएं भी लिखी है इन्होंने, 5 धारावाहिक लेखन इन्होंने किया है, कई डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का निर्माण किया है, महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया है, SNDT महिला विश्वविद्यालय का महर्षि कर्वे उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार से उन्हें नवाजा जा चुका है, और अखिल भारतीय कथाक्रम कहानी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। बहुत बहुत बधाई आपको। और अभी वो हिंदी विभाग मणिबेन नानावटी महिला महाविद्यालय में अध्यक्ष हैं, तो आपका हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। प्रोफेसर रविंद्र जी, आइए अपने उद्गार व्यक्त कीजिए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, और सबसे पहले विविध भारती का मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे यहाँ पर बुलाया। सृजन भारती द्वारा आयोजित आज के इस शानदार कवि सम्मेलन में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। सभी कवि जिन्होंने कविताएं सुनाई, बहुत ही अच्छी कविताएं थी। मैं पहले भारतीय वायुसेना में था, 12 साल 2 महीने 20 दिन, और उसके बाद मैं गोवा विश्वविद्यालय में 5 साल रहा, फिर 1 वर्ष पुणे विश्वविद्यालय में रहा, उसके बाद SNDT महिला विश्वविद्यालय में 2004 से आया, और फिर मैं अभी नानावटी कॉलेज में पिछले 17-18 साल से हूँ। तो ये तो मेरी यात्रा है। मित्रों, कविता मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है, हमारे जीवन की गीत संगीत और रोज की चीजों में जो प्रेम है, दर्द है, और जो हमारी भावनाएं हैं, उनमें कविता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारतेंदु मिश्र की एक कविता है, 4 लाइनें हैं कि सिर्फ आक्रोश ही न कविता है, गीत संगीत ही न कविता है, जो स्वयं भूत और भविष्यत है, पंक्ति वाह कालजयी कविता है। तो कालजयी कविता स्वयं भूत होती है, जिसके बारे में कहा गया है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। तो आप सब इस चीज को जान चुके हैं। यहाँ पर लिखा है कला ही जीवन है। मित्रों, भारतीय वांग्मय में कलाएं तो आपको पता ही है कि 64 कलाएं होती, और उन कलाओं में भी जो सर्वश्रेष्ठ कलाएं हैं वे हैं 5, जिनमें काव्य कला, संगीत कला, नृत्य कला, वास्तुकला और चित्रकला, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कला का स्थान काव्य कला यानी साहित्य को ही दिया गया है। तो इस काव्य कला का आनंद लेने के लिए, उसके लिए भी बहुत सारा साहित्य लिखा गया है। ये आनंद की जो परम अवस्था होती है, जो साहित्य से, कलाओं के आस्वादन से प्राप्त होती है। शायद आप सब जानते ही होंगे कि आचार्य मम्मट, जो संस्कृत के बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, उन्होंने कहा है इसी काव्य के आस्वादन के लिए, काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेत्र क्षते सद्य पर निवृत्ते कांत

0: कांता संवित तयोपदेश युजे, इसमें सब कुछ तो है लेकिन सबसे मुख्य दो बातें हैं, कांता संवित उपदेश और परम आनंद की प्राप्ति। तो ये साहित्य हमें परम आनंद देता है और कांता संवित उपदेश भी देता है। परम आनंद तो आप समझ सकते हैं कि जो अनिर्वचनीय है, जो ब्रह्म के आनंद की तरह प्राप्त होता है, जिसके लिए कहा गया है कि आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है और हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, ये आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। और हृदय की इसी मुक्तावस्था की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, तो जब हम काव्य का, साहित्य का, कलाओं का आस्वादन करते हैं तो परम आनंद की स्थिति होती है। तब हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे बगल में कौन बैठा है, हमने क्या पहना है, हमें भूख लगी है या प्यास लगी है, हम किस मौसम में बैठे हैं। वो एक परम आनंद की अनिर्वचनीय सुख की स्थिति होती है और कलाएं ये सुख हमें देती हैं। भले ही वो हास्य हो, क्रोध हो, वीर रस हो या कोई भी रस का परिपाक हो, लेकिन आनंद का जो सर्वश्रेष्ठ है हमें ये कविताएं और कलाएं देती हैं। मित्रों, इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग याद रखें कि जो साहित्य और कलाएं हैं वे हमें जीवन जीने के लिए, एक अच्छा जीवन दूसरों को देने के लिए, उस आनंद, उन मानवीय भावों को अनुभव करने के लिए आवश्यक हैं। और इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वे हमें ये सिखाते हैं कि हम एक दूसरे के प्रति सद्भाव, सहृदयता से रहें और उसके साथ जो मानवीय भाव हैं उनको साझा भी करते रहें। मानवीय भावों को साझा इसलिए भी करना आवश्यक है क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। हम कीड़े मकोड़े और मच्छर मक्खी और पक्षियों से, जानवरों से सबसे श्रेष्ठ इसीलिए हैं क्योंकि हम इन भावनाओं का, इन भाषा और साहित्य की इन कलाओं का आस्वादन पूरे मन से कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमने आज इस सृजन भारती में ये जो साहित्य की सरिता में अवगाहन किया है, हम जो इसमें डूबे हैं, उसके लिए हम सबसे पहले ममता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, विविध भारती को बहुत धन्यवाद देते हैं और अंत में सच्चे मन से इन सभी कवियों को बहुत धन्यवाद देते हैं। कविता का आनंद तो हम सबने लिया ही है, हास्य हो, व्यंग्य हो, लेकिन जो उदात्तता इनकी कविताओं में है, जो जीवन की श्रेष्ठता है और हमने जिस आनंद का इस समय अवगाहन किया है, उसका आस्वादन लिया है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और साधुवाद देता हूँ।
1: दोस्तों, हिंदी पखवाड़े पर ये था कवि सम्मेलन और कवियों ने अपनी अपनी कविताएं आपके सामने प्रस्तुत की। आपको कैसी लगी इन कवियों की कविताएं और ये पूरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। दोस्तों, विविध भारती हिंदी सर्विस है और हिंदी से प्रसारित तमाम कार्यक्रमों को सुन सुनकर लोगों ने अपनी हिंदी का विकास किया है, अपनी हिंदी समृद्ध की है। बहुत सारे हमारे ऐसे श्रोता हैं जो अहिंदी भाषी हैं, इन्होंने विविध भारती के कार्यक्रमों को सुन सुनकर अपनी हिंदी सुधारी है और बहुत सारे श्रोताओं ने विविध भारती के कार्यक्रमों को सुनकर हिंदी सीखी है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों के तमाम श्रोता भी विविध भारती से जुड़े हैं, तो आप यूं ही जुड़े रहिए और विविध भारती के कार्यक्रमों को सुनते रहिए, अपनी प्रतिक्रियाएं भेजते रहिए।
2: दोस्तों, विविधा कार्यक्रम में अभी आपने सुना सृजन भारती के तहत आयोजित किया गया कार्यक्रम काव्य तरंग। ये एक कवि गोष्ठी थी जिसमें शामिल थे सुभाष काबरा, देवमणि पांडे, आस्करण अटल और दमयंती दीपा। इस कवि गोष्ठी का संचालन ममता सिंह ने किया और विविध भारती के स्टूडियो में इस कवि गोष्ठी को आपके लिए रिकॉर्ड किया किरण बंग, अनुश्री गुप्ता, समृद्धि नाइक और भावना सिंदल ने। विविधा कार्यक्रम के लिए इस कवि गोष्ठी को संपादित किया मनीषा सिंह ने और विविधा कार्यक्रम को आपके लिए विविध भारती की ओर से प्रस्तुत करती हैं तेजश्री कामले।
3: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: सृजन की बातें साझा करेंगे, सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जब

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में सुनिए समाचार।
1: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम विविध भारती। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। अभी सुनिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई रेल परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए चेन्नई पहुंच चुके हैं। श्री मोदी आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से तैयार चेन्नई मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे। श्री मोदी चेन्नई मेट्रो में पोरूर बाईपास स्टेशन से पूनमल्ली बाईपास स्टेशन तक की यात्रा भी करेंगे। लगभग 4.25 किलोमीटर लंबे पूनमल्ली पोरूर कॉरिडोर में बिना ड्राइवर के डबल डेकर मेट्रो संचालन के लिए उन्नत सिग्नलिंग प्रणाली लगाई गई है। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें पलानी, वेल्लोर छावनी, अम्बासमुद्रम, परमाकुड़ी और नमक्कल में स्थित 5 अमृत स्टेशन शामिल है। इन स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किया गया है। श्री मोदी जलकिंडेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर यातायात परिवर्तित किया गया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद सभी 45 मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने कहा कि आज सभी रेलगाड़ियां निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
3: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी, ताकि यात्रियों को यह सुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
2: कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास को रिहा कर दिया गया है। इन तीनों को कल एहतियातन हिरासत में लिया गया था। नई दिल्ली में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने आज उनकी रिहाई का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस के अनुसार तीनों ने 1 वर्ष तक शांति बनाए रखने का भरोसा दिलाया है। उन्हें 50,000 रुपये की जमानत पर रिहा किया गया है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके को उनकी दादी के निधन की सूचना कल ही दे दी गई थी। पुलिस के

0: सार दिपके को मानवीय आधार पर उनके पैतृक शहर जाने के लिए हर संभव सहायता की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने ये सहायता लेने से इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस ने उस वीडियो को भ्रामक बताया है जिसमें एक कथित उपनिरीक्षक ने दिल्ली के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पद से इस्तीफा देने की बात कही है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में दिखाया गया उपनिरीक्षक दिल्ली पुलिस में नहीं है। भारत ने कहा है कि दिल्ली में कल हुई घटनाओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की चिंताएं निराधार हैं और ये देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप हैं। जिनेवा स्थित भारतीय स्थायी मिशन ने कहा कि मानवाधिकार कार्यालय को निष्पक्षता और बिना किसी पक्षपात के अन्य देशों में बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर भी ध्यान देना चाहिए। भारत ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए हैं। इसमें 4 सऊदी नागरिक, 2 बांग्लादेशी और अमरीका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, सूडान तथा फिलिस्तीन के भी एक एक नागरिक की जान गई है। गुजरात में गांधीनगर निगम थारा और ओखा नगर पालिकाओं सहित स्थानीय निकाय चुनावों के लिए शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में पानी अचानक बढ़ने के बाद तटवर्ती बस्तियों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। आज तड़के जलस्तर बढ़ने से कई मकान बह गए। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। अभी सुनिए आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम विविध भारती
2: की हार्दिक शुभकामनाएं।

गंगा की लहरें, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल संगीत चित्रगुप्त का, यादों की महफिल ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अगला गाना लगान फिल्म से ये गाना है, उदित नारायण, वैशाली, आशा भोंसले और साथियों की आवाज़ों में जावेद अख्तर के बोल हैं।

लगान फिल्म का ये गाना आपने सुना उदित नारायण, वैशाली, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल, संगीत A.R. रहमान का। यादों की महफिल ये कार्यक्रम जारी है देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। कार्यक्रम में समय हो चला है एक अंतराल का।

अंतराल के बाद हम उपस्थित हैं यादों की महफिल इस कार्यक्रम को लेकर। लाइफ पार्टनर इस फिल्म का गाना सुनिधि चौहान और कीर्ति सरगठिया की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल संगीत है प्रीतम का।

0: हम सब आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
1: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
0: आईसीयू में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
1: जो भी हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
0: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: रामलीला इस फिल्म का गाना श्रेया घोषाल और उस्मान मीर की आवाजों में, सिद्धार्थ गरिमा का लिखा हुआ गाना, संजय लीला भंसाली का संगीत।

0: रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिनपॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: काइपो छे इस फिल्म का गाना श्रुति पाठक और दिव्य कुमार की आवाजों में, स्वानंद किरकिरे के बोल, संगीत अमित त्रिवेदी का।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जब आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है छोटी बहन, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और सुबीर सेन की आवाजें, शैलेंद्र के बोर, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: दिल ही दिल में इस फिल्म का गाना उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में, महबूब के बोल संगीत है ए आर रहमान का।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती
4: ए मई जब जब भीड़ पड़ी भगतन पर।

0: संसार उसे क्या मारे संसार।
1: जोहर महमूद इन हांगकांग इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी, मुकेश और साथियों की आवाजों में कमर जलालाबादी के बोल संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

आज के यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना सुहाग फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी, आशा भोंसले और साथियों की आवाज़ों में आनंद बख्शी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम विविध भारती। ये आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई पहुंचे। वे आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। हवाई अड्डे पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। श्री मोदी ने चेन्नई में रोड शो किया और पोरूर पूनमल्ली मेट्रो रेल सेवा को रवाना किया। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें पलानी, वेल्लोर छावनी, अम्बासमुद्रम, परमाकुड़ी और नमक्कल में स्थित 5 अमृत स्टेशन शामिल हैं। श्री मोदी आईआईटी मद्रास में जलकंडेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। वे परिसर में बना सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की मनाली तेल शोधन संयंत्र में ल्यूब ऑयल बेस्ड स्टॉक्स परियोजना का शिलान्यास करेंगे। वे कामराजर बंदरगाह पर अतिरिक्त कोयला बर्थ परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में भी शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद सभी 45 मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल है। उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने कहा कि आज सभी रेलगाड़ियां निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
2: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली और निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
1: कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास को रिहा कर दिया गया है। इन तीनों को कल एहतियातन हिरासत में लिया गया था। नई दिल्ली में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने आज उनकी रिहाई का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस के अनुसार तीनों ने 1 वर्ष तक शांति बनाए रखने का भरोसा दिलाया है। उन्हें 50,000 रुपये की जमानत पर रिहा किया गया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके को उनकी दादी के निधन की सूचना कल ही दे दी गई थी। पुलिस के अनुसार दिपके को मानवीय आधार पर उनके पैतृक शहर जाने के लिए हर संभव सहायता की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने ये सहायता लेने से इनकार कर दिया। भारत ने कहा है कि नई दिल्ली में हाल की घटनाओं के संबंध में मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की टिप्पणियां अनुचित और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य हस्तक्षेप हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।

0: जहां संविधान शांतिपूर्ण प्रयोजन से एकजुट होने की अनुमति देता है, लेकिन अन्य लोकतांत्रिक देशों की तरह भारत में भी इन अधिकारों का प्रयोग सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है। भारत ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हैं। इसमें 4 सऊदी नागरिक, 2 बांग्लादेशी और अमरीका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, सूडान तथा फिलिस्तीन के भी एक एक नागरिक की जान गई है। गुजरात में गांधीनगर नगर निगम, थारा और ओखा नगर पालिकाओं सहित स्थानीय निकाय चुनावों के लिए शांतिपूर्ण मतदान जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। गांधीनगर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय 130 उम्मीदवार 11 वार्ड की 44 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की इस श्रृंखला में दोनों टीम एक एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली मुंबई केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम विविध भारती।

अमिताभ बच्चन, राखी और विनोद मेहरा पर फिल्माया गया बेमिसाल फिल्म का ये गाना आपने सुना। एक साथी हमारे लिखते हैं कि आज की इबारत में कोई साधारण पंक्तियां नहीं लिखी गई है, बल्कि इसमें दिल के एक पूरे सफर का निचोड़ है, जिसमें तस्वीर की खूबसूरती से शुरू होकर मन को छूने वाली मासूमियत है। बिंदिया की चमक में बसे प्यार का इकरार, ख्वाबों की मीठी उड़ान और दोस्ती यारी की अटूट कसम तक सब कुछ सिमटा हुआ है। फिर उसी में जुदाई का दर्द भी है कि तेरे बिना जीना कैसा। तो कभी कभी उठता वो गहरा सवाल भी कि क्या सोचा हुआ सच में होता है, और इसी उलझन के बीच वो अनजाना सा एहसास जब इंसान हौले हौले किसी हसीन चीज़ का तलबगार बन जाता है, तड़प, इंतज़ार और आखिर में अपनी पहचान की तलाश। सच कहें तो आज की इबारत एक आशिक, एक दोस्त और एक सोचने वाले इंसान की पूरी कहानी कह जाती है। जी हाँ, आज अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन है, तो उनको शुभकामनाएं देते हुए उन्हीं की फिल्म के गाने हम आपको सुनवाएंगे, और या यूं कहें कि सुनवा रहे हैं। एक हमारे साथी ये लिख रहे हैं कि जिनकी फिल्मों ने मात्र मनोरंजन ही नहीं किया, समाज को एक दिशा भी दी है। उनका भी शुरू का सफ़र बड़ा आसान नहीं रहा है, लेकिन वे संघर्ष करते रहे और प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर उनके जीवन में एक तूफान सरीखी आई, जिसने फ्लॉप हीरो का ठप्पा हटा दिया और वे रातों रात एक स्टार बन गए। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते गए। उनकी फिल्मों का दर्शकों को इंतज़ार रहता था और सिनेमा घरों में लगने वाली फिल्मों के टिकट एडवांस में बिक चुके होते थे। उस महानायक पर हमें गर्व है। और आज कुछ एक दो सवाल हैं हमारे, वैसे तो आपने बहुत सारी बातें लिख दी हैं, लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन की जो फिल्में हैं, कौन सी फिल्म का कौन सा किरदार आपको बहुत पसंद आया और उसकी क्या खासियत थी, ये आप हमें लिख कर भेज सकते हैं। और बहुत सारे उनके डायलॉग हैं जिसमें से कुछ तो हमारे श्रोताओं ने लिख के हमें भेज दिए हैं, और भी कोई डायलॉग आपको याद आ रहे हो जो आपको बहुत पसंद आए हो, तो फिल्म के नाम के साथ उस डायलॉग को हमें लिख करके भेज सकते हैं। चलिए अब हम अगला गाना आपको सुनवाते हैं। इस गाने ने सचमुच सभी के मन को छुआ, याराना फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज़, अनजान के बोल, राजेश रोशन का संगीत। अमिताभ बच्चन के साथ कौन सी अभिनेत्री दिखाई दे रही हैं, ये आप बताइए।

मेरे मन को। अमिताभ बच्चन के साथ जो अभिनेत्री इसमें दिखाई देती हैं वो है नीतू सिंह। आपके जवाब हम तक पहुंचे, बहुत धन्यवाद। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि ये कश्मीर है ये जो गीत हमने सुना, हाय हाय ये गीत सुनकर तो ठंड लगने लग गई, अब तो भाई रजाई निकालो। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बेमिसाल फिल्म का सदाबहार गीत, ये कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये आपने सुना है आर डी बर्मन द्वारा रचित और आनंद बख्शी द्वारा लिखित एक बहुत ही खूबसूरत ये रचना है और इसमें कश्मीर के प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ मानवीय भावना और रिश्तों की गहराई को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाया गया है। एक साथी लिख रहे हैं कि दाग जब दामन की जगह दिल में लगी हो तो कभी कभी हर तस्वीर में दिलरुबा ही नजर आती है, हर किरदार का तलबकार युवा आक्रोश में गुस्सेल विद्रोही दहाड़, व्यवस्था विरुद्ध विद्रोही तेवर, कभी कभी कभी विदूषक तो कभी दिल की तन्हाइयों में एकाकी जूझता एकमात्र लंबी अवधि का सुपर स्टार अमिताभ बच्चन आधारित ये जो सफ़र है ये हमें पसंद आया। अभिमान फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है एस डी बर्मन का।

लीजिए, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारे डायलॉग हमें लिख करके भेज दिए हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि अमर अकबर एंथनी इस फिल्म में एंथनी गोंसाल्विस के मज़ेदार अंदाज और हास्यपूर्ण संवाद आज भी लोकप्रिय है। एक साथी लिख रहे हैं नमक हलाल फिल्म का डायलॉग, आई कैन टॉक इंग्लिश आई कैन वॉक इंग्लिश। एक साथी लिखते हैं त्रिशूल फिल्म के लिए मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। और एक साथी लिख रहे हैं हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। एक साथी ने शोले फिल्म के लिए लिखा है ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये फिल्म का मशहूर गीत है जिसे जय और वीरू की दोस्ती के लिए याद किया जाता है। और एक साथी ने जंजीर फिल्म के लिए लिखा है जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। और एक साथी ने अग्निपथ फिल्म का डायलॉग लिख करके भेजा है विजय दीनानाथ चौहान पूरा नाम है मेरा। डॉन फिल्म के लिए डॉन का इंतज़ार तो 11 मिलकों की पुलिस कर रही है, ये बात लिखी है। और शराबी फिल्म का एक डायलॉग उन्होंने लिख करके भेजा है कि मूछे हों तो नत्थूलाल जैसी वरना ना हो। और शहनशाह फिल्म के लिए लिखा है रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं नाम है शहनशाह। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने लिख भेजी है, धन्यवाद आपका। चलिए अगला गाना सुनते हैं, सिलसिला फिल्म का गाना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज, जावेद अख्तर के बोल, संगीत शिवहरी का। अभिनेत्री कौन है आप बताइए।

परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन, मोहब्बतें फिल्म का ये डायलॉग हमारे एक साथी ने लिख करके भेजा है। और एक साथी लिख रहे हैं कि हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, पीटर ये ताला मैं तेरी जेब से ये चाबी निकाल कर खोलूंगा, ये डायलॉग उन्होंने लिख के भेजा है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि शक्ति मूवी जो है अमिताभ जी की, वो मुझे बहुत पसंद है, मेरे परिवार की कहानी लगती है और मेरे पति भी पुलिस ऑफिसर रहे हैं, मेरे बेटे और पति का संबंध दिलीप कुमार और अमिताभ जी जैसे रहे हैं और मैंने ये मूवी उनकी कई बार देखी है। एक हमारे साथी ये लिख रहे हैं कि कहते हैं ना कि जिसे आप प्यार करो तो उसकी हर चीज़ अच्छी लगती है, बस दर्द को कितना प्यार था कविता, आप किसी भी रोल में अदा करें लोग उन्हें पसंद करते थे, मुझे भी उनकी बहुत सारी फिल्में पसंद हैं। उनके किरदार में एक फिल्म है जुर्माना जो मेरे दिल के बेहद करीब है, फिल्म में जब इंदर का अहंकार टूटता है और वह अपनी गलती स्वीकार करता है, नायक को यह घमंड था कि वह अपनी दौलत और पैसे की ताकत से किसी भी इंसान के जज्बात और रिश्ते को खरीद सकता है, तो इस तरह की जो कहानी है ये उन्हें बहुत पसंद आई। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सिनेमा घरों की टिकट खिड़कियों पर कभी लंबी कतारें लगना उनकी लोकप्रियता का सबूत था, लेकिन चार दशकों से भी अधिक समय से हर रविवार को उनके बंगले के बाहर जुटने वाली जो भीड़ है वो इस बात की गवाही देती कि रिश्ता महज अभिनेता और दर्शक का नहीं बल्कि गहरी आस्था और अपनेपन का है, और ये अमिताभ जी ने अपने सरल स्वभाव से कमाया है, ईश्वर उन्हें दीर्घायु बनाए। एक साथी ने हमारे ये लिखा है कि आपने अभी तक नवरात्रि की शुभकामनाएँ नहीं दी है, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये देना चाहिए? अगर आपने हमारे इससे पहले वाला कार्यक्रम अगर सुना होगा तो हमने नवरात्रि की बहुत सारी आपको शुभकामनाएं दी हैं और बहुत सारे गीत भी नवरात्रि से संबंधित सुना है, लेकिन एक बार फिर हम आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हैं। चलिए अगला गाना शोले फिल्म से है, किशोर कुमार मन्ना डे की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है आर डी बर्मन का।

एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि डायलॉग की जहाँ तक बात है तो उन्होंने लिख करके भेजा है कि ये क्या है, कोल्हापुरी कितना नंबर है, 9 नंबर। और एक और डायलॉग, मुंशी जी हमारी ज़िंदगी का तंबू 3 बम्बुओं पर खड़ा है, फिल्म शराबी का ये डायलॉग है। और एक और शोले का डायलॉग, अब क्या करूं मौसी मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है, ये इन्होंने लिख करके भेजा है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आए तुम याद मुझे गाने लगी हर धड़कन, मिली फिल्म का ये जो गाना है ये किशोर कुमार का गाया हुआ और एक बेहद मधुर और भावुक गीत है जो प्रेम याद और दिल की कोमल भावनाओं को दर्शाता है। जब प्रिय व्यक्ति की याद आती है तो भीतर का सुनापन संगीत में बदल जाता है और जीवन में एक अलग ही ताजगी आ जाती है, इसलिए ये मुझे बड़ा पसंद है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि अमित जी ने अपनी इस लंबी पारी में एक से बढ़कर एक नायाब किरदार निभाए हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक है मुझे मुकद्दर का सिकंदर के बहुत मुतासिर हुआ हूँ मैं इस फिल्म से। इस फिल्म में अमित जी ने जो बेमिसाल अभिनय किया है उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। अकेलेपन का दर्द, एक तरफा प्यार की कशिश, दोस्त और माँ बहन के लिए असीम प्यार, इन सभी भावनाओं को उन्होंने जिस शिद्दत के साथ बयान किया है उसके बारे में क्या कहें। इस फिल्म के गीत के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। चलिए इसी फिल्म का गीत हम आपको सुनवाते हैं, मुकद्दर का सिकंदर। इस फिल्म का किशोर कुमार की आवाज़, अनजान के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। अभिनेत्री कौन है आप बताइए।

गद्दर का सिकंदर फिल्म का ये गाना आपने सुना, इसमें जो अभिनेत्री हैं वो हैं राखी। एक साथी लिख रहे हैं कि बागबान फिल्म मुझे बहुत पसंद है, इस परिवार की फिल्म लगती है ये, आम आदमी की, हमारी खुद की फिल्म जब भी देखने बैठते हैं तो उठने का मन नहीं करता। हेमा मालिनी जी और अमिताभ जी का बिछड़ना दिल को छू जाता है। और एक डायलॉग लिखा है कि जय और वीरू ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये जो शोले फिल्म में की बात इन्होंने लिखी। और लिखा है कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, ये भी एक डायलॉग है शायद, वो उन्होंने लिखा है। और एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि

महानायक अमिताभ बच्चन जी से मैं स्वयं और हम सभी ये प्रेरणा ले सकते हैं कि व्यक्ति की उम्र कभी भी उस व्यक्ति के काम में बाधा नहीं बन सकती है, अगर उसमें इच्छा शक्ति है, समर्पण है, काबिलियत है, समय के पाबंद है और मधुरभाषी है तो सफलता उसके कदम चूमती ही है। ये बात इन्होंने लिखी है। और शोले के एक डायलॉग के बारे में लिखा है कि अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भूंज के रख दूंगा, जेल में पिस्तौल, डिचुम डिचुम, जय तुम्हारा नाम क्या है बसंती, ये इन्होंने डायलॉग लिख करके भेजा है। चलिए आपका धन्यवाद। और एक साथी ने हमारे ये बात लिखी है कि भारतीय सिनेमा के महानायक जिनके लिए रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि उनका रुतबा है, जिन्होंने सिखाया है कि हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, जिनकी कड़क आवाज़ जब गूंजती है तो आज भी डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है का रोमांच सर चढ़कर बोलता है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो स्वाभिमान से कहता है कि मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, जिसका पूरा नाम सुनते ही उनकी विजय दीनानाथ चौहान की दमदार छवि आंखों के सामने तैर जाती है। सच उनके इस अंदाज के लिए दिल बस यही कहता है कि आप जिए हजारों साल। ये इनकी बात है। चलिए धन्यवाद। मजबूर फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं, किशोर कुमार की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

एक साथी ने हमारे ये बात लिखी है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने, मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ का गाया हुआ फिल्म एक नज़र का ये गीत अमिताभ बच्चन और जया जी पर फिल्माया गया है, जो मेरे दिल के बेहद करीब है। इस गीत में दोनों की ही मासूमियत मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि कुछ लोग सिर्फ फिल्मों में अभिनय नहीं करते, वे अपने किरदारों से लोगों के दिलों में घर बना लेते हैं। अमिताभ बच्चन जी की दमदार आवाज़, संवाद बोलने का अंदाज और दशकों तक दर्शकों से जुड़ाव उनकी खास पहचान है। समय बदलता रहा, पीढ़ियां बदलती रही, लेकिन उनके प्रति लोगों का प्यार आज भी कायम है। तो इसी के साथ हम अगला गाना शक्ति फिल्म का आपको सुनवा रहे हैं। किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, संगीता आर डी बर्मन का।

एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि कालिया मूवी में जब वो कहते हैं कि ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, होठों पर मुस्कान आ जाती है। और हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि अमिताभ बच्चन भारतीय सिनेमा के शहंशाह, सदी के महानायक और आज एक आज तक भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार हैं। शुरुआती दिनों में काफ़ी संघर्ष रहा, जहां तक रेडियो जॉकी में उनकी आवाज़ की रिजेक्ट कर दिया गया, वहीं पहली 10-12 फिल्मों की असफलता के बाद जब फिल्म जंजीर बनी तो भारतीय फिल्मों का को एक ऐसा एंग्री यंगमैन मिला जिसके अभिनय का जादू सारे जहान में छा गया। दीवार, डॉन, त्रिशूल, अमर अकबर, एंथनी, लावारिस और भी कई ऐसी फिल्में हैं अमिताभ बच्चन की जिसने सिने दर्शकों ने बहुत प्यार दिया। और आज भी अमिताभ जी बेशक 80 बरस के ऊपर हो गए लेकिन फिल्मों और टीवी प्रोग्राम में वो सक्रिय हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं, सौदागर फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। किशोर कुमार की आवाज़, गीत और संगीत है रविन्द्र जैन का।

अमिताभ बच्चन यानी अभिनय की यूनिवर्सिटी और एक नेक इंसान महान व्यक्तित्व, ये हमारे एक साथी ने लिखा है। और ये भी लिखा है कि फिल्म कोहराम में अमिताभ जी और नाना पाटेकर जी का शानदार अभिनय हमें देखने को मिला। एक साथी ने फिल्म बागबान का एक डायलॉग लिखा है कि औलाद शायद ये भूल रही है कि जो आज हमारा है वो कल उनका भी होगा, आज हम बूढ़े हैं तो कल वो भी बूढ़े होंगे। मैं कभी किसी युवा को बुजुर्गों का अपमान करते हुए देखता हूँ तो यही बात मैं बोलता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ, स्वयं भी सभी बुजुर्गों की इज्जत करता हूँ। ये साथियों ने हमारे बात लिखी। और ये भी लिखा है कि अमिताभ हमारे सदी के वे अभिनेता हैं जो किसी ख्वाब के पूरे होने की दास्तान है। उन्होंने पर्दे पर न जाने कितनी तरह के रंग बिखेरे और दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उनकी दो जिंदगी हैं, एक पर्दे के बाहर की और पर्दे के भीतर की, और दोनों ही तरफ उन्होंने खूब शोहरत बटोरी। अमिताभ में एक आभा है और अपने काम के प्रति गहरा समर्पण, ये दो चीज़ें ही हम सबका समय समय पर मन मोहती रहती है। और गजब की बात यह कि जिस उम्र में लोग रिटायर होकर आराम की जिंदगी जीना पसंद करते हैं उस उम्र में भी वो खूब सक्रिय हैं। चलिए आगे, सत्ते पे सत्ता, इस फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज़, गुलशन बावरा के बोल, आर डी बर्मन का संगीत।

अमिताभ बच्चन सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, वे इस बात का जीवंत प्रमाण है कि प्रतिभा, अटूट अनुशासन और असफलताओं से सीखकर दोबारा खड़े होने की जिद इंसान को कैसे अमर बना देती है। वे भारतीय सिनेमा के सूर्य हैं जिनकी चमक का दायरा कभी कम नहीं होता। उनके संवाद, उनकी आवाज का जादू ऐसा है कि साधारण से साधारण पंक्ति के भी सिनेमाई इतिहास का हिस्सा बन जाता है। और एक साथी ने ये लिखा है कि उम्र उनके चेहरे पर लकीरें खींच सकती है, वक्त उनके कदमों की रफ्तार बदल सकता है, लेकिन करोड़ों दिलों में उनके लिए जो मोहब्बत है उसे कभी कम नहीं कर सकता, क्योंकि अमिताभ बच्चन सिर्फ एक नाम नहीं, हमारी कई पीढ़ियों की यादों में बसी एक आवाज़ है, एक ऐसा जादू जो पर्दा गिरने के बाद भी खत्म नहीं होती। चलिए अगला और अंतिम गाना, डॉन फिल्म का गाना।

0: project. Prime Minister to launch development projects worth over 13,000 crore rupees in Chennai this afternoon. India condemns repeated attacks on Riyadh Airport, expresses concern over loss of lives and damage to property. Supreme Court directs authorities to prevent illegal detention of peaceful gatherers, ensure free movement of people and uninterrupted internet services. Nepal issues evacuation warnings along Buri Gandaki River after rising water sweep away houses in Gorkha district. And in men's cricket, India to take on West Indies in the third T20 International in Indore this evening. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के पूनमल्ली वडापलानी खंड का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत ने रियाद हवाई अड्डे पर हमलों की निंदा की और जानमाल तथा संपत्ति के नुकसान पर चिंता व्यक्त की। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हुए लोगों की अवैध हिरासत रोकने, सामान्य आवाजाही और निर्बाध इंटरनेट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। नेपाल ने गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में पानी बढ़ने से कई घरों के बह जाने को देखते हुए लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा। और भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 मैच आज इंदौर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई पहुंचे। वे आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय, उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों, अन्ना द्रमुक महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी सहित अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने चेन्नई में रोड शो किया और पोरूर पूनमल्ली मेट्रो रेल सेवा को रवाना किया। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो की यात्रा की। लगभग 4.25 किलोमीटर लंबे पूनमल्ली पोरूर कॉरिडोर में बिना ड्राइवर के डबल डेकर मेट्रो संचालन के लिए उन्नत सिग्नलिंग प्रणाली लगाई गई है। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें पलानी, वेल्लोर छावनी, अम्बास समुद्रम, परमाकुडी और नमक्कल में स्थित 5 अमृत स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किया गया है। श्री मोदी परिसर में बना सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य समुद्री अवसंरचना को मजबूत करना, माल ढुलाई क्षमता का विस्तार करना और लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करना है। प्रधानमंत्री चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की मनाली रिफाइनरी में ल्यूब ऑयल बेस स्टॉक्स परियोजना की शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कामराजर बंदरगाह पर अतिरिक्त कोयला बर्थ परियोजना का उद्घाटन करेंगे। वे जयगोपाल गरुड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में भी शामिल होंगे। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लेने और यातायात को सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार बनाए रखने और इंटरनेट सेवा भी निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के कथित उल्लंघन के लिए अवमानना कार्यवाही करने वाली याचिका पर न्यायालय ने कहा कि वो सभी पक्षों की बात सुनेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि किसी को कोई असुविधा न हो। कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास को रिहा कर दिया गया है। इन तीनों को कल एहतियातन हिरासत में लिया गया था। नई दिल्ली में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने आज उनकी रिहाई का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस के अनुसार तीनों ने एक वर्ष तक शांति बनाए रखने का भरोसा दिलाया है। उन्हें 50,000 रुपये की जमानत पर रिहा किया गया है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके को उनकी दादी के

0: निधन की सूचना कल ही दे दी गई थी। पुलिस के अनुसार दीपके को मानवीय आधार पर उनके पैतृक शहर जाने के लिए हर संभव सहायता की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने ये सहायता लेने से इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद सभी 45 मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल है। उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि सभी रेलगाड़ियां निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
1: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी, ताकि यात्रियों को यह सुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली और निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और अनवरत अटूट वचनबद्धता से प्रेरित रही है। सेवा और सुशासन को केंद्र में रखकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समेकित विकास और सामाजिक सशक्तिकरण का ये प्रयास लोगों के जीवन को परिवर्तित कर रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में चर्चा पद्म पुरस्कारों की, जिसकी चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने के लिए व्यापक बदलाव किए गए।
2: 2014 के बाद पद्म पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया में व्यापक बदलाव किया गया। देश के इस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार को अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाया गया है। अब देश का कोई भी नागरिक किसी भी योग्य व्यक्ति को नामांकित कर सकता है। अब इसमें लोगों के पास खुद को भी नामांकित करने के अवसर हैं। सभी नामांकन पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं। इन व्यापक सुधारों ने पद्म पुरस्कार को एक सीमित दायरे से निकालकर जन पुरस्कार के रूप में बदल दिया और दूर दराज, ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के जमीनी स्तर पर असाधारण काम करने वाले गुमनाम नायकों को सम्मानित करने का नया मानक स्थापित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के एक एपिसोड में पद्म पुरस्कारों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब ये पीपुल्स पद्म बन चुका है।
3: पद्म सम्मान का सिस्टम पूरी तरह से बदल चुका है, अब ये पीपल्स पद्म बन चुका है। पद्म सम्मान देने की व्यवस्था में कई बदलाव भी हुए। अब इसमें लोगों के पास खुद को भी नॉमिनेट करने का मौका रहता है।
2: पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित उत्तर प्रदेश की मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने पद्म पुरस्कारों की प्रक्रिया को आसान किए जाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की।
4: भारत सरकार ने निसंदेह 12 वर्षों से ये प्रयास किया है कि भारत की मिट्टी के जो सच्चे सेवक है उनको सम्मान मिले और उनके बारे में बताना, मुझे लगता है कि इसकी जितनी भी सराहना करें वो कम है।
2: उत्तर प्रदेश के वाराणसी के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका और वर्ष 2026 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित मंगला कपूर ने भी पद्म पुरस्कारों की प्रक्रिया को आसान किए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की और कहा कि अब एक आम आदमी के मन में यह विश्वास मजबूत हुआ है कि वह किसी भी क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य कर रहा है तो उसे भी पद्म पुरस्कार मिल सकता है। प्रेमचंद्र गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
0: भारत ने कहा है कि नई दिल्ली में हाल की घटनाओं के संबंध में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की टिप्पणियां अनुचित और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य हस्तक्षेप हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां संविधान शांतिपूर्ण प्रयोजन से एकजुट होने की अनुमति देता है, लेकिन अन्य लोकतांत्रिक देशों की तरह भारत में भी इन अधिकारों का प्रयोग सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है। भारत ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आम नागरिकों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। भारत ने सऊदी अरब की संप्रभुता की रक्षा के लिए वहां की जनता और सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त की। भारत ने आशा व्यक्त की है कि क्षेत्र में जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल होगी। सऊदी अरब

0: होने की खबर है। इस हफ्ते हुए पहले के हमलों में भी लोगों की जान गई थी और एयरपोर्ट पर खड़े सऊदी अरब के एक कमर्शियल विमान को नुकसान पहुंचा था। सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने दम्मम एयरपोर्ट और अल खर्ज को भी निशाना बनाने की कोशिशों की जानकारी दी है। गठबंधन ने सऊदी क्षेत्र पर हुए इन हमलों का कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: अमरीका यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब की सैन्य कार्रवाई में शामिल होने पर विचार कर रहा है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त करने के इच्छुक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने शांति स्थापित करने के अवसरों को बार बार गंवाया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में पानी अचानक बढ़ने के बाद तटवर्ती बस्तियों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। आज तड़के जलस्तर बढ़ने से कई मकान बह गए। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जलस्तर में अचानक वृद्धि का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस बीच नेपाल में बाढ़ को देखते हुए बिहार के सीमावर्ती जिले पश्चिम चंपारण में सतर्कता बढ़ा दी गई है। हालांकि बिहार पर इस बाढ़ का असर होने की संभावना बहुत कम है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के जिलाधिकारी तरणजोत सिंह ने कहा कि जिले में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका नहीं है।
2: लोगों ने अलर्ट किया है, लेकिन पानी कोई बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, देवघाट पर भी मॉनिटर कर रहे हैं। एक देवघाट से भी पीछे काली खोला करके जगह है, वहां पर पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ के लगभग 50 सेंटीमीटर बढ़ के अब फॉल करना शुरू कर गया है।
1: गुजरात में गांधीनगर, ओखा और थारा नगर निगम चुनाव तथा खिरालू, छोटा उदयपुर और बायद नगर निगम उपचुनाव, देवभूमि, द्वारका जिला पंचायत, पड़धारी, सतलासना और हरिज तालुका पंचायत के उपचुनावों के लिए शांतिपूर्ण मतदान जारी है। गांधीनगर नगर निगम के 11 वार्ड में अब तक औसतन 31.9% मतदान दर्ज किया गया है। शारदीय नवरात्रि का महापर्व आज से शुरू हो गया है। 9 दिन का ये धार्मिक उत्सव मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का प्रतीक है, जिसे लोग उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने कल कोलकाता में ईडन गार्डन्स में महालया के अवसर पर आयोजित भव्य उमा आगमोनी कार्यक्रम के साथ देवी दुर्गा के आगमन का स्वागत किया।
3: कोलकाता में देवी पक्ष की शुरुआत के साथ ही दुर्गा पूजा की रौनक बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने शनिवार को ईडन गार्डन्स में उमा आगमन कार्यक्रम आयोजित किया। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इस कार्यक्रम के साथ दुर्गा पूजा उत्सव की औपचारिक शुरुआत की। 3000 ढाकियों ने एक साथ पारंपरिक ढोल बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ड्रोन शो में आसमान पर देवी दुर्गा की महिषासुर मर्दनी स्वरूप की छवि दिखाई गई। उत्सव की रौनक रोड पर भी देखने को मिली, जहां विभिन्न पंडालों में पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कामना की कि मां दुर्गा का आशीर्वाद सभी को शक्ति, साहस और सद्बुद्धि प्रदान करे। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि देवी मां का आशीर्वाद देशवासियों में धैर्य और आत्मविश्वास की भावना को प्रेरित करेगा। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की इस श्रृंखला में दोनों टीम एक एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के पूनमल्ली वजापलानी खंड का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत ने रियाद हवाई अड्डे पर हमलों की निंदा की और जानमाल तथा संपत्ति के नुकसान पर चिंता व्यक्त की। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हुए लोगों की अवैध हिरासत रोकने, सामान्य आवाजाही और निर्बाध इंटरनेट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। और भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 मैच आज इंदौर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का

0: ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना है आओ प्यार करें। इस फिल्म से आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत है उषा खन्ना का।

0: हम सब आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
1: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
0: आईसीयू में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
1: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
0: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आपकी परछाइयां, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, राजा मेहंदी अली खां के बोल, मदन मोहन का संगीत।

0: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में असद भोपाली का लिखा हुआ गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म आया तूफान।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
2: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे। चित्रलेखा इस फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है रोशन का।

शकील बदायूनी का लिखा और रवि का संगीत प्रतिक्रिया। ये गाना आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है दूर की आवाज़।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, आइए अब सुनते हैं। शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म का नाम आई मिलन की बेला।

आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बेटी बेटे। इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में, शैलेंद्र के बोल शंकर जयकिशन का संगीत है।

0: इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे मंजू द्विवेदी के साथ। आप सभी का बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
3: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के दूसरे व्यक्तियों के अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
3: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
4: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
4: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

तो चलिए आज के इस मनचाही गीत कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पहला गीत सुनते हैं लोफर फिल्म का ये गाना। आशा भोसले की आवाज़, आनंद बख्शी की बोल और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को सुनना चाहते हैं रमन अग्रवाल लुधियाना से। और इसके अलावा फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं विवेक देशमुख, दीपक विज देशमुख और अनिरुद्ध देशमुख। आपका पत्र आया है समता कॉलोनी कठोरा रोड अमरावती महाराष्ट्र से। और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन और अंकुश अरोड़ा ने फरमाइश भेजी है। और प्रणाम सिटी खंडवा से सुभाष खंडाले, मंदा खंडाले, राजेश, अंजलि और पिंटू खंडाले का पत्र हमें मिला है। आइए सुनते हैं लोफर फिल्म का ये गाना।

मनचाहे गीत कार्यक्रम का अगला गाना है धरती फिल्म से, आवाज मोहम्मद रफी की, राजेंद्र कृष्ण के बोल और संगीत शंकर जयकिशन का। इस गाने को सुनने के लिए फरमाइश हमारे पास आई है बाबा बैजनाथ धाम झारखंड से मनोज केशरी, पूजा केशरी और श्रद्धानंद केशरी की, श्री रामपुर भोकर से हरिभाऊ बिड़वे, पूजा, अनिकेत, शुभांगी, श्रावण और अनिता बिड़वे की, और बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही और स्वाति मौर्य, ग्राम जंजगिरी दुर्ग से मयंक कुमार मैथिल और विनय कुमार मैथिल, जवाहरगंज जबलपुर से जिनेन्द्र जैन। आपकी पसंद का है धरती फिल्म का ये गाना।

आपका मनचाहा अगला जो गीत है वो लता मंगेशकर और बप्पी लहिरी की आवाज़ों में आपकी खातिर इस फिल्म का गाना है, शैली शैलेंद्र के बोल और संगीत बप्पी लहिरी का। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है धाड़ी नांदूरा से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य और वैशाली बाठे ने, और इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने, आज़ाद नगर बक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां ने, और इसके अलावा विनोद कुमार अफ्रीका वाला इनका पत्र आया है पातड़ी जिला सुरेंद्र नगर गुजरात से, और नंदग्राम गाजियाबाद से बाबूराम आनंद, बीना गौरव, प्रतीक्षा शिवानी, चंचल और खुशी आनंद का। आपकी पसंद का है आपकी खातिर इस फिल्म का ये गाना।

खानजी पीर उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, फरीदा बानो, नजीब खान, बाबू भाई और अशरफ खान, ग्राम बगोता जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से रामेश्वर रैकवार, पीयूष, तरुण, दीपेश, दयानंद और राम मिलन रैकवार और महामाया प्रसाद ओझा। आपका पत्र अंबिकापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से आया है। सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु पथिक, सोनाली और कृष्ण नारंग, कृष्णानगर टीवी टावर, सेमिनरी हिल्स नागपुर से नाना डोंगर दिवे, रमाताई, सीमाताई, रीमाताई, दीक्षाताई और राहुल डोंगर दिवे का पत्र हमें मिला है। आपने फरमाइश किया है भाभी फिल्म के गाने के लिए। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, राजेंद्र कृष्ण के बोल और संगीत है चित्रगुप्त का।

अगला जो गीत है जिसकी फरमाइश हमें श्रोताओं ने लिख भेजी है वो है दीवाना फिल्म का गाना, कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ें, समीर के बोल हैं, संगीत है नदीम श्रवण का। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरोल, नारायणी सिंगरोल, नोमेश नेहा और वान्या सिंगरोल, रणपिस नेग अकोला से शिवराज भारती, टीना, तनीषा, राज भारती, रीनाताई, रोहित और राज भारती। इसके अलावा नरोत्तम गोड़ लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं और रथ चौक बहादुरपुर से संतोष कुमार सोनार, नरेंद्र दड़गंगवाल, रविंद्र सोनार, सन्नी मुन्ना और बंडू दादा। इसके अलावा एरोड्रम थाने से इंदौर से ये पत्र आया है, रेखा, संतोष, रघुवंशी, शोभा, भूपेंद्र, बबीता, सुरेंद्र, पूजा, विक्की रघुवंशी का, स्वाति, प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश, कार्तिक, संजना, परी खर्चे और ललिता नारायण खर्चे का, आपकी पसंद का ये गाना दीवाना फिल्म से।

0: दीवाना फिल्म का ये गाना यही था आज के मंचाई गीत कार्यक्रम का अंतिम गाना। इस कार्यक्रम में कार्यक्रम सहयोग हमें मिला धनश्री साठे से और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: मन चाहेगी
2: मन चाहेगी
1: मन चाहेगी यह है विविध भारती।
3: नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज आपको सुनवाते हैं प्लास्टिक की घास। सुरेंद्र गुलाटी के लिखे इस नाटक

0: का दूसरा और अंतिम भाग। निर्देशक दीना नाथ।
1: मिस्टर शर्मा करमारकर के दफ्तर से निकलकर बिरला मंदिर की तरफ रवाना हुए। चलते चलते मन में कई किस्म के विचार उठ रहे थे।
2: करमारकर साहब जरूर मेरी मदद करेगा, पर बड़ी गलती हुई। करमारकर साहब के पास जाते हुए मुझे कुछ फल वल ले जाने चाहिए थे। फल कितने महंगे हो गए हैं। कुछ भी हो, ऐसे मुश्किल वक्त में पैसे का मुंह नहीं देखना चाहिए।
3: ओए देख के चलो, तुरी जाना है चलो, तो तू उत्ते पहुंच जाना सी।
4: ओए केड़े पिंडो आया है?
3: पता नहीं तेनू, शहर विच लोकी फुटपाथ ते चलदे ने।
1: अपने ही शहर में मिस्टर शर्मा आज परदेसी लग रहे थे। थके हारे घर पहुंचे तो मिसेस शर्मा बाहर ही खड़ी थीं।
5: क्यों जी, कुछ बात बनी?
2: हाँ, आज करमारकर साहब से मिला था।
5: क्या कहते हैं?
2: कहते हैं ऑल द बेस्ट।
5: इसका मतलब?
2: सब कुछ ठीक हो जाएगा।
5: हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। चलो बला काटी।
3: ये कैसे समझ लिया तुमने कि बला टली? करमारकर साहब ने सिर्फ यही तो कहा है कि उनकी प्रार्थना है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा।
5: यानी वो खुद कुछ नहीं करेंगे?
2: कोशिश करेंगे।
5: तो आज के जमाने में ये भी कौन करता है? दोपहर को पड़ोसन आई थी, कह रही थी भटनागर साहब की भी एक बार ट्रांसफर हुई थी, मगर उन्होंने रुकवा ली थी।
2: हो सकता है।
5: कह रही थी भाई साहब से कहना, उनसे सलाह मशवरा कर ले।
3: अरे तुम तो जानती हो, शराबी कबाबी आदमी है। पिताजी कहा करते थे शराब की इल्लत से बचने के लिए जरूरी है कि शराबी की संगत से बचो।
5: आए हाय, जरा सी सलाह लेने से तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा क्या? जाओ जाओ, मिलाओ ना दो मिनट।
3: ओहो, लेकिन वो
5: दो मिनट बात करने में क्या हर्ज है, तो अपना पड़ोसी ही ना।
2: अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो चला जाता हूँ।
6: अरे आइए आइए शर्मा जी।
3: नमस्ते
6: नमस्ते नमस्ते। अरे साहब धन्य भाग्य हमारे, आप हमारे घर पधारे।
3: अरे साहब कैसी बात कर रहे हैं आप,
6: इतने करीब रहकर भी कभी आए नहीं हैं
3: आप। तो जानते ही हैं दिन भर दफ्तर में ही निकल जाता है, काम इतना है कि घर पर भी लाना पड़ता है।
6: हाँ आप बैठिए।
3: हाँ बस मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ।
6: और सुनाइए।
3: वो बस ऐसा था कि
6: पहले ये बताइए कि क्या लेंगे आप?
3: जी नहीं,
6: पानी है सोडा?
3: नहीं नहीं, मैं नहीं लेता ये, मैं नहीं लेता।
6: मैं भी नहीं, आई डोंट ड्रिंक।
3: वो बात ये है, मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता था, योर एडवाइस।
6: आई डोंट ड्रिंक।
3: हाँ वो तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल हुआ क्या कि अचानक
6: यू नो मिस्टर शर्मा, आई डोंट ड्रिंक।
3: हाँ हाँ,
6: आप इसे अपना ही घर समझ।
3: जी हाँ जी हाँ, मैं अपना ही घर समझ कर आया हूँ। क्या बताऊँ, बहुत विपता आन पड़ी है, मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए हैं।
6: बहुत बुरी बात, मैंने बस सब छोड़ दिया है। आई डोंट ड्रिंक।
3: सुना है आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि?
6: हाँ क्या हुआ?
3: सुना है आपके भी ट्रांसफर का कुछ चक्कर चला था।
6: चक्कर? घनघोर चक्कर, बट आई डोंट ड्रिंक।
3: मैं वो ट्रांसफर की बात कर रहा था।
6: ट्रांसफर करना किसी को घर से उजाड़ना, बहुत कोशिश की उन्होंने, बहुत कोशिश की।
3: फिर आपने क्या किया?
6: बहुत कोशिश की उन्होंने।
3: फिर आपने क्या किया?
6: मैंने
3: हाँ आपने क्या किया?
6: मैं ऊपर गया।
3: हाँ
6: और कहा मेरी ट्रांसफर रोक दी जाए।
3: फिर
6: मैंने उनसे कहा मेरी ट्रांसफर रोक दी जाए।
3: तो आपकी ट्रांसफर रोक दी गई?
6: नहीं।
3: फिर
6: मैं और ऊपर गया।
3: अच्छा फिर
6: वहां भी न रुके?
3: तो
6: मैं और ऊपर गया।
3: और वहां? हाँ फिर वहां क्या हुआ?
6: वहां क्या होना था? आई डोंट ड्रिंक।
3: और वो लोग?
6: वो लोग नहीं माने।
3: फिर आपने क्या किया?
6: करना क्या था, कह दिया उनसे।
3: क्या
6: कह दिया उनसे? नहीं मानते तो कर लो ट्रांसफर। पहले इसके के ऑर्डर मेरे दफ्तर पहुंचे, मैंने लीव ले ली।
3: छुट्टी ले ली? कितनी?
6: पहले एक महीने की, फिर दो महीने की, फिर तीसरे महीने की।
3: लेकिन इतनी लंबी ली?
6: मेडिकल।
3: यानी आपने ऐसे ही सर्टिफिकेट वगैरह?
6: नो मिस्टर शर्मा, आई डोंट ड्रिंक।
3: जी जानता हूँ, लेकिन वो सर्टिफिकेट?
6: पहले तीन महीने का झूठा सर्टिफिकेट और उसके बाद का सच्चा।
3: क्या मतलब?
6: तीन महीने की छुट्टी थी, काम का कुछ था नहीं। ऐसे ही कभी कभार जरा सा शौक कर लेता था। वैसे यू नो

0: डोंट ड्रिंक, बस तीसरे महीने लीवर, यू नो मिस्टर शर्मा, लीवर,
1: जिगर जिगर,
0: बस बोल गया, हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा, छूटे सर्टिफिकेट की जरूरत भी खत्म हो गई।
1: हाँ, और आपके ट्रांसफर ऑर्डर्स?
0: जब दफ्तर ज्वाइन ही नहीं करूंगा तो ऑर्डर सर्व कैसे करेंगे? सारे कहते थे ट्रांसफर रुक नहीं सकती, अब रुकी है ना, साल भर से के नहीं रुकी है बराबर।
2: हाँ जी, मिला है, क्या मशवरा दिया उन्होंने?
3: शराब पियो, अपना जिगर खराब करो, अस्पताल में दाखिल हो जाओ। सरकारी ट्रांसफर तो अपने आप रुक जाएगा, इस दुनिया से ट्रांसफर भले ही हो जाए।
4: मैंने तो आपको पहले ही कहा था पिताजी, ये सब एक्शन बेकार है, सीधी उंगली से कभी घी नहीं निकलता, बिना ढोल बजाए कोई नहीं सुनता।
3: तो क्या करूं फिर?
4: मेरी मानिए तो यूनियन लीडर से मिलिए।
3: यूनियन? मैंने तो आज तक किसी यूनियन को ज्वाइन नहीं किया।
4: यही यही यही तो गलती की है आपने, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मेरी मानिए, कल सुबह यूनियन के लीडर से मिलिए, जो काम ऑफिसर्स नहीं कर सके ये मिनटों में कर लेते हैं।
3: लेकिन हमारी यूनियन का लीडर तो शायद घनश्याम है।
4: ओ, जो कोई भी हो, उसके घर जाकर उससे फौरन मिलिए।
3: ये कैसे हो सकता है, वो तो क्लास फोर है।
4: और बस बस यही तो कमजोरी है हम लोगों में, हम लोग क्लासों के चक्कर में फंस कर बट गए। क्लास वन क्लास टू से नहीं मिलता, क्लास टू क्लास फोर से बात नहीं करना चाहता, और इसी बात का फायदा उठाकर वो आप पर वार करते हैं, इंसानों को उंगलियों पर नचाते हैं।
2: ठीक ही तो कहता है किशन, उस नीच को भूल के जहां से भी मदद मिलती हो ले लेनी चाहिए, जरूर मिलिया ही जाकर सुबह उससे।
1: अच्छा, अगर तुम लोग कहते हो तो मिल आऊंगा। हाँ, लेने आ गया क्या?
2: वो बेचारा भी इसी चक्कर में किसी से मिलने गया है।
1: ओ, और उषा?
2: उषा उसने तो कल से रो रो के अपना बुरा हाल कर रखा है, ना कुछ खाया है ना पिया है।
1: ओ, इस ट्रांसफर से उसे इतना सदमा
2: हुआ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, उसके तो आंसू भी नहीं थमते।
5: अरे बस बस उषा, धीरज रखो, क्यों रो रो कर अपना मन हलकान कर रही हो?
6: ना जाने तुम किस पत्थर के बने हो, मैं तो ये सोच सोच कर कि हम हमेशा हमेशा के लिए जुदा होने वाले हैं, बस होश ही गवा बैठी हूँ। पढ़ने की कोशिश करती हूँ तो आंखों में पानी भर आता है और तुम्हारी सूरत डूबती नजर आती है।
5: मौत से पहले मन में कहरों का काम है, जब जुदा होने का वक्त आएगा तब जुदाई की आग में जलकर जी लेंगे। लेकिन अभी तो तुम मेरे पास हो, फिर अभी से रोना धोना क्यों?
6: तुम मत लोग होते ही बेवफा हो, बस सिर्फ इस पल के जीने को जीना समझते हो। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे साथ जीने के ख्वाब देखे हैं, लेकिन पिताजी के इस ट्रांसफर ने मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए।
5: घबराओ नहीं उषा, भगवान ने चाहा तो ये ट्रांसफर जरूर रुक जाएगा और तुम्हारे ख्वाब चकनाचूर होने से बच जाएंगे। तुमने सुना नहीं, सच्चे प्रेमियों की आहो पुकार में बड़ी शक्ति होती है। आओ हम और तुम मिलकर भगवान से प्रार्थना करें कि वो दो दिलों को टूटने से बचा ले और इस ट्रांसफर को रुकवा दे।
6: राकेश, भगवान हमारी सुन लेंगे।
5: अगर प्यार हमारा सच्चा है तो
6: मेरा तो बिल्कुल सच्चा है। हा?
5: और मेरे प्रेम पर कोई संदेह है तुम्हें?
6: संदेह ना करूं तो और क्या करूं? हम लोग इतनी विपता में फंसे, तुमसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा होने का खतरा है और तुम सिर्फ भगवान से प्रार्थना करने को कहते हो।
5: हाँ हाँ, उसकी दो वजह है, एक भगवान की शक्ति अपरंपार है और दूसरे उसके सेवा में कर ही क्या सकता हूँ। मैं किसी बड़े आदमी का बेटा नहीं हूँ जो इस ट्रांसफर को रुकवा सकूं।
6: मुझे पहले पता होता तो मैं ये भूल कभी ना करती।
5: कैसी भूल उषी?
6: किसी कवि की बजाय किसी बड़े आदमी के बेटे से प्रेम कर।
5: हाँ, तो अब भी क्या बिगड़ा है, जाओ ढूंढ लो कोई।
6: तुम जानते हो ना, कोई शरीफ लड़की बार बार प्रेम नहीं कर सकती, इसीलिए ऐसा कह रहे हो।
5: उषा चुप करो, चुप कर जाओ मेरी प्यारी, मेरी जान से दुलारी, अब चुप कर जा। जुदाई के वक्त तो रोना ही रोना है, कुछ आंसू उस वक्त के लिए मैं बचा के रखू। मैं वचन देता हूँ, अगर तुम आगरे चली गई तो मैं संडे के संडे तुमसे मिलने वहां आया करूंगा।
6: आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, मुझे यकीन है मेरे जाते ही तुम मुझे भूल जाओगे।
5: उषा, अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि मैं तुम्हें भूल गया हूं
6: तो
5: तुम भी मुझे हमेशा के लिए भुला देना।
6: मैंने तुमसे प्रेम भूलने के लिए नहीं, तुम्हें पाने के लिए किया है। सुनो, मुझे एक तरकीब समझ में आई है।
5: क्या?
6: हम शादी कर ले।
5: ये कैसे हो सकता है?
6: बारात लाकर, बाजे बजाकर।
5: नहीं, मेरा मतलब है, मेरे माँ बाप तैयार हूँ,

0: तुम्हारे माँ बाप माने तो
1: मैं कह दूंगी अपने पिताजी से, या तो अपनी ट्रांसफर रुकवाए या दिल्ली छोड़ने से पहले मेरी शादी तुम्हारे साथ करते जाए। बस मैंने फैसला कर लिया है।
2: सुना आपकी बेटी क्या कह रही है?
3: क्या बात है?
2: कहती है अगर ट्रांसफर ना रुकी तो वो यहाँ किसी से शादी कर लेगी।
3: लेकिन मैंने तो अभी उसकी शादी कहीं तय नहीं की।
2: राम जाने क्या उल जलूल बक रही है।
3: हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है मेरी। जरा सा संकट आया तो सारा परिवार ही मेरी जान का दुश्मन हो रहा है।
4: इस छछुंदर की अकल तो मैं ठिकाने लगा दूंगा। आप जल्दी से जाइए, घनश्याम जी से मिलिए।
3: घनश्याम जी?
4: ओफो पिताजी, समझा कीजिए। लीडर यूनियन का हो या देश का, उसके साथ जी लगाया ही जाता है।
3: जी
4: जी।
5: आज 19 जून है और सुबह सवेरे ही मिस्टर शर्मा चले हैं यूनियन लीडर घनश्याम जी से मिलने।

0: अरे आइए आइए बड़े बाबू, धन्य भाग हमारे, आपके चरण हमारी कुटिया पर पड़े। आपने कष्ट क्यों किया? सेवक को बुला भेजा होता।
1: अरे तुमने मुझे पहचान लिया घनश्याम जी?
0: क्या बात करते हो बड़े बाबू, 15 साल पहले मेरी पोस्टिंग आपके ही दफ्तर में तो थी। क्यों,
1: मुझे तो याद है, पर बहुत वक्त गुजर गया था इसलिए मैंने सोचा कि शायद।
0: क्या पियेंगे आप, ठंडा या गर्म? अरे सुनती हो, जरा देख तो कौन आया है, जरा शरबत वरबत तो
1: नहीं
0: लेकर
1: नहीं
0: के आ।
1: नहीं उसकी जरूरत नहीं है,
0: हाँ?
1: मुझे जरा जल्दी ही वापस भी जाना है। हाँ वो मैं अपने एक निजी काम से आया था।
0: हुक्म दें।
1: वो ऐसा है कि मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए हैं।
0: ट्रांसफर और आपकी? राम राम राम, ये किस दुष्ट का काम है?
1: ट्रांसफर जिस किसी ने भी किया है वो खुद ही भुगतेगा। हाँ तो बात इतनी सी है कि किसी तरह अगर ये ट्रांसफर रुक जाए तो।
0: किसी तरह से क्या बड़े बाबू, हर तरह से ये ट्रांसफर रुक नहीं होगी, आप बिल्कुल फिक्र न करें। मैं आज ही ऊपर जाता हूं और ये ट्रांसफर रुकवाता हूं। अगर सीधी तरह नहीं माने तो परसों से स्ट्राइक, फिर नहीं माने तो हंगर स्ट्राइक, जनरल स्ट्राइक।
2: यहाँ क्यों खड़ा है?
1: कुछ नहीं, वो
2: इस जुलूस के साथ है?
1: नहीं नहीं मैं तो अपने काम से जा रहा हूँ।
2: तो भैया जाओ जाओ अपने काम पर जाओ, खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो?
1: हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। मैं ये गया कि भाई साहब ये मिस्टर घनश्याम जी का क्वार्टर।
3: वो सामने जहाँ बहुत से लोग बैठे हैं।
1: धन्यवाद
2: धन्यवाद।
1: कहिए।
0: कहिए क्या बात है
1: जी? वो घनश्याम जी का निवास।
0: ठीक है बोलिए।
1: उनसे मिलना है।
0: अपॉइंटमेंट लिया है?
1: नहीं अपॉइंटमेंट तो नहीं लिया।
0: फिर मुश्किल है, किसी और रोज आना।
1: लेकिन काम बहुत जरूरी था।
0: बिना जरूरी काम के तो यहाँ कोई आता नहीं। घनश्याम जी इस वक्त एक उपमंत्री जी से टेलीफोन पर बातचीत कर रहे हैं, इसके बाद 2 MP उनसे मिलने के इंतजार में, और फिर वह दूसरी यूएन के सेक्रेटरी साहब भी आए हुए हैं।
1: कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर इंतजार कर लूंगा।
0: आपका नाम?
1: HP शर्मा।
0: ठीक है बाहर लान पे बैठ जाइए, मौका मिला तो बुला लूंगा।
1: थैंक यू। सुनिए यहाँ एक गिलास पानी मिलेगा?
0: इधर पीछे नल है।
1: थैंक यू।
0: मिस्टर शर्मा अंदर आइए।
1: थैंक यू। नमस्कार घनश्याम जी।
4: आइए रतनलाल जी, कहिए।
1: जी मैं HP शर्मा।
4: हाँ काम बताइए।
1: घनश्याम जी बहुत अनर्थ हुआ है मेरे साथ।
4: वही तो पूछ रहा हूँ
1: जी। मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए हैं 17 जून को सुबह 10:29 पर, जब मैं दफ्तर में।
4: साल में कितनी बार होती है ऐसी ट्रांसफर?
1: 25 साल में पहली बार, पूरे 25 साल बाद।
4: तो फिर अनर्थ कैसा?
1: लेकिन जब इतने साल नहीं किया तो अब क्यों?
4: भाई वो तो सरकार की मर्जी है।
1: लेकिन हमारी मर्जी भी तो उन्हें पूछनी चाहिए थी, अगर आप चाहें तो।
4: देखो रतनलाल
1: जी HP शर्मा हूँ। HP शर्मा, देखिए 15 साल पहले आपकी पोस्टिंग मेरे ही डिपार्टमेंट में।
4: ठीक है आप ऐसा कीजिए, अपनी रिप्रेजेंटेशन मेरे पास छोड़ जाइए, मैं देख लूंगा।
1: लेकिन रिप्रेजेंटेशन तो मैं लिखकर नहीं लाया हूँ
4: जी। बड़े अजीब आदमी है आप भी। रिप्रेजेंटेशन

0: साथ तक नहीं लाए?
1: मैंने सोचा आपसे जवानी
2: अरे साहब, इतनी बड़ी यूनियन का पूरा बोझ है मेरे कंधों पर, जरा सोचिए जुबानी में क्या क्या याद रख सकता हूँ।
1: वो मैं अभी लिख लाता हूँ।
2: उधर बाहर बाबू को दे दीजिए। जी सुनती हो?
1: नहीं नहीं पानी पानी का कष्ट न करें मैं।
2: ओहो, हमारी यूनिफॉर्म भिजवा दो, दफ्तर को देर हो रही है।
3: जिस दौड़ धूप में 17, 18 और 19 जून गुजरे, उसी दौड़ धूप में 20 जून भी गुजर गई। लेकिन शर्मा जी को अपनी समस्या का अभी तक कोई हल नजर नहीं आया। दिन भर शर्मा जी इस दफ्तर से उस दफ्तर की खाक छानते रहे। उषा शर्मा राकेश का हाथ पकड़ पकड़ कर शादी के लिए मनाती रही। शादी न हुई तो अपनी जान दे देने की धमकी देती रही। उधर कृष्ण कुमार सिगरेट पे सिगरेट फूंक सारी दुनिया फूंक डालने की तरकीबें सोचता रहा। मिसेस शर्मा हर तरह से मिस्टर शर्मा को यकीन दिलाने लगी कि ये मामला अब इंसान के बस से बाहर हो चुका है, इसे अब या तो सिर्फ भगवान या भगवान का कोई पहुंचा हुआ भगत ही हल कर सकता है, यानी नक्षत्र बाबा को बुलवाकर यज्ञ करवाया जाए। विनय हर शाम मिस्टर शर्मा को अपने दोस्त के डैडी से मिलने के लिए तैयार करता रहा।
4: आइए आइए मिस्टर शर्मा, मैं तो कई दिनों से आपके आने की राह देख रहा था। वो विनय ने बताया था मुझे कि
1: आना तो था, बस
4: ऐसे मामलों में देर नहीं करनी चाहिए। वैसे आजकल आपके मिनिस्टर कौन है?
1: जी वो मिनिस्टर तो, लेकिन ऑर्डर्स तो किसी अफसर ने।
4: नो नो नो, मैं ये अफसर अफसरों को मुंह बिल्कुल नहीं लगाता। यू नो आई कीप ओनली टॉप कॉन्टेक्ट्स।
1: जी
4: आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, आपका काम हो जाएगा। आप मुझे जरा तमाम डिटेल्स लिखकर दे दीजिएगा, मैं आज ही आदमी काम पर लगाता हूँ। यू नो अंग्रेजों का जमाना इस लिहाज से बहुत अच्छा था, रिश्वत देकर सब काम हो जाते थे। लेकिन अब आजकल तो ये सब चलता नहीं है, बस कॉन्टेक्ट की बात है।
1: जी
4: कॉन्टेक्ट मैं करूँगा, आप सिर्फ डिटेल्स दे दीजिएगा। बाकी जो हमारे आदमी इधर उधर जाएंगे उनके खर्चे वगैरह के लिए, वो आप ऐसा कीजिए कि अभी कोई 5,000 रुपये छोड़ जाइए, बाकी खर्चा मैं कर लूँगा, बाद में आता रहेगा।
1: 5,000?
4: हाँ बस मेरा ख्याल है कि इतना ही खर्चा और आएगा।
1: वो तो
4: क्या किया जाए,
1: वो तो ठीक है, लेकिन मेरे पास तो इतना पैसा।
4: अरे शर्मा जी ये कोई खर्चा थोड़े ही है, ये तो इन्वेस्टमेंट है। इस सीट पर रहेंगे तो कई 5,000 आ जाएंगे।
1: ना ना ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई सीट नहीं है ये।
4: तो फिर ट्रांसफर से परेशान क्यों है?
1: मुझे मैं अपने घर से बेघर हो जाना नहीं चाहता। देखिए ना मेरा सारा घर बर्बाद हो रहा है, सारा परिवार बिखर जाएगा।
4: अम्बक ऐसा कुछ नहीं होगा, वैसे आपकी मर्जी है। बात यह है शर्मा जी कि मेरा बिजनेस ही पब्लिक रिलेशंस का है। आपका ये काम 1,500 में हो सकता होता तो ना मांगता, लेकिन खर्चा तो 10,000 हो सकता है। अब इतना पैसा मैं भी कहां से, आप ही सोचिए।
1: आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बस में होता तो इस ट्रांसफर को रुकवाने के लिए 20,000 भी खर्च कर डालता, लेकिन क्या करूं, सारी जिंदगी की जमा पूंजी भी इतनी नहीं कि 5,000 खर्च कर सकूं।
4: ओह आई सी, अरे मैं तो भूल ही गया था, आपके लिए ठंडा मंगवाऊं?
1: नहीं नहीं बस शुक्रिया, फिर कभी हाजिर हो जाऊंगा।
4: आपका अपना ही घर है, वैसे कभी कोई काम हो तो बिना झिझक चले आइएगा। कॉन्टेक्ट मांगने में मुझसे बेहतर आपको कोई ना मिलेगा।
1: नमस्कार।
4: नमस्कार।
5: नक्षत्र बाबा कह रहे थे बड़ा ही अच्छा मुहूर्त निकला है यज्ञ का।
1: यज्ञ तो ठीक है पर पीछे ये हलवाई वगैरह।
5: 201 ब्राह्मणों का भोज करवाना है यज्ञ के बाद।
1: 201 ब्राह्मणों का?
5: हलवा पूरी समेत कुल 7 पकवान पकेंगे। वो तो कह रहे थे वनस्पति में बनवा लो, पर मेरा मन नहीं माना, देवताओं का यज्ञ है, यहाँ कंजूसी कैसी। मैंने देसी घी के भी कनस्तर मंगवा लिए।
1: मगर इतना पैसा
5: आए तो कौन सा अभी दे देना है, जब तनख्वाह आएगी हिसाब चुका देंगे।
6: पिताजी कोई आपसे मिलने आए?
7: अरे भाई जिजमान आओ आओ, पूर्ण आहुति का समय हो गया है।
1: जो भी हो उसे बैठाओ, मैं यज्ञ करवा लूँ।
5: नक्षत्र बाबा मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है, आप भी यज्ञ में कोई कमी ना छोड़े, ये ग्रह तो किसी तरह टलना ही चाहिए।
7: कैसी बातें करती हो देवी, नक्षत्र बाबा के यज्ञ कभी निष्फल नहीं जाते।
5: बाबा ग्रह टल जाएंगे ना।
7: भाई अन्य महात्मा संत ग्रहों से प्रार्थना कर अपने जिजमानों के काम निकलवाते हैं, लेकिन नक्षत्र बाबा अपने योग बल से ग्रहों के ऑर्बिट बदल डालते हैं। ऑर्बिट

0: पीठ का मतलब समझती है न देवी?
1: मैं समझता हूँ महाराज।
0: तो ये भी समझ ले हर प्रसाद कि तेरी जगह आने वाले दुष्ट के नक्षत्र बहुत बलवान हो रहे थे। हमने अभी अभी अपनी तपस्या के योग बल से देखा।
2: सच बाबा?
0: हाँ, देवी को बताया था हमने कि कर 1.5 तोले सोने का दान।
2: 1.5 तोला सोना?
0: देवी के दान करते ही अपने यज्ञ बल से हमने दुष्ट के ग्रहों के और भी ऊपर नीचे कर डाले।
2: राजवंती, 1.5 तोला सोने का दान?
3: ये वक्त क्या सोने का मुंह देखने का है बाबा? अब तो ट्रांसफर रुक जाएगी ना?
0: अवश्य रुक जाएगा, अवश्य रुक जाएगा।
2: सच कह रहे हैं आप?
0: अरे, ग्रहों के ऑर्बिट बदलते ही वो दुष्ट अपनी बुद्धि खो बैठेगा, फिर रास्ता खो बैठेगा, और फिर भी अगर उसने इधर आने की हिम्मत की तो छिन्न भिन्न हो जाएगा। बोलो, जब चार्ज लेने वाला ही नहीं आएगा तो चार्ज देने वाला कहाँ जाएगा?
2: धन्य हो बाबा, धन्य हो।
4: माजी, माजी, माजी,
5: क्या बात है? ऐसा परेशान क्यों हो रहे हो?
4: माजी, पूरे 200 ब्राह्मण तो जीन चुके हैं, परंतु 201 ब्राह्मण नहीं मिल रहा है और मुहूर्त निकलता जा रहा है।
5: हाय भगवान, ये कैसा अपशकुन है? अब क्या होगा?
6: मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ?
7: पिताजी, ये आपसे मिलने आए थे।
2: ओह, आप क्या?
6: 100% ब्राह्मण, चंद्रकांत यादव।
5: तेरी महिमा अपरंपार है भगवान, क्या समय पर ब्राह्मण भेजा है। जाओ बेटा, ले जाओ इन्हें और आदर सम्मान के साथ भोज करवा।
7: आइए चंद्रकांत जी।
5: देखा आपने, आज का दिन कितना शुभ है, हर कार्य अपने आप संपन्न हो रहा है। एक ब्राह्मण कम हो गया तो मानो स्वयं भगवान ब्राह्मण का रूप धर कर मेरे घर में आए हैं।
2: चंद्रकांत, चंद्रकांत यानी सीके यादव? नहीं नहीं नहीं, ये चंद्रकांत
5: क्या ब्राह्मण नहीं?
2: सीके यादव है
5: तो क्या ब्राह्मण?
2: हमारे लिए भगवान नहीं, यमदूत है। यमदूत?
5: क्या कह रहे हैं आप?
2: ये हमारे लिए यमदूत है, ये वही है, वही है। नक्षत्र बाबा तो कहते थे कि छिन्न भिन्न हो जाएगा, रास्ता भूल जाएगा। अरे, ये दुष्ट तो साक्षात घर में आधम का और भोजन भी खा गया।
5: ये क्या कह रहे हैं आप?
2: यही है वो चंद्रकांत यादव, यानी सी के यादव, जिसने कल मुझसे चार्ज ले मुझे यहाँ से रिलीव करना है। बस लाजवंती, अब राम नाम ही बोलो, अंतकाल आ गया।
5: राम, कैसा अंधेर है। अरे, कोई नक्षत्र बाबा को तो बुला के लाओ जल्दी से।
4: नक्षत्र बाबा तो जीम कर कभी के जा भी चुके।
5: आइए आइए, यज्ञ भोज दान दक्षिणा सब व्यर्थ हो गया, सब व्यर्थ हो गया।
7: अब रोने धोने से क्या फायदा माँ?
6: बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर शर्मा। ये क्या हुआ, आप लोग इस कदर उदास क्यों हैं?
5: अब हम तो चंद घड़ियों के ही मेहमान हैं।
6: लेकिन हुआ क्या है मिस्टर शर्मा?
7: खा पी कर कितना भोला बनता, पहले मालूम हो जाता कि तुम कौन हो तो हलवे पूरी के बजाय किसी और तरह से तुम्हारी खातिर करते।
6: लेकिन मेरा कसूर क्या है, मैंने किया क्या है?
7: तो सच सच बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो?
6: आप तो जानते हैं मिस्टर शर्मा, मैं इंदौर से आया हूँ और कल मुझे आपसे चार्ज लेना है।
5: तुम सचमुच आ गए हो?
6: क्या मुझे नहीं आना चाहिए था?
8: कहाँ के रहने वाले हो?
6: इंदौर का।
8: और तुम्हारे पिताजी?
6: इंदौर के।
8: और तुम्हारे दादा?
6: दादा, परदादा और लकड़ दादा सभी इंदौर के।
8: फिर भी तुम मुंह उठाए यहाँ चले आए?
6: लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, सरकारी नौकर हूँ, जहाँ भी ट्रांसफर होगा जाऊँगा।
8: इसलिए कि तुम लोगों का अपनी धरती अपनी सभ्यता से कोई लगाव नहीं है। अगर जरा भी मान सम्मान वाले होते तो अपने पूर्वजों का घर छोड़ने से पहले अपने प्राण दे देते।
5: और यमदूत की तरह यहाँ आके हमारा घर बार न उजाड़ देते।
6: लेकिन मैंने किसका घर बार उजाड़ा है?
9: किसका नहीं उजाड़ा है पिताजी, पिताजी अब क्या होगा?
8: जाने का समय आ गया है बेटा।
7: सब तरकीबें नाकाम हुई, कुछ भी न वफा ने काम किया।
9: जाने से पहले मेरे हाथ तो पीले करते जाइए, आप ना हुए तो कन्यादान कैसे होगा पिताजी?
7: फिक्र ना करो उषा, बहन दान का कर्तव्य मैं निभा दूंगा।
6: बट पिताजी, आई कांट गो टू आगा विद यू।
8: ठीक ही कहते हो बेटा, इस संसार में कौन किसके साथ गया है।
6: दिल्ली से आगरा 100-125 मील का फासला भी नहीं शर्मा जी, इस मामूली से ट्रांसफर से आप इस कदर परेशान हैं?
8: सारा परिवार तबाह हो गया है, घर से बेघर हो गया हूँ और तुम इसे मामूली सा ट्रांसफर कहते हो? तुम उन लोगों में से हो जिन्हें अपनी सभ्यता, अपनी धरती, अपने घर से कोई लगाव नहीं। तुम लोग अपनी धरती माँ से अपना संबंध तोड़ चुके हो।
6: शायद आप ठीक ही कहते हैं, लेकिन आज चौथाई इंच की जड़ों वाली दूब

0: धरती से चिपके रहने का युग नहीं, आज मॉडर्न युग है। मॉडर्न युग में रहने के लिए जब हमने सूती कपड़े छोड़ प्लास्टिक के कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं शर्मा जी, तो अपना जीवन प्लास्टिक की घास होना चाहिए, यहां उखड़े वहां लगे, सदा हरी भरी।
1: प्लास्टिक की घास कहां मिलती है पिताजी?
2: चंद्रकांत जैसे बेवकूफों के सर पर।
3: 22 जून साल का सबसे लंबा दिन चढ़ चुका था। सुबह के 6 बजे थे। लोधी रोड के क्वार्टर नंबर F2 15/614 के सामने एक 3-व्हीलर खड़ा था, जिसमें मुख्तसर सा सामान रखा जा रहा था। HP शर्मा सिर झुकाए बाहर निकले। सारा परिवार गुमसुम उन्हें नई दिल्ली स्टेशन के लिए रवाना होते हुए देख रहा था। लाचार बेबस शर्मा जी ने बड़ी हसरत से क्वार्टर पर लगी अपनी छोटी सी नेम प्लेट की तरफ देखा और 3-व्हीलर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए।

0: प्लास्टिक की घास, इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग अभी आप सुन रहे थे। सुरेंद्र गुलाटी के लिखे इस नाटक के निर्देशक थे दीना नाथ। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती।
5: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम विविध भारती। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
6: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई के आईआईटी मद्रास में आयोजित कार्यक्रम में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के उद्घाटन को ऐतिहासिक अवसर बताया। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं दैनिक यात्रा को आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में सहायता करेंगी।
7: दिस इज अ हिस्टोरिक डे फॉर तमिलनाडु। टुडेज प्रोग्राम इन्वॉल्व्स प्रोजेक्ट्स worth 13,000 crore rupees. We are inaugurating many completed projects and laying foundations for new ones. Some will make daily travel easier. Others will strengthen industry and trade. Together, they will create jobs for young people across Tamil Nadu. I congratulate the people of the state on this occasion.
6: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान उन्हें पूर्व मुख्यमंत्रियों ओ पन्नीरसेल्वम, एडपड्डी के पलनीसामी और एम के स्टालिन के साथ भी काम करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि सरकारों में बदलाव के बावजूद तमिलनाडु के विकास और वहां के लोगों के कल्याण के लिए उनकी प्रतिबद्धता में कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के सहयोग से इस यात्रा को जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के मंदिरों, वैज्ञानिक संस्थानों और मेट्रो रेल नेटवर्क का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ चल सकते हैं। प्रधानमंत्री ने राज्य के लोगों को नवरात्र की बधाई भी दी। इससे पहले दिन में श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वडापलानी हिस्से का उद्घाटन किया। हाल ही में आरंभ दूसरे चरण के कॉरिडोर के 4 अंग हैं। इसमें लगभग 15 किलोमीटर में फैले 11 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन हैं। प्रधानमंत्री इस समय तमिलनाडु के जय गोपाल गरुड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग ले रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित लोगों को अवैध हिरासत में न लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा भी निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा। भारतीय जनता पार्टी ने सांसद और प्रोफेसर बिमोल अकोइजम के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर कांग्रेस की आलोचना की है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद बिमोल अकोइजम की सेवाएं समाप्त कर दी थीं। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने सांसद के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और तत्काल निलंबित करने की मांग की। सऊदी अरब ने बताया है कि किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई है और 309 अन्य घायल हुए हैं। मृतकों में 4 सऊदी और 8 विदेशी नागरिक हैं। विदेशी मृतकों में बांग्लादेश के 2, अमरीका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, फिलिस्तीन और सूडान का 1-1 नागरिक है। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मंत्रालय ने कहा कि आम नागरिकों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। भारत ने संप्रभुता की रक्षा के लिए सऊदी अरब की जनता और सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त की। भारत ने आशा व्यक्त की कि क्षेत्र में शीघ्र ही सामान्य स्थिति बहाल हो। दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पुष्टि की है कि तेल टैंकर MTJM नंबर 2 पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 22 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। यह घटना रास अल खैमा के तट के पास जहाज में आग लगने के बाद हुई। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने के बाद तटवर्ती बस्तियों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। आज तड़के जलस्तर बढ़ने से कई मकान बह गए। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से इंदौर में खेला जाएगा। 5 मैच की श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 से बराबरी पर हैं। उदयवीर सिद्धू ने मिस्र के काहिरा में राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उदयवीर ने फाइनल में कुल 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम विविध भारती।
8: नहीं नहीं ऐसे नहीं, जगदीश खन्ना, उत्तम सिंह।
9: अच्छा,
8: म्यूजिक एक्टर। मैंने कहा पा पा मत तो बड़े भाई। मैंने कहा पा यू हैव टू गिव मी टाइम। क्यों? मैंने कहा नहीं, मुझे आप टाइम दीजिए सोचने का।

0: अच्छा ले लो। तो मैं बहुत बिजी था, मेरा काम सुबह शाम काम था मेरा। तो 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गए, मैंने कोई जवाब ही नहीं दिया। हर चौथे दिन जगदीश आ जाए और उससे बुला रहे हैं। मैंने कहा यार देख रहे हो कैसे काम कर रहा हूँ मैं, सब काम चल रहा है। महीना बीत गया, वो महीने में कम से कम 6-7 दफ़ा 8 दफ़ा ये आ गया जगदीश। तो एक दिन मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो डैडी के पास बैठा मैं। मैंने कहा डैडी ऐसी ऐसी ऑफर आई है। क्या ऑफर है? मैंने कहा ऐसे ऐसे वो पिक्चर बना रहे हैं VIP,
1: मनोज जी का बैनर VIP,
0: राज कपूर VIP, मतलब
1: जी
0: इंडस्ट्री के टॉप बैनर
1: जी,
0: इनसे ऊपर कोई है ही नहीं। तो वो चाह रहे हैं कि मैं म्यूजिक एक्टर बनूं लेकिन जगदीश खन्ना के साथ बनूं। जगदीश खन्ना ट्यून बनाएगा और मैं अरेंजमेंट करूंगा। तो मैंने ये बात मनोज, मैंने कहा मनोज जी मैं तो अरेंजर हूँ, आप मुझे क्यों म्यूजिक एक्टर बना रहे हैं? बोलते लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी म्यूजिक एक्टर हैं, लक्ष्मी जी ट्यून बनाते हैं और प्यारेलाल जी अरेंजमेंट करते हैं। ऐसे ही तुम जगदीश के साथ, जगदीश का ट्यून बनाएगा और तुम अपना जो काम करते हो वो करो, लेकिन तुम दोनों का नाम आए। तो ये बात मैंने जाके डैडी को कही। तो डैडी बोलते हैं तुमको क्या लगता है? मैं कहा नहीं नहीं आप बताइए। मतलब देखो म्यूजिक डायरेक्टर बनना है तो ये लास्ट स्टेज है, मतलब ये लास्ट सीढ़ी है जहाँ पे लोग म्यूजिक खत्म होते हैं, वहां से तुम शुरू कर रहे हो।
1: जी जी।
0: और अगर नहीं बनना तो मना कर दो, तुम काम तो कर ही रहे हो। मैंने कहा आपकी क्या इच्छा है?
1: वाह।
0: बोलते मैं तो चाहता था कि तुम म्यूजिक डायरेक्टर बनो। तो मैंने कहा आपने मुझे ये बात कभी बोली नहीं। बोले कभी मौका ही नहीं आया। आप तो मुझे म्यूजिशियन बनना चाहते, तो आपने देख लिया, अरेंजर भी आपने देख लिया, तो म्यूजिक डायरेक्टर बनने के लिए आपने बोला क्यों नहीं? बोलते नहीं ऐसा कभी मौका ही नहीं आया, आज मौका आया तो बोल रहा हूँ तुमको कि मैं चाहता हूँ तो कि तुम म्यूजिक डायरेक्टर बनो।
1: ये पिताजी की बात है?
0: पिताजी की बात। तो मैं कहा हाँ बोलता हूँ। हाँ बोल दो। फिर मैं गया मनोज जी के पास 1.5 महीने के बाद।
1: जी जी।
0: 1.5 महीने के बाद जाके मैंने बोला कि मैं करता हूँ। तो पहला गाना हमारा रिकॉर्ड हुआ पिंटर बाबू का, तू रख ले नाम, रख ले नाम, मुकद्दर सिकंदर होता है हाँ, हाँ वक्त सिकंदर नहीं होता, ऐसा कुछ गाना है
1: राधा हाँ,
0: जी का और महेंद्र कपूर का
1: हाँ,
0: उसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट शायद 100 के ऊपर म्यूजिशियन था और 30-40 कोरस था।
1: ओहो।
0: हमने सुबह 9 बजे शुरू किया और 5 बजे तक गाना खत्म हुआ। लता जी महेंद्र जी चले गए और हम लोग रात को 2 बजे वो गाना खत्म हुआ।
1: क्या बात है।
0: हम कुछ भी रख ले नाम उसका,

0: सकते हैं। इस फिल्म के दो तीन गाने बड़े हिट हुए थे,
1: बड़े हिट हुए
0: जिसमें से कब तलक शम्मा जली,
1: ये पूरी कंपोजिशन
0: थोड़ा हमारे लिए गाइए ना सर ये गाना।
2: तो हमने पेंडर बाबू शुरू की, तो पहला गाना
0: वो किया,
2: वो रिकॉर्ड किया के वक्त सिकंदर होता है
0: जी।
2: उसके बाद कतिल सफाई जी का गाना लेके आए ये मनोज साहब, और मुझे जगदीश ने गाना सुनाया
0: जी।
2: मैं और ये है गजल
0: बिल्कुल,
2: और इसको
0: गाने की शक्ल
2: गीत में गाना देना।

0: फिर आता है,
1: ब्रेक आता है फिर आता है, और फिर इसके अंतरे, और फिर इसमें, और बहुत बड़ा गाना था, चार अंतरों का गाना था।
0: जी जी,
1: मैंने कहा मनोज साहब चार शेर है, एक शेर कम करें ना, तुम
0: कुछ हटेगा
1: लाजवाब शेर है
0: जी,
1: इनको कम नहीं कर सकते।
0: और अदायगी भी कमाल थी, कमाल थी। कपूर,
1: फिर देखिए फिर अपना हमने पूरे चार के चार अंतरे रखे, चारों के चारों म्यूजिक देखिए कितना डिफरेंट है। कहीं क्लैप बज रही है, कहीं चुटकियां बज रही है, कहीं घुंघरू बज रहा है, कहीं सारंगी बज रही है, कहीं वायलिन बज रहे हैं, कहीं लता जी का आलाप है। विद म्यूजिशियन वन टेक है ये गाना,
0: क्या बात है,
1: छह साढ़े छह सात मिनट का गाना है।
0: जी जी जी,
1: और आप उसको सुनोगे तो आपको लगेगा कि यार बहुत म्यूजिशियन है इसमें तो।
0: हाँ,
1: खाली मेरे कहने से नहीं, आप गाना सुनो आपको लगेगा कि यस म्यूजिशियन बहुत है।
0: जी जी जी।

0: यहां से एक संगीतकार की जर्नी शुरू हुई।
1: बिल्कुल, और ये तय कैसे हुआ कि नाम जगदीश उत्तम होगा या उत्तम जगदीश होगा?
0: वो उन्होंने कर दिया अपने आप,
1: मनोज जी ने कर दिया उत्तम जगदीश,
0: उत्तम सिंह जगदीश करना, बाद में उत्तम जगदीश हो गया वो।
1: अच्छा,
0: शॉर्ट। अच्छा। बहुत हलचल मच गई थी। और मैं आपको बताऊं कि जब ये गाना बाहर गया है कब तक क्षमा जली
1: जी,
0: तब कोई बहुत बड़ी डांसर थी उस टाइम, उन्होंने बोला क्या गाना है, बड़े मिजर्टर ही होते हैं।
1: ओहो,
0: उनको लगा कि ये शायद किसी और बड़े मिजर या एलपी का गाना या किसी और का गाना।
1: हाँ हाँ।
0: तो उन्होंने कहा ये नए मिजर्टर है, ऐसा गाना नए मिजर्टर, मिजर्टर नहीं थे लेकिन पीछे अरेंजर तो पुराना था ना
1: जी,
0: अरेंजर को तो सालों साल बीत गए थे अरेंजमेंट करते हुए। तो यहाँ पे हमारे लिए एक बात फैलाई गई।
1: क्या?
0: हमारे लिए फैलाई गई ये बात कि कंपोजर तो बहुत अच्छे हैं, गाने भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन महंगे बहुत हैं।
1: ओ, मतलब कहीं ना कहीं कोई अड़चन पैदा करनी है।
0: महंगे बहुत है, मतलब उनकी रिकॉर्डिंग जो है वो सुबह शुरू होती है, रात को 2 बजे खत्म होती है।
1: जी जी,
0: महंगे बहुत है। मेरे को तो इन चीजों का कभी लाइफ में फर्क नहीं पड़ा, किसी ने महंगा बोला किसी ने कुछ बोला, हम अपना काम करते चले गए और आज भी काम कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल।

0: बिल्कुल।
1: तो मनोज जी वॉज वेरी हैप्पी विद म्यूजिक, और म्यूजिक बहुत हिट हुआ था इसका।
0: इसका एक और गाना मैं याद करना चाहता हूँ, जब याद की बदली
1: छाती, जब याद की बदली छाती
0: तो आंख मेरी भर आती है।
1: तो मुझे उन्होंने गाना सुनाया जब याद की बदली छाती है, इतना का वाह वाह वाह क्या बात है। क्योंकि उन दिनों में उनके गाने फिल्मों में एक सैड गाना होते ही था, और वो बरसात का गाना सैड गाना। तो जब जगदीश ने सुनाया मुझे गाना, मैं कहा जगी बहुत अच्छा तुम्हारा कंपोजिशन। तो कंपोजिशन ऐसी थी, जब याद की

0: इतने बुखड़ा है
1: जी,
0: बाकी अंतरे हैं, बुखड़ा इतना ही है
1: बिल्कुल।
0: और इसमें वायलिन सोलो आप सुनेंगे वो भी मेरी बजाई हुई है,
1: बहुत शानदार एकदम गाढ़ा वायलिन,
0: गाढ़ा वायलिन। और इस गाने को इतना अच्छा उन्होंने पिक्चराइज किया था, तो क्यों ना हम अपने दोस्तों को ये गाना सुनाए।
1: जरूर बिल्कुल सुनते हैं।

0: एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है उत्तम जगदीश की जोड़ी की, वो है रविंद्र पीपट की फिल्म वारिस।
1: वारिस, यस, ये 1986 की फिल्म है।
0: जी
1: 84 में ये फिल्म मुझे क्यों मिली थी, क्योंकि इन लोगों की, इस ग्रुप की, पीपट के ग्रुप की एक फिल्म आई थी चन प्रदेशी पंजाबी। सुपर, पंजाब की बहुत बड़ी
0: सुपर हिट फिल्म थी,
1: जैसे नानक नाम जहाज,
0: जी,
1: चन प्रदेशी, ये उस कैटेगरी की। उसका काम सारा अरेंजमेंट भी मैंने किया था, सुरेंद्र कोहली का म्यूजिक था और बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने किया था।
0: अच्छा,
1: उसमें बकायदा आपको नाम मिलेगा उत्तम सिंह
0: जी जी,
1: बैकग्राउंड म्यूजिक का। तो वहां से वो ग्रुप जो है वो मेरे पहचान में आ गया और वो मुझे पसंद करने लग पड़ा
0: जी।
1: तो उन्होंने वारिस शुरू की, तो वारिस के लिए मेरे पास उन्होंने आए थे।
0: और ये पूरी पंजाबी पृष्ठभूमि की,
1: पूरी पंजाबी, हाँ,
0: स्मिता पाटिल और राज बब्बर
1: की फिल्म थी वो, और उसके गाने आज भी चल रहे हैं।
0: इसमें आपने एक बड़ा कमाल किया था, एक व्यक्ति को गायक बना दिया था,
1: मनमोहन सिंह
0: जी, जो कि
1: कैमरामैन थे। यस,
0: ये बताइए,
1: कैमरामैन थे। क्या हुआ कि ये गाना जो है ना, दीदी का, लता जी का गाना
0: जी,
1: मेरे प्यार की उम्र हो इतनी, कितना ऊपर है और कितनी ईज लग रहा है।
0: जी जी जी जी,
1: क्या लोग थे,
0: क्या बात है।
1: तो ये मैं गाना सुना रहा था, ये ऐसा था कि ये गाना रिकॉर्ड कैसे हुआ कि हम लोग कुछ बैठ के काम कर रहे थे, दीदी का मैसेज आया
0: जी, लता
1: कल, हाँ, कल सुबह स्टूडियो खाली है, मेरी रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई है, तुम चाहो तो गाना कर सकते हो। क्योंकि मैं इस गाने के लिए एक महीने से उनके पीछे पड़ा हुआ था। सामने से मैसेज आया कि गाना कर लो, तो गाना सिर्फ मुखड़ा बना था, बस
0: सिर्फ इतना, मेरे प्यार की उम्र हो
1: मेरे सर। फिर उनको अपना बुलाया, अपना वर्मा मलिक जी को
0: जी,
1: ताकि आदमी लेके, उन्होंने फोन तो हुआ नहीं करते, फोन तो मोबाइल थे नहीं, बुलाया उनको, बैठे हम लोगों ने गाना बनाया, म्यूजिशियन बुक किए, सुबह दीदी आई, दीदी का पार्ट कर लिया हमने।
0: अच्छा,
1: दीदी के पार्ट हमने इस गाने में रिकॉर्ड कर लिए।
0: अब मेल वॉइस रह गई है,
1: अब मेल वॉइस कौन गाएगा,
0: हम
1: किसको गवाएं, उसको गवाएं। नहीं यार, ये सब आवाजें जो है सब सुनी सुनाई है, कुछ अलग होना चाहिए। तो इस बात को भी 7-8 दिन गुजर गए, गाना रिकॉर्ड हो गया,
0: फीमेल पार्ट है आपके पास,
1: फीमेल पार्ट है, ऑर्केस्ट्रा वगैरह सब हो गया, बढ़िया, क्या लग रहा है गाना। जब वो साइलेंट हो जाए, मेल की आवाज, खाली म्यूजिक चल रहा है, दिन कड़क, और दीदी की आवाज आ रही, तो ऐसा लग रहा है। फिर मैंने कहा यार, सबको बोला, मैंने कहा एक काम करते हैं, मनमोहन सिंह भी आके बैठते थे, मैंने कहा मनजी आप गाइएगा,
0: जबकि वो तो कैमरामैन थे ना,
1: कैमरामैन थे
0: और गायकी शौकिया थी,
1: गायक शौकिया थी, और उन्होंने उससे पहले एक उषा खन्ना का भी गाना गाया था और एक किसी और म्यूजिक डायरेक्टर का भी गाना गाया था।

0: तो मैंने कहा ब्रह्मन जी आप गाओ। बोलते मैं कैसे गाऊँ इतना मुश्किल गाना। मैं कहा गाओ तो सही, ट्राई तो करो। उन्होंने घर में रिहर्सल किया।
1: अच्छा
0: हाँ रिहर्सल किया और माइक्रोफोन पर गए। अच्छी आवाज लग रही है और नई आवाज लग रही,
1: और राजबब्बर पे फिट हो रही है।
0: राजबब्बर पे फिट हो गई और मुझे लगता है शायद 3-4 घंटे में गाना रिकॉर्ड हो गया उनका।
1: क्या बात है।
0: वो आज भी हिस्ट्री है ये गाना,
1: और ये गाना बड़ा हिट है।
0: बहुत हिट है, आज भी चलता है ये गाना,
1: जी
0: सुना जाए इसको
1: जरूर, आप थोड़ा गाएंगे।

0: वारिस के और भी गाने थे जो बहुत लोकप्रिय हुए थे। मुझे याद आता है कि किशोर कुमार का एक गाना था हुस्न की वादियों में की प्यार पलता, बड़े ऊंचे सुर का गाना
1: जी,
0: था
1: जी, जी।
0: बहुत अलग तरह का गाना था। फिर घटा छा गई है, बहार आ गई है, दुनिया तू याद रखना, और एक बच्चे को खिलाने वाला गाना आशा भोसले ने गाया था, आरे मुंजे तारे मुंजे। तो वारिस फिल्म के इन गानों के हिट होने का कुछ फायदा मिला?
1: खास नहीं,
0: क्यों?
1: ये फिल्म भी ज्यादा नहीं चली थी,
0: डिले बहुत हो गई थी,
1: डिले भी हो गई थी, और ये फिल्म आई थी उसके साथ तुझे याद करेगा
0: कयामत से
1: पापा कहते हैं, हाँ दोनों सेम डे रिलीज हुई थी।
0: जी जी,
1: वो कयामत से कयामत तक पहुंच गई थी और बारिश हमारी पीछे रह गई।
0: जी जी जी,
1: तो इससे भी कुछ संगीतकार की जोड़ी को कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ।
0: जी जी जी, जी।
1: लेकिन मुझे इस चीज का फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं लगा हुआ था अपने काम में।
0: जी जी, अब जगदीश खन्ना का जिक्र हमारी बातचीत में इस समय बहुत सारा आया है, तो पेंटर बाबू और उसके बाद कुछ फिल्मों में उत्तम जगदीश साथ में आते हैं
1: जी।
0: और फिर जब जगदीश नहीं रहते उसके बाद आपकी एक इंडिविजुअल जर्नी है और
1: दिल तो पागल से शुरू होती है।
0: जी, दिल तो पागल है से। तो टीम में काम करना और फिर स्वतंत्र रूप से काम करना, इसमें क्या फर्क रहा?
1: देखिए, टीम में काम करने से क्या है कि भार बहुत कम पड़ जाता है क्योंकि गाना वो बना रहा है तो मैं अपना म्यूजिक बना रहा हूँ जो मैं काम कर रहा था इतने सालों से।
0: जी जी,
1: तो मुझे कभी ये उम्मीद नहीं थी कि मैं जमीन प्रोड्यूस कर सकूंगा।
0: जी,
1: जमीन के ऊपर फूल लगाना वो तो मालिक का काम है लेकिन जमीन खरीदना बहुत बड़ी बात होती है।
0: जी,
1: तो मुझे आइडिया नहीं था कि मैं

0: गाने इतने आराम से और ऐसे बन जाएंगे मुझसे, गाने ऐसे इजीली बन जाएंगे।
1: जी
0: लेकिन मैं आपको सच बात बताऊं, आई एम एंजॉयिंग दैट साइड ऑल्सो एंड दिस साइड ऑल्सो।
1: जी दोनों काम अब आपको खुद ही।
0: उत्तम जगदीश के साथ भी मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई काम करने में, बड़ा मजा आया काम करने में। पेंटर बाबू क्लर्क हो गया, क्योंकि उसमें मैं तो साथ था ही,
1: हाँ
0: ट्यून मैं भी बना रहा था, उसके भी आइडिया आ रहे थे, तो एक अच्छा एक कम्बिनेशन बन रहा था और बना भी, जितना भी हुआ, चला नहीं चला वो अलग बात है। तो अभी देखिए गाना है भूपेंद्र जी का, उस गाने में मुखड़ा नहीं है,
1: जी
0: मुखड़ा नहीं है, अंतरा नहीं है, वो फ्री वर्स है।
1: अच्छा
0: हाँ, वो आप सुनिएगा उसको, वो फ्री वर्स है, मतलब जैसे स्टोरी लिखते हैं ना ऐसे मनोज जी की लिखी हुई है वो।
1: गजब।
0: तो मनोज जी ने मुझे बोला उत्तम ये मेरी एक स्टोरी है, क्या इसमें गाना बन सकता है? तो मैं पूरी उनसे वो लिख के घर आया, और घर आते ही वो शुरू हो गया।
1: अच्छा
0: हाँ, घर आते ही मैं बाजे पे बैठा और वो शुरू हो गया। अब ये आप गाना सुनाइए लोगों को, ये गाना इस माइंड से सुनिए कि इस गाने में ना मुखड़ा है ना अंतरा है, कुछ नहीं है, फ्री वर्स है। वो फ्री वर्स को देखिए कैसे टुकड़ों टुकड़ों में बांट के ये गाना बना है।
1: क्लर्क क्यों, तुमसे जो बात हुई,
0: तुमसे जो बात, ये
1: जरूर, ये गाना आप बोल रहे हैं तो जरूर हम अपने सुनने वालों को सुनवाते हैं ये गाना
0: जी।

वक्त भी

0: उत्तम जगदीश की जोड़ी बहुत ज्यादा काम क्यों नहीं कर पाई?
1: इसको आप ईगो कह दीजिए या इसको मेरी भावना कह दीजिए, यूनुस जी, मैंने आज तक किसी से काम मांगा नहीं।
0: जी जी,
1: कभी नहीं मांगा। जितना भी आप मेरा काम देख रहे हैं, जितना भी मेरा म्यूजिशन का काम देख रहे हैं, सब घर चल के आया है।
0: जी जी,
1: मैंने वायलिन सुनाई, फादर ने कहा कि इसको सुन लीजिए, इसको काम दीजिए, ये वर्ड कभी नहीं आया।
0: जी जी,
1: तो मैंने वायलिन सुनाई, उसके बाद मैंने उनके मरने तक काम किया, चाहे वो अन्ना हो,
0: जी
1: वसंत देसाई हो, या चित्रगुप्त जी हो, या कोई भी हो, मैं इनको सबको वायलिन सुनाई थी मैंने।
0: जी,
1: क्योंकि वो काम को काम दे रहे थे।
0: जी जी,
1: मेरी प्लेइंग को वो काम दे रहे थे। अरेंजमेंट हुआ, अरेंजमेंट किया, उससे उसको पता चला कि वो अरेंजमेंट अच्छा करता है, उससे उसको पता चला, तो एक काम बढ़ता चले गया मेरा, एज ए अरेंजर काम बढ़ता चले गया।
0: जी,
1: फिर काम चलते चलते चलते चलते म्यूजिशियन हो गई, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं।
0: जी,
1: तो काम हम ज्यादा क्यों नहीं कर सके, क्योंकि हम किसी के पास गए नहीं काम मांगने। और ये इंडस्ट्री ऐसी है, ये कहती है कि आप आओ तो हम काम देंगे। आज तो बहुत ज्यादा है।
0: जी,
1: पहले भी थी, हम किसी के पास गए नहीं। और हमको लगा कि मनोज जी की फिल्म कर लिया तो मतलब ये तो टॉप एंड है ना।
0: जी जी,
1: टॉप एंड से शुरू होंगे तो अपने आप
0: काम आएगा।
1: बट क्योंकि फिल्म नहीं चली, म्यूजिक बहुत चला, फिल्म पंजाब में चली।
0: जी जी,
1: बट मंडी हाउस में फिल्म नहीं चली। मंडी हाउस मतलब मुंबई बॉलीवुड, जिसको आज आप बॉलीवुड बोलते हैं।
0: जी जी,
1: वरना ये पहले फिल्म इंडस्ट्री थी।
0: जी,
1: फिल्म इंडस्ट्री में हिट होना बहुत जरूरी होता था। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में हिट हो गए तो आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा।
0: जी,
1: तो फिल्म इंडस्ट्री में ये फिल्म चली नहीं थी,
0: उस वजह से वो काम में कन्वर्ट नहीं हुआ।
1: और फिल्में मिली भी तो मैं आपको एक बड़ा अच्छा

0: किस्सा बताता हूँ यहाँ पे
1: जी।
0: पेंटर बाबू का जब पहला गाना रिकॉर्ड हुआ ना, ये वक्त सिकंदर होता है, तो हंगामे हो गए थे इंडस्ट्री में कि बहुत कमाल का गाना हुआ, और मनोज कुमार का गाना करना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो सेकंड डे पंचम की रिकॉर्डिंग थी आरडी बर्मन की, तो मैं अपनी वायलिन लेके जा रहा था, तो सेकंड फ्लोर में स्टूडियो था, ऐसे जा रहा था तो सामने से बहुत बड़े उस टाइम के एडिटर थे, दो लोग थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, बहुत बड़े एडिटर थे, तो वो आ रहे थे सामने। अरे उत्तम, मैंने कहा हाँ, तुम वायलिन बजाने आ रहे हो? मैंने कहा हाँ, क्यों क्या हुआ? जहाँ से संगीतकार खत्म होते हैं वहां से तो तूने शुरू किया कल, और पूरी इंडस्ट्री में हंगामा हो गया, और सेकंड डे तुम वायलिन बजाने आ गए। तो मैंने कहा जी बात ऐसी है कि संगीतकार का आना जाना है, वायलिन का यहाँ रहना है।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: मैंने कहा ये वायलिन जो है ये
1: कायम रहेगी,
0: मेरे साथ कायम रहेगी, और संगीतकार तो आना जाना है, कभी आएंगे कभी जाएंगे।
1: ये जो वायलिन आप अपने साथ लेकर आए हैं इसकी भी एक दास्तान है
0: जी, इसकी दास्तान मैं बताता हूँ आपको
1: जी।
0: आज मोदी साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है
1: जी
0: कि आप कितना भी पढ़ लिख लो लेकिन आपके पास हाथ का हुनर होना बहुत जरूरी है।
1: जी जी
0: अगर आपके पास हाथ का हुनर है तो आप भूखे नहीं मरोगे, और वो चीज प्रूफ हो रही है आज।
1: बिल्कुल,
0: एक चाय वाला करोड़ोंपति बन गया, एक भेल वाला अरबोंपति बन गया, एक बड़ा पाव वाला बिल्डिंग बना ली, तो काम छोटा लगता है लेकिन मेहनत के पीछे फल है।
1: जी
0: तो मेरी यही जो मेहनत है वो मुझे आज तक यहाँ ले आई। मुझे लता मंगेशकर पहला अवार्ड मिला था महाराष्ट्र गवर्नमेंट का,
1: जी
0: लता मंगेशकर अवार्ड, तो मुझे दिया गया, तो स्टेज पे मैंने बोला, मैं कहा जी मेरे पिताजी ने मेरे हाथ में वायलिन दी थी।
1: जी
0: बोला बेटा ये वायलिन तेरे को दे दी है, वो सामने रास्ता है, रास्ता का एंड नजर नहीं आ रहा, ये रास्ता तो कहाँ तक पार करेगा तेरे ऊपर है।
1: हमने तो वायलिन दे दी,
0: हमने तो तेरे को वायलिन गाड़ी दे दी है,
1: जी
0: अभी गाड़ी को कहाँ तक ले जाता है। तो मैंने कहा जी उनका वायलिन दी हुई मैं आज स्टेज पे बैठ पहुंच गया कि आज मुझे लता मंगेशकर का अवार्ड मिल रहा है।
1: क्या बात है,
0: ये तो मेरे लिए पद्मा से भी ऊपर अवार्ड, और लता मंगेशकर के नाम का अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है, और मुझे तीन तीन लता मंगेशकर के अवार्ड मिल गए,
1: जी
0: एक यहाँ का मिला, इंदौर गवर्नमेंट का मिला, अभी एक रायपुर में भी एक अवार्ड लता मंगेशकर। तो मेहनत और आपका हाथ का हुनर
1: जी
0: ये बहुत बड़ी बात है।
1: बिल्कुल।

0: आगे।
1: म्यूजिक डायरेक्टरी की यात्रा दोबारा शुरू हुई उत्तम सिंह के नाम से जब यश जी ने अपनी एक फिल्म बनाई।
2: जी जी, उन्हें वो
1: कहानी
2: वो बात की बात है। क्या हुआ कि उत्तम जगदीश थोड़ा थोड़ा काम कर रहे थे, मेरा अरेंजमेंट चल रहा था तो जगदीश मेरे साथ कभी कोरस भी गा लेता था, कभी रिदम भी बजा लेता था, तो उसका घर भी चल रहा था, मेरा घर भी चल रहा था। तो 92 में एक फिल्म शुरू हुई तीर अंदाज करके,
1: जी
2: कवन मुकुट उसके प्रोड्यूसर थे
1: जी,
2: और मनमोहन सिंह डायरेक्ट कर रहे थे।
1: अच्छा।
2: और उसकी स्टार कास्ट थी श्रीदेवी और सनी देओल, बहुत बड़ी फिल्म थी वो। वो फिल्म बन जाती तो एक जैसे मुगले आजम याद है ना
1: जी,
2: ऐसे लोग इस फिल्म को याद रखते हैं, इतनी बड़ी फिल्म थी वो। तो फिल्म का एक गाना रिकॉर्ड हो गया, दूसरा गाना हम लोग के लिए सुबह 9 बजे का टाइम था। तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मैं, राइटर, कवर जलालाबादी राइटर थे, वो बैठे थे हम लोग। तो फोन की घंटी बजी लैंडलाइन की, तो जगदीश 9 बजे आ जाते, 9:15 बज गए थे, 9:15 बजे घंटी बजी कि जगदीश खन्ना ऑफ हो गए।
1: अरे अरे अरे,
2: हम सब हैरान हो गए, सब सिटिंग वीटिंग वही छोड़ी, उनके घर गए तो पता चला जी कि वो निकल रहे थे सिटिंग में आने के लिए, तो तुलसी को पानी डाल रहे थे, तुलसी के पेड़ को, वहीं पीछे गिर गए।
1: अरे बाप रे,
2: और वहीं खत्म हो गए,
1: हार्ट अटैक आया।
2: और बहुत बड़ी फिल्म थी, इतनी बड़ी फिल्म कर रहे थे तो बड़ी खुशी थी। वो फिल्म बंद हो गई
1: जी,
2: वो फिल्म बनी नहीं, जिंदगी चलती रही। 93 या 94 में मुझे उषा मंगेशकर जी का फोन आया कि उत्तम भैया, मैंने कहा जी, दीदी का एल्बम करना है साई बाबा का।
1: अच्छा।
2: मैंने कहा जी ठीक है करते। तो मैं घर गया, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, इसलिए मैं आपको बड़े प्यार से पूरी बता रहा हूँ।
1: यस यस बिल्कुल।
2: तो मैंने कहा जी ठीक है। तो इसमें बात हुई और एक साल निकल गया। एवरीबडी लव साइंस गाना है उसके अंदर, वो मनोज जी का लिखा हुआ और वो जगदीश खन्ना का बनाया हुआ है।
1: अच्छा अच्छा।
2: तो उसको मैंने ठीक ठाक करके उसको रिकॉर्ड किया, तो दीदी भी खुश हो गई, टिप्स वाले भी खुश हो गए, मनोज जी भी खुश हो गए। फिर उसके बाद दूसरा गाना बना तो वो भी मुखड़ा था इसका, जगदीश का
1: जी,
2: अंतरे उसने बनाए तो अंतरे मैंने बनाए
1: जी,
2: दूसरा गाना भी रिकॉर्ड हो गया। अब जगदीश की कोई कंपोजिशन नहीं है, तो तीसरा गाना शुरू हुआ तो मैंने बनाया, तो मैंने जाके मनोज जी से लिखवाया, फिर उसमें उन्होंने भी लिखा, भरताचार्य ने लिखा
1: जी।
2: तो वो गाना जब मैं रिकॉर्ड करने गया तो दीदी आई, उन्होंने गाना लिखा, रिकॉर्ड किया, तो संजीव कोहली मुझे पूछते ये किसका बनाया हो, मैंने कहा ये मेरा, तो जगदीश का, जगदीश के पहले दो गाने हो गए, ये आपने बनाया, मैंने कहा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 गाने रिकॉर्ड किया हमने
1: जी, उसमें से 2 जगदीश जी के थे,
2: डेढ़ जगदीश का था,
1: डेढ़ थे जी हाँ।
2: तो आप सोचिए कि कितना कॉन्फिडेंस होगा दीदी को मेरे ऊपर कि वो आती थी, क्या बन रहा है उनको पता नहीं
1: जी,
2: टिप्स वालों को क्या बन रहा है पता नहीं, मनोज जी बोले ये लिख लिया उत्तम, ये लिख लिया हो गया, नारायण अग्रवाल का एक गाना है जी, जी। तो दीदी आती थी, मैं रिहर्सल कराता था, आती थी चले जाते थे। 12 गाने हमने रिकॉर्ड किए, हर गाने में मुझे संजीव कोहली पूछे कि ये गाना आपका है, मैंने कहा ये मेरा है, और वो गाना, वो एल्बम हिट हो गई बहुत
1: जी जी,
2: दीदी की वो आज भी वो एल्बम बहुत बड़ी हिट है जी।
3: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत पर आधारित ये लंबी श्रृंखला। आज आपने सुना इस श्रृंखला का 4th भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और HR पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
4: उजाले उनकी यादों

0: मैं हूँ जॉन अब्राहम। मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी। जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूँ, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूँ। काफी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो, राइट? तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल कोशेंट है ना, वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलाओ।
1: कूल बनिए, फूल नहीं, हीरो ही पहनते हैं हेलमेट।
2: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम विविध भारती। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। इसी के साथ ही आज की हमारी पहली सभा यहीं पर समाप्त होती है। शाम के दूसरे सभा में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।

नमस्कार, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी के हाफ रूम केंद्र है। सभी श्रोताओं को हार्दिक अभिनंदन करते हुए हम आरंभ करते हैं हर रोज की तरह आज के दूसरी कार्यक्रम। श्रोताओं, आइए सबसे पहले हम आपको आज के दूसरी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के रूपरेखा से जुड़ी जानकारियाँ दे देते हैं। अब से थोड़ी देर बाद यानी कि शाम के 6:05 का समय रहेगा मार कार्यक्रम का। आज आप सुन पाएंगे कुछ मार भक्ति गीत। गायक कलाकार होंगे जेड रेमावाई ट्विलर और उनके साथी को आवास में जेमे गीतों का कार्यक्रम का समय रहेगा 6:25 पर। आज आप सुन पाएंगे चिलुंग लुंगबे न्यूमे और उनके साथी को आवास में कुछ जेमे लोकगीत।

श्रोताओ, शाम के 6:45 पर आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे सुंदर आंचलिक बातुरी। स्थानीय गीतों कार्यक्रम को जारी रखते हुए 7 बजे सुने डिमाशा कार्यक्रम। आज आप सुन पाएंगे कुछ डिमाशा लोकगीत। गायक कलाकार होंगे गोपीनाथ थापलुंगबार और उनके साथियों की आवाज़ में।

कर भी कार्यक्रम का समय रहेगा 7:20 पर। आज आप सुनिए रॉबर्ट हंसे और उनके साथी के आवाज में कुछ कार भी आधुनिक की। कोकी गीतों कार्यक्रम का समय रहेगा 7:40 पर। आज आप सुन पाएंगे कुछ कोकी भक्ति गीत। गायक कलाकार होंगे सैलून हाउकीप और उनके साथियों की आवाज में।

आठ बजे सुने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, 8:30 बजे सुने एक ही फिल्म से कुछ गीत, 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित की जाएंगे हिंदी में समाचार संध्या, 9 बजे का समय रहेगा आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम हेलो हाफलोंग, 9:30 बजे का समय रहेगा हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रगीत। तो श्रोताओं, ये थे आज के दूसरी सभा से जुड़े कार्यक्रम के रूपरेखाओं के बारे में जानकारियाँ। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है।

ये आकाशवाणी के हाफलॉन्ग केंद्र है। आइए आरंभ करते हैं स्थानीय गीतों कार्यक्रम। सबसे पहले सुनते हैं मार कार्यक्रम। आज सुनते हैं कुछ मार भक्ति गीत। आवाज़ है जेट रिमावी ट्विलर और उनके साथी को आवाज़ में।

0: श्रोताओं, जेड रिमावी ट्विलर और उनके साथी के गाए इसी भक्ति गीतों के साथ ही मार्ग गीतों का कार्यक्रम यही समाप्त होती है। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं जेमे कार्यक्रम। आज सुनते हैं कुछ जेमे लोक गीत। आवाज है ची लुंगले न्यूमे और उनके साथियों की आवाज में।

श्रोताओं, ची लुंगले न्यूमे और उनके साथियों के गाय इसी लोकगीत के साथ ही जेमे गीतों कार्यक्रम यही समाप्त होती है। यही आकाशवाणी के हाफलुंग केंद्र है। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से शानदार आंचलिक बातुरी।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: श्रोताओ, स्थानीय गीतों कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं डिमासा कार्यक्रम। आज सुनते हैं कुछ डिमासा लोकगीत। आवाज है गोपीनाथ हाफलुंगवार और उनके साथियों की।

สาวสาสลายบ่มให้นางยาสายเกสายเกเจ้าสายไม่บาพาไปเรา

नाफी माखरोहारिशुने मनांडो है मैं बामाटी गारी संवानी यहां हां।

아심샤 하니바 사우라자 산시제 진리하 농와세 미지네 카그리다오 티카보

지면이 살아올라 수바라님 순왕보

라자니미샤샤가우야라오 지가탄구록시징랭야.

0: Rafai, Kaza Kaza Mini Mini Kribo Irafai, Bidakua Shilinkua Kribo Irafai, Bidakua Shilinkua Kribo Irafai, Pai Pai Lugura Kribo Irafai, Kaza Kaza Mini Mini Kribo Irafai, Pai Pai Lugura Kribo Irafai, Kaza Kaza Mini Mini Kribo Irafai. Happy show, Bosawa, Zarke Mazangri. Dipi show, Bosawa, Zarke Mazangri. Bonjumander Bubarlai, Zarke Mazangri. Taurili, Taulai, Zarke Mazangri. Hi, Pai, Luguro, Kerebo, Irapai. Kaza, Kaza, Mini, Mini, Krebo, Irapai. Bidakua, Silinkua, Krebo, Irapai. Bidakua shilinkua krebo irapai. Pai pai lugurao krebo irapai. Kaza kaza mini mini krebo irapai. Pai pai lugurao krebo irapai. Kaza kaza mini mini krebo irapai. Hapishao basawa zarke mazangri. Dipishao basawa zarke mazangri. Bonjumander bubarlai jarke mazangri, Taurili daulai jarke mazangri, Pai pai lugurao kribo irapai, Kaza kaza mini mini kribo irapai, Bidakua.
1: श्रोताओ, इसी लोकगीत के साथ ही डिमासा गीतों कार्यक्रम यही समाप्त होती है। ये आकाशवाणी की हाफलोंग केंद्र है।
2: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
3: क्या हो गया ऐसा?
2: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
3: ये कमाल कैसे हो गया?
2: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
3: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
2: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
1: श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं कार्बी कार्यक्रम। आज सुनते हैं कुछ कार्बी आधुनिक गीत। आवाज है रॉबर्ट हंसे और उनके साथियों के आवाज में।

0: श्रोताओं, इसी आधुनिक गीतों के साथ ही कार्बी गीतों का कार्यक्रम यही समाप्त होती है। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: श्रोताओ आइए अब सुनते हैं कोकी कार्यक्रम। आज सुनते हैं कुछ कोकी भक्ति गीत। आवाज है सैलून हाउकीप और उनके साथियों की आवाज में।

0: स्वतः सैलून हाइकिप और उनके साथियों के गाए इसी भक्ति गीतों के साथ ही कोकी गीतों कार्यक्रम यहीं समाप्त होती है। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: श्रोताओं आइए अब सुनते हैं फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं विजयपथ फिल्म के गीत, आवाज है कुमार सानू और अलका याग्निक की।

दोस्तों आज आप सुनते हैं उदित नारायण, प्रीति, अल्ताफ, रामकिशन, जितेंद्र और पूनम के गाए परदेशी बाबू फिल्म के ये गीत।

0: दोस्तों, इसी गीत के साथ फिल्म गीत कार्यक्रम यही समाप्त होती है। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है।
1: हेलो हाफलोंग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हाफलोंग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफलोंग। हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हाफलोंग।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: श्रोताओ, अब समय हो चला है एक ही फिल्म के कुछ गीतों का। आज हम लिए हैं फिल्म 21 के कुछ गीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं जैस्मिन और जैस्मिन संदलास के गाए ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप 21 फिल्म के कुछ गीत सुन रहे हैं। आए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं मास्टर सलीम और मधुवंती बाक्सी के गाए ये गीत।

0: स्वतः इसी गीत के साथ ही एक ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यही समाप्त होती है। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। आइए अब हमको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, थोड़ी देर में सुनते हैं हिंदी में समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भारत की प्रगति को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों से प्रेरित बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश युवाओं को अपार अवसर प्रदान कर रहा है। देश के विकास के लिए युवाओं से अपनी क्षमताएं पहचानने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल लोगों की अवैध हिरासत रोकने और सुचारू यातायात जारी रखने के निर्देश दिए। भारत ने नई दिल्ली में हुई घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की टिप्पणियां खारिज की, इसे दोहरा मापदंड और अपने आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप बताया। नेपाल की बूढ़ी गंडकी नदी में अचानक बाढ़ से गोरखा जिला प्रभावित, अब तक 80 लोगों को बचाया गया और 5 लापता। काहिरा में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं दैनिक यात्रा आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी है।
2: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
1: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूर्णमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती हुई चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में ये समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
2: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। Today, the world is looking for solutions and you have the potential to provide those solutions.
1: प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
2: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे। Because this is

0: पाएंगे। दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा भारत को खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।
0: भारत 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। हम 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी का सपना भी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले वर्षों में जब दुनिया के बड़े स्पोर्ट्स इवेंट भारत में होंगे, इसलिए भारत के युवाओं के पास अब प्लेटफॉर्म भी है, पोटेंशियल भी है और सपोर्ट भी है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए लोगों को अवैध हिरासत में नहीं लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के दोहरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके की आलोचना की है। भारत ने नई दिल्ली में कल की घटनाओं पर संगठन की टिप्पणियां खारिज कर दीं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संगठन की टिप्पणियों को गैर जरूरी और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार दखलंदाजी बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत के पड़ोस में विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक प्रतिक्रियाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के दोहरे रवैये से संगठन की विश्वसनीयता घटती है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
2: We have seen certain remarks.
3: हमने कल की घटनाओं के बारे में मानवाधिकार उच्च आयुक्त के कार्यालय की कुछ टिप्पणियों को देखा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां शांतिपूर्ण सभा करने के अधिकार की गारंटी संविधान में दी गई है। हमारे मजबूत संस्थान, स्वतंत्र न्यायपालिका और मीडिया इस अधिकार को सुरक्षित रखते हैं। हर लोकतंत्र की तरह भारतीय नागरिक सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस अधिकार का प्रयोग करते हैं।
1: भारतीय जनता पार्टी ने सांसद और प्रोफेसर बिमोल अकोइजम के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर कांग्रेस की आलोचना की है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद बिमोल अकोइजम की सेवाएं समाप्त कर दी थीं। नई दिल्ली में पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाए।
4: जेएनयू ने पॉश एक्ट के तहत एक इंटरनल कमिटी बिठाई। इस कमिटी ने तमाम सबूतों, तमाम विटनेसेस और तमाम सर्वाइवर्स की विटनेस टेस्टिमनी के बाद, सारे के सारे तथ्यों की जांच करने के बाद तुरंत बिमोल अकोइजम को नौकरी से बर्खास्त किया। फेमिनिज्म कांग्रेस पार्टी के लिए केवल एक हैशटैग से शुरू होता है और जवाबदेही की दहलीज पर आकर समाप्त हो जाता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जन सेवा से देश सेवा, इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टिकोण के साथ भारत सरकार को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज विशेष श्रृंखला में बात औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति के लिए की जा रही पहल की।
5: पिछले कुछ वर्षों में सरकार धीरे धीरे भारत से ब्रिटिश शासन की निशानियों को हटाने की दिशा में काम कर रही है। 15 अगस्त 2022 को 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 वर्षों के लिए 5 संकल्पों यानी पंच प्रण की घोषणा की थी। दूसरे प्रण के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि नागरिकों के जीवन के किसी भी हिस्से में, यहाँ तक कि उनके मन के सबसे गहरे कोने या उनकी आदतों में भी गुलामी का कोई अंश नहीं होना चाहिए।
6: सैकड़ों साल की गुलामी ने जहाँ हमें जकड़ कर रखा है।

0: हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी।
1: देश को उपनिवेशिक विरासत से मुक्त करने और एक अलग भारतीय पहचान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई क्षेत्रों में कई कदम उठाए हैं। नई दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। भारतीय नौसेना ने पुराने ध्वज जिसमें सेंट जॉर्ज क्रॉस बना हुआ था की जगह वर्ष 2022 में अपना नया ध्वज अपनाया। सरकार ने वर्ष 2017-18 से रेल बजट को आम बजट में मिला दिया। इसके साथ ही वर्ष 1924 से चली आ रही एक परंपरा समाप्त हो गई। बीजेपी नेता राम माधव ने कहा,
2: वी लिव्ड एज अ नेशन, हम कम से कम 5000 वर्षों से एक राष्ट्र के रूप में जी रहे हैं। इतने लंबे इतिहास में हमने एक महान राष्ट्र, महान इतिहास, महान स्मारक, महान ऐतिहासिक स्थल बनाए हैं। वे सहस्त्राब्दियों से भारत की पहचान रही है। महान पहचान आज यही हो रहा है, यही वह है जिसे हम औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति कहते हैं,
3: डीकॉलोनाइजेशन।
1: सरकार ने ब्रिटिश शासन के दौरान प्रतिबंधित साहित्य को फिर से सामने लाने का भी प्रयास किया है। इसके तहत भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रतिबंधित कविताओं, लेखों और प्रकाशनों की एक सूची तैयार कर रहा है। ये सभी पहल एक ऐसे आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र उत्सव आज पूरे देश में धार्मिक उत्साह और भक्तिभाव के साथ शुरू हो गया।

0: देवी दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रमुख मंदिरों में पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा लोगों को आत्मानुशासन और नैतिक मूल्य स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। ये महोत्सव नारी के सामर्थ्य, साहस और दृढ़ता में विश्वास को मजबूत करता है। भारत में त्योहारी खरीदारी सीजन की शुरुआत जोरदार रही। एक रिपोर्ट के अनुसार देश के प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने फेस्टिव सीजन में पहले 2 दिनों में करीब 24,000 करोड़ रुपए की बिक्री की है। इस दौरान लोगों ने स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू उपकरणों और फैशन उत्पादों की जमकर खरीदारी की। त्योहारी सीजन के पहले 2 दिन की बिक्री सामान्य दिनों की तुलना में लगभग 6 गुना अधिक है। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडकी नदी में अचानक बाढ़ के बाद अब तक 9 विदेशी नागरिकों सहित 80 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है। 5 लोग अब भी लापता हैं। आज सवेरे लगभग 4 बजे आई बाढ़ में घर और पुल बह गए और कई जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण आपातकाल घोषित कर दिया है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने प्रांत में संवैधानिक व्यवस्था के विफल होने पर आपातकाल लागू किया। इस कदम से पाकिस्तान की संघीय सरकार को मुख्य कार्यकारी और विधायी शक्तियां अपने हाथ में लेने का अधिकार मिल गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन ऊर्जा केंद्रों पर हमले रोकने के लिए सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि युद्ध विराम तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उन्होंने दोनों देशों से समझौते का पालन करने का आग्रह किया। इस बीच रूस और यूक्रेन दोनों ने ही युद्ध विराम पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। सऊदी अरब के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 अन्य घायल हुए। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लोगों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। इस बीच विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास घायल 11 भारतीयों की मदद के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। दूतावास उनकी सहायता के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। मिस्र में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब जीता। अनमोल खरम ने तुर्की इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। अनमोल ने फाइनल में आकर्षी कश्यप को हराया। इंदौर में भारत ने वेस्टइंडीज को तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 224 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 10 विकेट पर 223 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने सर्वाधिक 69 रन बनाए। 5 मैच की श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बिजली चमकने के साथ बरसात होने और तेज हवा चलने का अनुमान व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भारत की प्रगति को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों से प्रेरित बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश युवाओं को अपार अवसर प्रदान कर रहा है। देश के विकास के लिए युवाओं से अपनी क्षमताएं पहचानने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल लोगों की अवैध हिरासत रोकने और सुचारू यातायात जारी रखने के निर्देश दिए। भारत ने नई दिल्ली में हुई घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की टिप्पणियां खारिज की। इसे दोहरा मापदंड और अपने आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप बताया। और काहिरा में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्रोताओ, अभी आप हिंदी में समाचार संध्या सुन रहे थे। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है।
2: आपके गीत दोस्तों, FM 100.2 MHz पर आकाशवाणी हाफलोंग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।
3: शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम हेलो हाफलॉन्ग यानी कि फोन इन प्रोग्राम कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत की है सिद्धार्थ पांडे ने।

0: हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुठाई चिबाई कुलम खुबले कार्डो आकाशवाणी हफलों की ओर से मैं सिद्धार्थ लेकर हाजिर हूँ आप सभी का पसंदीदा और प्यारा सा प्रोग्राम जिसका नाम है हेलो हफलों। कल शनिवार के दिन आपने सुना इस हफ्ते का पहला एपिसोड, आज रविवार है। चलिए अब देरी ना करते हुए आज के सफर को शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला कॉल। हेलो हफलों,
1: पलाल बोल रहे हैं गोरोबी से।
0: अरे पलाल जी, कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ सर।
0: अरे बहुत महीनों के बाद आपने कॉल लगाया आज।
1: हाँ, एक दूसरे को भी तो चांद देना है ना।
0: दे रहे हैं।
1: मैं चाहता था जूली फिल्म का
0: जी
1: ये रात नएपुरा में ये गाना था, मेरे को सुना दीजिएगा सर।
0: क्या कर रहे हैं आजकल?
1: जी घर पे रह रहा हूँ।
0: अच्छा लगा, बहुत महीनों के बाद आपने कॉल किया और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी पसंद के गाने को आप तक पहुँचा पा रहे हैं। धन्यवाद।
1: थैंक यू सर।

0: हेलो हफलोंग।
1: हेलो सर जी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार, किन से बात हो रही है?
1: उदयलाल टेलर से बात हो रही है।
0: कैसे हैं आप?
1: मस्त है सर,
0: कैसा है वहां का मौसम?
1: मौसम तो सुहाना है, धूप खिली हुई है, सर्दी ने दस्तक दे दी है।
0: बहुत बढ़िया। अब कौन से गाने की दस्तक आप चाहते हैं?
1: जी फिल्म हिमालय की गोद में चांद सी महबूबा हो, ऐसा मैंने कब सोचा था, तुम
0: जी
1: बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था।
0: इसी गाने को आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आप गाने का आनंद लीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।

0: हेलो हफलोंग।
1: सर जी जय श्री महाकाल। सर जी नमस्कार, सिवालोहट एमपी विदिशा से बात करता हूँ। सर
0: जी, आपका स्वागत है।
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ सर जी, और हाल चाल भी ठीक ठाक है सर जी। और अभी बहुत तेज धूप लगी हुई है, गर्मी काफी ज्यादा है सर।
0: जी, और आप करते क्या थे?
1: सर जी एक्चुअली मैं रिलायंट हूँ सर जी, और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आपके कार्यक्रम सुनते रहते हैं और छोटी मोटी समाज सेवा के काम करते रहते हैं सर जी। जैसे हर 3 महीने में रक्तदान करना हो गया, गाय को चारा देना हो गया, पक्षियों को दाना

0: खींचना हो गया और पेड़ पौधे लगाना हो गया सर। जी
1: बहुत नए काम करते हैं आप।
0: सर,
1: गाना बता दीजिए।
0: सर जी मूवी का नाम है मदहोशी और उसमें गाना रहेगा उदित नारायण जी की आवाज में, ओ जाने जाना।

0: हेलो हफलोंग।
1: जी नमस्कार जी,
0: नमस्कार।
1: कैलाश राजपूत बोल रहा हूँ, आदरणीय सर,
0: कहाँ से?
1: ग्राम विषय जिला विदिशा मध्य प्रदेश से। जी
0: जी स्वागत है, बताइए कुछ अपने बारे में।
1: बस एकदम ठीक है, बस प्रोग्राम सुन रहे थे और आपको कॉल लगा रहे थे, सोच रहे थे आपसे बात हो जाए, और पहली बार कॉल लगाया, बहुत अच्छा लग रहा है सर।
0: जी आप क्या करते हैं, कुछ अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में बताना चाहेंगे?
1: जी, बिल्कुल सर, मैं एक किसान हूँ, खेती किसानी का काम करता हूँ सर, और साथ में घर परिवार के साथ में रेडियो चलता रहता है और काम भी करते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
0: रेडियो कब से सुन रहे हैं आप?
1: जी सर, मैं कम से कम 30 साल हो चुके हैं सर रेडियो सुनते सुनते। जी
0: जी काफी पुराने मित्र हैं आप हमारे। आज कौन
1: जी
0: सा गाना सुनना चाहते हैं बता दीजिए।
1: जी फिल्म आज नदिया के पार का सुनना चाहेंगे सर, कौन दिशा में लेके चला रहे सर, कुछ मित्र हैं हमारे, याद कर सकते हैं क्या?
0: जरूर।
1: जी केसी सिंह राजपूत जी हैं, गैराज लोधी हैं, आरिफ खान मंसूरी जी हैं, और गौतम राय बोले जी हैं, और नरेश प्रजापति जी हैं, और भगवान सिंह परमार जी हैं, और बहुत सारे मित्र हैं इस वक्त सुन रहे हैं कार्यक्रम, बहुत अच्छा लगता है, साथ में सुनते रहते हैं सभी मित्र।
0: धन्यवाद।
1: जी नमस्कार।

0: हेलो हफलोंग
1: सर जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड, उज्जैन, मध्य प्रदेश से। सर बस
0: जी,
1: बिल्कुल सर जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं।
0: और
1: आपके
0: आजकल क्या
1: प्रोग्राम से
0: करते हैं?

0: जाते हैं। मेरा हेयर कटिंग सैलून का बिजनेस है सर। जी सर जी, और आपके प्रोग्राम में हमेशा नियमित सुनता हूँ। मोबाइल ऐप प्रसार भारती के माध्यम से अच्छा प्रोग्राम रहता है, और आपका खास जो ये अंदाज रहता है ना बोलने का,
1: जी
0: हाफ लॉन्ग, ये बहुत पसंद आता है सर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी आप कॉल करते हैं, आज आपकी कॉल शामिल हो गई है, अगले 3 हफ्ते के बाद ही आपको कॉल करना है, ये मालूम है ना
0: हाँ
1: आपको?
0: बिल्कुल सर जी, मुझे संदेश मिल चुका है आपके चैनल का कि 2-3 हफ्ते बाद ही कॉल करना है, तो मैं आप बिल्कुल आज मेरी कॉल शामिल कीजिएगा, फिर मैं 2 हफ्ते बुधवार रुककर फोन लगाऊंगा।
1: जी बहुत बढ़िया। सभी श्रोता हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, उन सब से रिक्वेस्ट है कि जिनके भी कॉल आज लगे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगले 2 हफ्ते के अंतराल के बाद ही, 2 बुधवार को छोड़ करके तीसरी वाली बुधवार में ही कॉल करें।
0: जी बिल्कुल, हमारे सभी दोस्त कॉल करते हैं, हम भी चाहते हैं कि आपके चैनल पर बहुत से मित्र हमारे जुड़े, तो आपके इस ये प्रोग्राम का भी अच्छा प्रचार हो गया है, काफी दूर दूर से कॉल आती है आपके प्रोग्राम में, हम सुनते हैं सर।
1: कौन सा गाना सुनवाए बोलिए।
0: ये सर जी मुकद्दर का सिकंदर फिलिंग का गीत है, दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, लता मंगेशकर जी की आवाज में।

0: कहाँ से बोल रहे हैं? जी, अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: वारिस फिल्म का मेरे प्यार के उमारे हो एक गाना का सुनना चाहता हूँ।
0: जी,

0: हेलो हफलोंग,
1: मैं गाना सुना था।
0: आपका नाम बोलिए और कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मेरा नाम दस पीजूस है, पीजूस सरकार है लंका, उजय से कर रहा हूँ मैं।
0: क्या करते हैं,
1: ये
0: कुछ
1: गाना
0: बताना
1: सुना
0: चाहेंगे आप अपने बारे में?
1: मैं तो उजय आदिमंडल का नाम तो आप सुने होंगे। आदिमंडल में जाऊँ मैं, मेरा घर लंका है, लेकिन

0: मैं जब हो जाए करता हूँ तो मैं हो जाए हुए किराए पर रहता हूँ, किराए
1: जी
0: मुकाम पर रहता हूँ।
1: बताइए,
0: और
1: अब कौन सा
0: मेरा
1: गाना
0: चांदी
1: आप सुनना चाहते?
0: के पार चलो जो टाइटल सॉन्ग, जब चांदी के फिल्म का नाम भी चांदी के पार चलो और गाना भी चांदी के पार चलो।
1: बहुत
0: हाँ
1: बहुत धन्यवाद। चांद

सॉन्ग्स के साथ ही हेलो हाफलोंग का इस हफ्ते का सफर अब हो चुका है पूरा। जिन श्रोताओं ने इस हफ्ते हमें कॉल किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से आपके अन्य मित्र भी इस कार्यक्रम में शामिल हों। और हाँ, जिन श्रोताओं के कॉल इस हफ्ते हमने इस कार्यक्रम में शामिल किए हैं, उन सभी श्रोताओं से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगले 3 हफ्ते के अंतराल के बाद ही आप इस कार्यक्रम में कॉल लगाएं, ताकि हमारे अन्य जो श्रोता हैं उनको भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिले। श्रोताओं, आपको बता दें, हेलो आफलोंग की रिकॉर्डिंग हम करते हैं हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। प्रोग्राम आपकी खिदमत में हम पेश करते हैं हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे। अब आप नोट कीजिए हमारा नंबर हमें कॉल करने के लिए। हमारा नंबर है 9435700596। नंबर एक बार फिर से 9435700596। श्रोताओं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी। हमारा फेसबुक आईडी आकाशवाणी हाफलोंग है, हमारा इंस्टा आईडी भी आकाशवाणी हाफलोंग ही है। श्रोताओं, बहुत सारे कार्यक्रम हम अपने यूट्यूब चैनल आकाशवाणी हाफलोंग पर भी अपलोड करते हैं, वहां से भी आप कार्यक्रम का आनंद उठा पा सकते हैं। अब इसी के साथ ही इस हफ्ते के कार्यक्रम को अब हम यहीं पर समेट रहे हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे और यूं ही जारी रहेगा सफर मनोरंजन का हेलो हाफलोंग के संग। तब तक के लिए आपके दोस्त सिद्धार्थ को दीजिए इजाजत। आप सभी को मेरी ओर से जुठाई चिबाई कुलुम खुबले कारडम और मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम हेलो हाफलॉन्ग एंड की फोन इन प्रोग्राम कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया था सिद्धार्थ पांडे ने। ये आकाशवाणी के हाफलॉन्ग केंद्र है।
1: हेलो हाफलॉन्ग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हाफलॉन्ग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग। हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर। नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
5: रुक जा बुद्धू।
6: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
4: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
7: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
6: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
8: दोस्तों, गीत और संगीत के सफर को जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रगीत। चित्रगीत का पहला गीत सुनते जंगल लाभ फिल्म के, ये गीत आवाज है अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की।

दोस्तों, चित्रगीत के इस गीत के साथ ही आज के हमारे दूसरे सभा कार्यक्रम यही समाप्त होती है। ये आकाशवाणी के हफलोंग केंद्र है। इस समय रात के ठीक 10 बजे है। श्रोताओं, कल की पहली सभा में यानी कि सुबह के 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होंगे। तब तक के लिए हमें यानी कि मनु कहार और तकनीकी सहायक देवकांत हागजर को दीजिए इजाज़त। शुभरात्रि। जय हिंद।